दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नैतिक शिक्षा पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी परीक्षा।
1: रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह के अनुसार मानवीयता व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। अतः अपने स्थान पर नए दीवान के लिए वो एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहते हैं जो साहस, दया, आत्मबल, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों से युक्त हो। प्रेमचंद की परीक्षा नामक इस कहानी में दीवान सुजान सिंह द्वारा आयोजित एक अनूठी परीक्षा का वर्णन है जिसके द्वारा पंडित जानकी नाथ के रूप में दीवान साहब को ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनकी निर्धारित कसौटी पर खरा उतर सका। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की।
2: दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए।
1: राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक का कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता था। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था।

मुझसे बात कीजिए, वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से छलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार छुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी ना सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था।

0: लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला,
1: मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं?
0: किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला,
2: हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं?
0: युवक ने कहा,
1: मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी।
0: किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला,
2: महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना पड़ता।
0: युवक ने हंसकर कहा,
1: तो अब मुझे कुछ इनाम देते हो?
0: किसान ने गंभीर भाव से कहा,
2: नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ। कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला,
2: गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है।
0: महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
2: दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो। और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ साथ दीवान पाने पर बधाई देता हूं।
0: रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया,
2: आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा।
3: परीक्षा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी। विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन शर्मा, पाठ संपादन प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राम मैनी, अर्चना प्रभाकर और धर्मेंद्र मणि, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब सपना जिद बन जाए, एक कहानी जिसने दुनिया बदल दी। स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, आज की कहानी है जुनून की, जिद की, और एक ऐसे इंसान की जिसे सबने मना किया लेकिन उसने खुद को कभी मना नहीं किया। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे। एक आदमी था, सपना था फिल्म बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम, उसे फिल्म मेकिंग आती नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट वो भी नहीं, बस कुछ स्केचेस, कुछ ड्राइंग्स, मतलब आज की लैंग्वेज में बोले तो विजन तो था लेकिन सिस्टम नहीं था। अब आप सोचिए, आजकल भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और यहां बिना एक्सपीरियंस के एक बंदा फिल्म बनाने निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया इस फिल्म में ना गाने होंगे, ना फाइट्स होंगी, ना रोमांस होगा। अब इंडियन सिनेमा का बेसिक फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ी मार, थोड़ा डांस। यहां ये सब कुछ भी नहीं था दोस्तों। ये आज का रिस्क नहीं था, ये उस जमाने का रिस्क था जब लोग एक्सपेरिमेंट से डरते थे। और फिर कास्टिंग की बारी आई। आप एक्सपेक्ट करेंगे बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, एमेच्योर एक्टर्स लिए, कुछ थिएटर वाले और एक फिल्म लीड। सब रेडी हो गए, वो उनसे मिला पड़ोसी की छत पर। जी हाँ, बंदा कैजुअली छत पर दिखा और ये फिल्म मेकर बोला ये परफेक्ट है। अगर आज होता तो लोग बोलते इंस्टाग्राम हैंडल क्या है इसका, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों से टैलेंट पहचाना जाता था। और एक रूल, सेट पर कोई मेकअप नहीं करेगा। अब एक्टर्स सोच रहे होंगे हम आए क्यों हैं, लेकिन उसका विजन क्लियर था, रियल लोग, रियल इमोशंस, रियल कहानी। और शूटिंग स्टूडियो में नहीं, आउटडोर रियल लोकेशंस पर। उस जमाने में ये ऑलमोस्ट एक रिबेलियन जैसा था, एक रेवोल्यूशन जैसा था। और सिनेमाटोग्राफर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं, 21 साल का एक स्टिल फोटोग्राफर जिसे फिल्म कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो दोस्तों अब आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस टाइम पे होते तो क्या बोलते, ये तो पक्का फ्लॉप है, यही ना? और वहीं सबने बोला ये डिजास्टर है, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना जब जिद बन जाए ना, तो दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसे। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, लेकिन सपना, सपना तो जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया और शूटिंग शुरू की। थोड़ा शूट हुआ, पैसे खत्म, अब क्या करते, छोड़ दो। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्शन बेच दिया। सोचिए आपकी फेवरेट चीजें, आपका पैशन,
सब बेचकर सिर्फ एक सपने के लिए आप चलते जा रहे हैं, फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म। अब तो बस हो गया ना, आपको यही लगेगा, लेकिन नहीं, यहां कहानी और फिल्मी हो जाती है। उसने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए। ये सिर्फ लाइफ स्ट्रगल नहीं है दोस्तों, ये सैक्रिफाइस है। और ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, और इस बार सब रुक गया। एक साल तक कुछ नहीं, कोई होप नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक अधूरी फिल्म और एक आदमी जो शायद थोड़ा थक गया था, लेकिन रुका फिर भी नहीं। जिंदगी का सबसे टफ फेज कौन सा होता है आप जानते हैं? आप सब सोच रहे होंगे जब आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप वेट करते रहते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। वो एक साल सिर्फ इंतजार था और फिर एक मिरेकल हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, लेकिन ट्विस्ट सुनो, उन्हें लगा ये फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है रूरल डेवलपमेंट पर, क्योंकि टाइटल ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत समझकर भी सही काम कर ही देते हैं, और इस बार उस गलत समझ ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। फिल्म कंप्लीट हुई, 3 साल लगे, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डाउट, सब कुछ था। और फिर रिलीज हुई पाथेर पंचाली। इस फिल्म के क्रिएटर, खैर नाम की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, द ग्रेट सत्यजीत रे। दोस्तों, रिलीज के बाद क्या हुआ? लोग चुप हो गए, क्रिटिक्स हैरान हो गए, और दुनिया ने कहा ये जीनियस है। जो लोग बोल रहे थे डिजास्टर है, वही लोग बोलने लगे मास्टरपीस है। दोस्तों, डिफरेंस क्या था? फिल्म नहीं बदली, लोगों की नजर बदल गई। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर सत्यजीत रे ने हार मान ली होती ना, तो क्या होता? ना ये फिल्म होती, ना ये कहानी होती, और ना ही दुनिया को पता चलता कि असली सिनेमा क्या होता है। दोस्तों, हर किसी के पास एक पाथेर पंचाली होती है, एक सपना जो थोड़ा अलग होता है, जिसे लोग समझते नहीं, जिसे लोग रिस्की भी कहते हैं। आजकल हम सब क्या करते हैं? आइडिया आया, गूगल किया, इज दिस अ गुड आइडिया? दो लोग बोलते हैं नो, और हम बोलते हैं छोड़ो यार, कौन चलेगा इसके आगे। अगर रे सर भी गूगल करते तो क्या होता? आंसर आता हाईली रिस्की, नॉट रिकमेंडेड, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन आज की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सपने परफेक्ट नहीं होते, कंडीशंस भी परफेक्ट नहीं होती, और लोग भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते। सब जगह से नॉन रेकमेंडेशन का ही कमेंट आता है, लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप कन्विंस्ड हैं, तो कहानी बन जाती है, मिसालें बन जाती हैं, और हिस्ट्री क्रिएट होती है। इसी के साथ ये आज की इंस्पायरिंग फिल्मी और यादों से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। सपने देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, जिद अगर सच्ची हो तो कहानी दुनिया लिखती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर चीज का जुगाड़ एक्सपर्ट, ये बंदा बोलता है तू टेंशन मत ले, जुगाड़ हो जाएगा। और लास्ट में जुगाड़ ये होता है, चल कल देखते हैं।

0: एक आवाज जो पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज हम आवाजों की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक आवाज है और फिर एक और आवाज है और फिर एक तीसरी आवाज है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? क्योंकि दोस्तों, हर सुर के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक कहानी होती है, एक इंसान होता है। आज की कहानी भी ऐसी एक आवाज से शुरू होती है। एक ऐसा वक्त था जब फिल्म्स में एक्टर्स खुद गाते थे। जी हाँ, ना कोई प्लेबैक सिंगर, ना कोई रिकॉर्डिंग मैजिक। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही गा रहा है, और उस जमाने में एक नाम था, अशोक कुमार। उन्होंने कई गाने गाए और फिर उन्हीं गानों को एक और आवाज ने अमर कर दिया। कौन? द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स, किशोर कुमार। उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ना अशोक कुमार की है, ना किशोर कुमार की। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने इन आवाजों को जन्म दिया। एक कंपोजर, एक क्रिएटर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक पाइनियर। उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन ये नाम उन्हें दिया गया था। उनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। और दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक डिसीजन जो बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हायर किया गया था बॉम्बे टॉकीज ने, उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टूडियो। एक सपना, एक मौका। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी, और सिर्फ औरत नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये काम उनके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हो और आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, और यहां भी वही हुआ। यहां वो इंसान थे हिमांशु रॉय। उन्होंने कहा, नहीं, यही हायर होंगी। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और क्लियर विजन, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नाम बदलना पड़ेगा। और खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी। दोस्तों, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कभी कभी अंदर का जुनून बाहर के नाम से बहुत बड़ा होता है, और इस तरह सरस्वती देवी बनी इंडिया की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आज जब हम फीमेल कंपोजर्स की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन था। कुछ सालों बाद एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड एक्ट्रेस बीमार थी, उन्हें जोर की खांसी थी और वो गाना नहीं गा पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म रुक नहीं सकती थी, टाइम नहीं है। सोल्यूशन, क्या करें, क्या करें, क्या करें? दोस्तों, यहीं से आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी। हिमांशु राय ने कहा, एक काम करते हैं, गाना कोई और गाएगा, एक्ट्रेस सिर्फ लिप सिंक करेगी। और गाएगा कौन? सरस्वती देवी। पर्दे के पीछे से वो गाती रही और स्टेज पर एक्ट्रेस उस आवाज को जीती रही। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला प्लेबैक सिंगिंग मोमेंट। सोचिए, आज हम जितने भी गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर किशोर कुमार जी से लेकर रफी साहब से लेकर अरिजीत सिंह तक, सबकी फाउंडेशन उस एक मोमेंट ने डिफाइन की। कितनी अजीब बात है ना, आवाज उनकी लेकिन चेहरा किसी और का, टैलेंट उनका लेकिन क्रेडिट हमेशा सामने वाले को मिलता। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने बस क्रिएट करना कंटिन्यू रखा। और दोस्तों, यही असली ग्रेटनेस होती है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं होते, स्पॉटलाइट में भी नहीं होते, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी होती है। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर, एक टेक्नीशियन और कभी कभी एक आवाज जो पर्दे के पीछे होती है। आजकल क्या होता है, रील बनानी है तो पहले कैमरा सेट, फिर लाइटिंग, फिर फिल्टर, फिर कैप्शन, जस्ट बीइंग नेचुरल। और उस जमाने में ना फिल्टर ना ऑटोट्यून, सिर्फ प्योर अनफिल्टर्ड टैलेंट। दोस्तों, आज जब आप कोई गाना सुनो ना, तो सिर्फ सिंगर को याद मत करना, थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने कंपोज किया, किसने चांस दिया, किसने रिस्क लिया और किसने पर्दे के पीछे रहकर हिस्ट्री लिख दी। क्योंकि हर आवाज जो सुनाई देती है ना, उसके पीछे एक और आवाज होती है जो कभी सुनाई नहीं देती, बट जिसके बिना वो कहानी अधूरी होती है, वो आवाज अधूरी होती है। इसी के साथ आज का ये सोलफुल, म्यूजिकल और दिल को छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक के लिए गाने सुनते रहिए, गुनगुनाते भी रहिए और महसूस भी करते रहिए।
1: ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी, कभी पहन लेता हूं कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं, जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा, जो याद रहेगा सिर्फ इतना

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन एक्टिव, रिप्लाई इनएक्टिव। ऑनलाइन ग्रीन डॉट फुल ऑन है पर रिप्लाई जीरो। ऐसे लोग मैसेज नहीं पढ़ते, सोच के रिप्लाई डिले करते हैं। What?

पादुकोने। नाम सुनते ही एक ही कहानी, एक ही चेहरा सामने आता है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूं। अगर मैं बोलूं पादुकोने, तो आपके दिमाग में कौन आता है? जी हाँ, मुझे पता है, आप सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, दीपिका पादुकोने, द ग्रेसफुल ब्यूटिफुल सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी नहीं, आज की कहानी है एक और पादुकोने की, जो स्क्रीन पर कम दिखे लेकिन सिनेमा के दिल में हमेशा बस गए। एक ऐसा नाम, गुरुदत्त, जिनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोने। और बिलीव कीजिए, इनकी कहानी इतनी फिल्मी है कि अगर कोई उसे लिखता और उस पे फिल्म बनती तो लोग कहते ओवर फिल्मीनेस हो गई भाई। लेकिन ये सब कहानी नहीं, उनका जिया हुआ सच है। सीन वन, एक अजीब सी मुलाकात। सोचिए, एक फिल्म सेट है, दो यंग लड़के, दोनों नए, एक एक्टर दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एकदम फॉर्मल सी बात हो रही है, हेलो हाय कैसे हो, द फॉर्मल एक्सचेंज। और फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो दोनों एक साथ रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ एक दूसरे की शर्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। क्यों? धोबी ने कपड़े उल्टे दे दिए थे, उनकी शर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी और बस दोनों हंस पड़े। ऐसे हंस पड़े कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रेंडशिप में बदल गई और फिर एक प्यारा सा हग। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इतनी सिंपल गलतियों से शुरू होती हैं। एक प्रॉमिस जो हिस्ट्री बन गया, उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। एक्टर बोला, कल को अगर मैं प्रोड्यूसर बना तो तुझे डायरेक्टर बनाऊंगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर बोला, कल को अगर मुझे डायरेक्शन मिला तो मेरी पहली फिल्म का हीरो तू होगा। अब ऑनेस्टली बताओ, ऐसे प्रॉमिसेस हम सब करते हैं, भाई तू सेटल हो जा फिर देख, कल को बड़ा आदमी बनना याद रखना। लेकिन कितने लोग निभाते हैं? दोस्तों, इन दोनों ने ये प्रॉमिस निभाया। और वो एक्टर कौन था? गेस कीजिए, सोचिए सोचिए, द ग्रेट देवानंद। और वो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था? खैर, इसमें कोई गैसेस नहीं, हमारे अपने द ग्रेटेस्ट गुरुदत्त साहब, और उनकी फिल्म बाजी। और रिजल्ट ऑफ कोर्स एक ब्लॉकबस्टर। देवानंद सुपरस्टार बन गए और गुरुदत्त एक लेजेंड बनने की राह पर चल पड़े। मैजिक ऑफ टीम वर्क इसे कहते हैं दोस्तों। गुरुदत्त सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे, जो लोगों को पहचानते थे, टैलेंट को समझते थे और फिर एक ड्रीम टीम बनाते थे। एक दिन शूटिंग चल रही थी, एक सीन था और गुरुदत्त को वो पसंद नहीं आ रहा था। वो डिस्कशन कर रहे थे, ये सीन वीक है, प्रॉब्लम्स हैं, खराब है, सही नहीं जा रहा। तभी एक यंग लड़का जो बस सेट पर था आगे आता है और बिना परमिशन अपनी बात बोल देता है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली क्या होता है, हम सब जानते हैं, कौन हो तुम भाई, चुप रहो। लेकिन गुरुदत्त ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं, समझा। और वो तुरंत बोले, तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म लिखोगे। वो लड़का था अबरार अलवी। और फिर जो फिल्म्स आई, वो हम सब जानते हैं कि सिनेमा के आर्काइव्स की जेम्स थी और आज भी हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौदवी का चांद और साहेब बीवी और गुलाम। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म्स नहीं, जैसे मैंने कहा, ये इमोशंस हैं, क्लासिक्स हैं, हिस्ट्री है। अब सुनते हैं एक और कमाल की पार्टनरशिप के बारे में, वीके मूर्ति जी, एक यंग सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने एक टेक्निकल शॉट सजेस्ट किया और उसे एक ही टेक में परफेक्ट कर दिया। गुरुदत्त बहुत इंप्रेस हुए और फिर हिस्ट्री बन गई।
दोनों ने मिलकर इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक विजुअल्स क्रिएट किए, जैसे वो सनबीम शॉट, जी हां कागज के फूल का वो लेजेंडरी क्लाइमैक्स, प्यासा जहां गुरुदत्त की सिलहूट लाइट के अगेंस्ट होती है, एक सिंबल बन जाती है, एक फीलिंग बन जाती है। दोस्तों ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, ये पेंटिंग्स थी रोशनी और अंधेरे की, ब्लैक एंड व्हाइट का जादू। आज हम कलर सिनेमा के आदि हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में इतनी गहराई से क्रिएट करना, वो आर्ट था, लाइट और शैडो का खेल था, इमोशंस को बिना डायलॉग के दिखाना, ये सब गुरुदत्त और उनकी टीम ने मास्टर किया। ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है, ये कहानी है उन दोस्तियों की, उन ट्रस्ट की और उन टैलेंट्स को पहचानने की। एक धोबी की गलती, एक छत पर मिलना, एक अननोन राइटर की हिम्मत और एक सिनेमाटोग्राफर का आइडिया। एक इंसान जो सबको चांस देता गया और एंड रिजल्ट लेजेंडरी। आजकल हम क्या करते हैं, रेज्यूम चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं और फिर बोलते हैं देखेंगे, अभी वैकेंसी नहीं है। गुरुदत्त क्या करते थे, टैलेंट देखा और सीधा चांस दे दिया। अब जब आप पादुकोणे सुनो तो सिर्फ एक नाम याद मत कीजिएगा, एक कहानी याद करिएगा, एक जर्नी याद करिएगा और एक इंसान को याद करिएगा जिन्होंने सिनेमा को फील करना सिखाया। मैं हूं आपकी दोस्त और अगली कहानी तक के लिए अपने आसपास के लोगों को देखिए। हो सकता है आपके पास भी कोई नेक्स्ट गुरुदत्त हो, बस आपको पहचानने की देर है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: एक बार और सोने वाला, अलार्म बजता है उठता नहीं, दूसरा अलार्म इग्नोर, तीसरे अलार्म के बाद बस 5 मिनट और वो 5 मिनट सीधा 1 घंटा बन जाता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है थिएटर या स्टेज की बहुरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर जितना लंबा है उतना ही प्रेरणादायक भी। रेल की पटरियों से शुरू हुई उनकी कहानी आज मंच, फिल्म और टीवी तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री अतुलेश कुमार जी का, एक ऐसे शख्स जिन्होंने रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और साथ ही रंगमंच पर अपनी एक्टिंग, लेखन और निर्देशन से सबका दिल जीत लिया। 30 से ज्यादा नाटकों में शानदार भूमिकाएं, 2 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और हाल ही में टीवी शो दूसरी माँ में अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं ऐसे कलाकार का जिन्होंने ड्यूटी और पैशन दोनों को बराबर सम्मान दिया। अतुलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: धन्यवाद आलोक जी, और सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में जुड़ करके और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद समीर गोयल साहब का भी।
0: तो अतुलेश जी, शुरुआत करते हैं, तो अब आप आरंभ से बताइए, बचपन में ही एक्टिंग का शौक लग गया था क्या आपको?
1: ये पता नहीं क्या था, एक जुनून था या क्या था, लेकिन हाँ मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था, लेकिन बंदिशें बहुत थी। कभी कभार हम लोग नाटक वगैरह देखने जाया करते थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने पहला पिक्चर जो देखा जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन उससे पहले मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। ये पता नहीं कहाँ का एक वो, पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, एक उत्सुकता थी, कोई कीड़ा था या क्या था, या बचपन में मैं मेरे फादर को देखा करता था कि भाई फादर के साथ में बैठ करके कुछ एक्टर एक्टिंग सीखा करते थे और कुछ हमारे यहाँ रिहर्सल वगैरह चलती थी, लेकिन जब मैंने होश संभाला तब तक हमारे फादर ने ये सब छोड़ दिया था। तो ये समझ लो कि बचपन से ही मेरी कुछ इसमें उत्सुकता रही, और बहुत बाद में जाके पता लगा कि हमारे फादर किसी जमाने में ड्रामा डायरेक्टर हुआ करते थे, जो किससे बहुत सुनाया करते थे वो, लेकिन मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो प्ले डायरेक्ट करते थे। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट फादर के टाइम के वो मिले, मिल करके मैंने उनको पैर वैर छुए तो उन्होंने कहा हाँ हम आया करते थे और अंकल जो है ड्रामा डायरेक्ट किया करते थे। ये बहुत बाद में आकर के मुझे पता लगा।
0: भाई अतुलेश जी, ये बात तो अद्भुत है, हमारे साथ भी आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है, ये बात शेयर नहीं हुई कि आपके फादर को भी डायरेक्शन का और एक्टिंग का शौक था। ये तो आज ही इस इंटरव्यू के दौरान मुझे पता लगा है, और नॉस्टैल्जिक भी है और अद्भुत भी है, और उसी से शायद आपने ये लिया है।
1: बिल्कुल, मजे की बात ये थी आलोक जी कि हमारे फादर को मैंने कभी पिक्चर देखते हुए नहीं देखा, और उनके ब्रदर वगैरह जो थे हमारे ताऊ या चाचा जो भी होते थे उनको रिक्वेस्ट करते थे कि चलो पिक्चर देख आते हैं, तो वो कभी पिक्चर देखने नहीं जाते। एक बड़ा मुश्किल से एक दबाव बना के उनको वक्त पिक्चर दिखाने लेकर के गए, फादर बीच में से ही उठे आए, बलराज साहनी की पिक्चर थी।
0: हाँ बहुत, चलिए बहुत अच्छा है। अब आप थोड़ा आपके रेलवे के सफर पे आते हैं, आपने रेलवे में एक बहुत ही लंबा और ऑनरेबल कैरियर बिताया, लेकिन साथ ही साथ आप ड्रामा और कल्चरल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे आप मैनेज करते थे?
1: ये थोड़ा बचपन से ही थोड़ा शौक था कि भाई मैं कहीं एक्टिंग करूं या क्या करूं, तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो हम लोगों ने खोला हुआ था, फोटोग्राफी का एक शौक वो भी था हमारा, तो फोटोग्राफी करने जाया करते थे। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ मेरे फादर की वॉइस, तो फादर भी रेलवे में थे, तो फादर चूंकि बहुत एक्टिव थे तो लोग बागों को मुझसे भी उतनी ही ज्यादा उम्मीदें थी। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1984 के अंदर, तो उस समय से ही लोग बाग मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम इस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, सब जगह मेरे पीछे पड़े रहते थे। और पता नहीं क्यों एक आत्मविश्वास उनके अंदर था कि ये आदमी कर जाएगा, इसको जो काम दो वो कर लेगा ये। और मैंने भी उसको ये समझते हुए लिया कि फादर की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे करना है। तो ये एक अद्भुत रहा।
0: मतलब फादर एक साये की तरह आपके साथ साथ हमेशा रहे, एक तरह से अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
0: आपको याद है आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई, और कैसे उस वक्त आपने अनुभव कैसा रहा था, वो कैसा हुआ?
1: वो बहुत ही मजेदार रहा। वो एक्चुअल में मैं पहला, अगर सोचा जाए तो पहला स्टेज तो मैंने प्राइमरी स्कूल में, जब मैं मेरे ख्याल से नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, तब हमको एक सॉन्ग के लिए खड़ा किया गया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था तो उसमें एक सॉन्ग दिया था, तो उसमें वो कर गुजरे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में एक सनक सी थी जिसको मैं पहचानने में भूल कर रहा था क्या कर रहा था। मैं जब फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मैं पढ़ता था, आदर्श विद्या मंदिर बांदीपुर के अंदर। उस समय एक प्ले था, उसका नाम था हृदय परिवर्तन। ये था महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का। शक्ति सिंह किन्हीं कारणों से अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि भाई मैं अपने भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं, तो मेरा रोल था शक्ति सिंह का, मैं महाराणा प्रताप का पीछा कर रहा हूं और वो पलट करके मुझे देखते हैं, आगे भागते हैं। लास्ट में मतलब ये कि स्टेज की परफॉर्मेंस थी तो इसलिए उनको स्टेज पर रुकना ही था। मैं उनके आगे गड़गड़ाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। इतने में अकबर का कोई सिपाह सालार जो होता है वो, उसने तीर चलाने की कोशिश करी और मैंने अपने तीर से उसको मार दिया। और उस समय आंसू तो खैर क्या आते थे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे आंसू आए। मैं महाराणा प्रताप के कदमों में पड़ा हुआ था, महाराणा प्रताप ने मुझे गले से लगाया, ये एक मुझे अभी भी वो याद है। ये पहला
0: बहुत
1: था।
0: वैसे आपने बहुत पुरानी याद दिला दी मुझे भी। ये शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का जो है, ये हम लोग के स्कूल की किताब में भी ये चैप्टर था, और
1: जी
0: हल्दीघाटी के युद्ध से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें भी बहुत पुरानी याद है। आप गजब की चीज याद दिला दी आपने, ये
1: क्या बात।
0: हिस्टोरिकल बहुत बढ़िया है। तो चलिए इस पुरानी हिस्टोरिकल बात पे ही एक अपन गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं।

0: आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और जॉइंट कल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं। उस समय में रेलवे में कल्चरल एक्टिविटीज का माहौल कैसा था, थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं कुछ उसके बारे में, रेलवे के बारे में।
1: यूं तो रेलवे की एक सशक्त टीमें रही हैं जगह जगह, लेकिन जयपुर डिवीजन इस मामले में कहीं थोड़ा सा पीछे था। हाँ, मुझे याद है कि 1982 के अंदर रेलवे की एक टीम ने या एक टीम लीडर ने यहाँ 82 में जब एशियाड 82 हुए थे, उस समय के लगभग 1000 लड़कियों को लेकर के घूमर वहां कराया था। तो वो चूंकि फादर के दोस्तों में हुआ करते थे, मैं उनके टच में था, तो वो टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट पे हुआ करते थे, तो वो डांस भी अच्छा करते थे, अच्छी वो करते थे, तो मैं उनके टच में था बराबर से। लेकिन हाँ, रेलवे का जो आप कह रहे हैं कि कल्चरल था, कल्चरल बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन जयपुर डिवीजन में काफी कम रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी फरमान कुछ ज्यादा दबाव में चलता था।
0: ओके, अच्छा। तो,
1: और जहां तक हम बात करें जयपुर डिवीजन की, मतलब ये डिवीजन बने हुए थे, वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन था जयपुर डिवीजन, यहाँ ब्रिटिश टाइम का इंस्टीट्यूट बना हुआ था जिसके अंदर किसी जमाने में बहुत अच्छे शो हुआ करते थे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था बांदीकुई में, और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था फुलेरा के अंदर। तो बांदीकुई में जो इंस्टीट्यूट चलते थे, वहां इंस्टीट्यूट में हम लोग प्ले वगैरह देखा करते थे, और उसमें हमारे फादर कभी डायरेक्ट किया करते थे।
0: और ये एक छोटे मियां बड़े मियां ट्रेन रेस, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसा बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया जो बहुत पॉपुलर रहा, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो शेयर कीजिए।
1: उसके पीछे की कहानी ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2003 के अंदर इसका जन्म हुआ। तो अलग अलग जोन बनाए गए थे, नए जोन खोले गए थे, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से मिलकर के एक नया जोन बनाया गया था, और ये अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ था। तो नई एक कमेटी बनाई गई कि भाई इसका जो अपन पहली बरसी जो मनाया जाए, पहला एनुअल डे जो मनाया जाए, वो किस तरीके से मनाया जाए। तो एक बहुत ही क्रिएटिव डॉक्टर एनके कल्ला थे, उन्होंने पूछा होगा किसी से कि भाई यहाँ कल्चरल का कोई संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो उसमें ये रहा कि मेरा नाम उभर करके आया सबसे पहले, कि अगर किसी आदमी को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो सबसे पहला शख्स अखिलेश होगा। तो चर्चाएं होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम एक अद्भुत तरीके का करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी लाइन भी है और बड़ी लाइन भी है, गैस कन्वर्जन का काम चल रहा है, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि हम एक छोटी लाइन के डिब्बों के अंदर जो सीटें होती हैं उन सीटों को हटा के साइड में लगाते हुए बड़ी लाइन के डिब्बे हैं उनके अंदर बड़े, मतलब बीच में से सीटों को हटाते हुए साइड में लगा, और बीच में मतलब 8-8 बोगियों के वो बनाए गए, और बीच में जो है कल्चरल प्रोग्राम चलते रहे। तो हमारे पास में जो जोन में डिस्ट्रिक्ट थे या डिवीजन थे, वो थे जोधपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन। इसमें भी वर्कशॉप भी शामिल थे, जिसमें बीकानेर वर्कशॉप था, जोधपुर वर्कशॉप था, अजमेर वर्कशॉप था। तो इस तरीके से हमारे पास में टीमें पर्याप्त, दो दो टीमें हमने मंगाई सब जगह से, और हमारा सौभाग्य रहा कि उसके अंदर जो है जसदेव सिंह जैसी शख्सियत भी उसकी विटनेस रही। बहुत ही बढ़िया चला है, छोटी लाइन का और बड़ी लाइन का एक बराबर से रेस हुई, उस रेस में कभी छोटी लाइन आगे कभी बड़ी लाइन आगे, तो इस तरीके से चलता रहा।
0: बड़ा इंटरेस्टिंग।
1: हाँ, जिसको बीबीसी तक ने कवर किया इस न्यूज को।
0: अरे वाह वाह वाह, ये तो जसदेव सिंह साहब की आपने याद दिला दी, क्या हस्ती थे, वो भी जयपुर के ही थे भाई, वो जयपुर के थे और क्या तो कमेंट्री करते थे क्रिकेट की और हॉकी की, तो खैर गजब के ही थे वो।
1: मेरे लिए इससे बड़े सम्मान का विषय कोई नहीं था कि मैं बिल्कुल साक्षात जसदेव जी के सामने खड़ा हुआ हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ, जहां कभी मैं कमेंट्री कान लगा करके उस पर ट्रांजिस्टर पर सुना करता था कि जसदेव सिंह जी हॉकी की कमेंट्री कर रहे हैं, क्या मजा आता था।
0: अद्भुत अद्भुत, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के नाम पे, इसके नाम की शायद कोई एक फिल्म भी आई है,

0: अब अतुलेश जी आते हैं आपकी थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में।
1: जी,
0: आपकी पहली थिएटर एक्टिंग 1968 में और आखिरी 5 अगस्त 2025 में, मतलब लगभग 6 दशक का शानदार सफर। इतने सालों तक एक्टिंग का जुनून कैसे बरकरार रहा है आपका?
1: अब यो सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपको अपना दैनिक कार्य भी करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं नौकरी भी करनी है, और आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं, तो समय में से समय ही चुराना पड़ता है साहब, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस छोटे छोटे क्षणों को चुराते हुए मैं अपना काम करता रहा। कुछ तो ये रहा कि लोगों का विश्वास मेरे साथ में रहा, कुछ मेरे पिताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, तो कुल मिलाकर के ये पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया बराबर से।
0: आपने स्टेज पे भी एक्टिंग की है, कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, क्या दोनों में क्या फर्क महसूस होता है?
1: स्टेज की एक्टिंग आपके पसीने निकाल देती है, और जो आप पर्दे पे जब आप करते हैं तो ये समझ लो कैमरा मैन के पसीने निकलवा देती है। मतलब वहां तो आपको रिटेक के चांस ही चांस है, वो बार बार कहेगा कि रिटेक रिटेक रिटेक, और जब आप स्टेज पे होते हैं तो स्टेज का जब आप शो कर रहे होते हैं और आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई तो सामने जो आपको डायलॉग कवर कर रहा है को आर्टिस्ट, उसके पसीना आ जाते हैं। बहुत मुश्किल है साहब स्टेज की आर्टिस्ट स्टेज पे आपको परफॉर्म करना, और उतना मतलब उतना तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, लेकिन वहां भी मजा हुआ, कलाकारी चाहिए आपको, जहां आप बड़े पर्दे पे या टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं तो वहां भी मजा हुआ, कलाकार चाहिए, लेकिन वहां क्या रिटेक के चांसेस होते हैं, या कोई चांस नहीं है। या अगर आपको इम्प्रोवाइज करना आता है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है।
0: ये बहुत ही आपने गहरी बात कह दी और सही बात है, स्टेज की एक्टिंग और कैमरे के सामने की एक्टिंग में अपना डिफरेंस बहुत ही बखूबी बयान कर दिया। चलिए, आपने 30 से ज्यादा नाटकों में लीड और सपोर्टिंग रोल किए हैं, कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपको याद है, आपके बहुत दिल के करीब है, ऐसा कोई किरदार है?
1: हाँ, किरदार तो है सर, मैं बताऊं आपको, एक बार मैं प्ले कर रहा था तो मुझे बोलना था विद्यावती, विद्यावती मेरी मिसेज का नाम था, और बोलना था ये क्योंकि विद्यावती मैं आज कमला की शादी तय कर रहा हूं, मेरे मुंह से ये निकल गया विद्या की माँ मैं आज रिश्ता तय कर आया हूं। फिर मैंने वहां कमला नहीं बोला, कमला की जगह अपनी बेटी का बोला, ये मैंने वहां संभाला, तो बड़ा हिला देने वाला बात हुई, और लेकिन वो बड़ा सक्सेस हुआ और उसमें हम लोगों का अवार्ड भी मिला, क्योंकि वो डायरेक्टर जानता था और मैं जानता था कि काम मिस्टेक हुई
0: जी,
1: तो बस ये रहा। और एक हादसा ये हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था तो उस डायरेक्शन के अंदर एक लड़का हमारे बहुत पीछे पड़ा कि देखो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज कहां तक जाती है। मेरा कायदा ये रहा है कि जब मैं टीम के साथ करता हूं, एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूं, तो मुझे चाहिए होता है कि स्टेज पे से कम ऑडियंस की 5 पंक्ति तक आपकी आवाज बिना माइक के जाए, उसके मतलब उससे कम मैं सहमत नहीं होता। तो उस आर्टिस्ट ने मुझे काफी दूर तक आवाज सुना करके बताई, लेकिन वो जैसे ही स्टेज पे आया, स्टेज पे आने के बाद वो ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक होते के साथ ही अब वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि मैं विंग में खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये तो खतरनाक काम हो गया। मैंने जबरदस्ती एक आर्टिस्ट को स्टेज पे धक्का दिया, वो बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ, उसने बात को समझा। तो ये तो बात रही, लेकिन जहां तक मेरे किरदार का सवाल है तो मुझे सेठ जी के रोल बहुत अच्छे लगे, जहां जहां मैंने सेठ की किरदार निभाए, या कहीं कहीं मुझे ऐसे करेक्टर आर्टिस्ट में मान के चलो कि करेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते।
2: अच्छा, नहीं, सेठ का रोल आपके दिल के काफी गहरे, अम्मा वो बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी वगड़ी लगा के सेठ के रोल जो
1: जी
2: होते हैं वो आपने काफी किया लगता है।
1: जी
2: तो चलिए, इस किरदार की बात पे एक गाने के लिए हम एक साथ में लेते हैं अपने एक गाने को और एक गाना सुनते हैं।

0: अतुलेश जी, आप दो बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीत चुके हैं, डायरेक्शन का एक्सपीरियंस एक्टिंग से कितना अलग रहता है?
1: डायरेक्शन और एक्टिंग का ये समझ लो कि काफी डिफरेंस है। डायरेक्टर जो होता है उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है कि मतलब ओवरऑल सारे करेक्टर जितने भी काम कर रहे हैं वो उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। जिस हद तक आपको पब्लिक तक आपको अपनी बात पहुंचानी है उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उनके इमोशन वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि जो इमोशन आप पब्लिक में डालना चाहते हो या पब्लिक के चेहरे पे देखना चाहते हो। मतलब अगर कुछ ऐसा है कि भाई आंख में आंसू आने हैं तो पब्लिक बाकायदा रुमाल निकाल के आंसू पोंछते हुए दिखाई देनी चाहिए। अगर हंसी की बात है तो वो खुल करके हंसने वाली बात आ जानी चाहिए। और जहां तक एक्टिंग का सवाल है, वो एक्टिंग तो आप अपने ऊपर ही पूरा खर्चा करते हो, अपने ऊपर ही पूरा फोकस करते हो, आप कोशिश करते हो उस किरदार को पढ़ने की, उस किरदार की सराउंडिंग्स में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखने की, और उसको उतार करके, मतलब जैसे किसी किरदार को आपने जहन से लेकर के और आपके कलेजे तक उतारा और कलेजे से निकाल करके मुंह से निकाल के और आपके हाथ और आंखें और जो जो ऊपर मतलब शख्स से शिरा से लेकर के और नीचे मतलब कलवे के नाखून तक आपका जो पोस्चर आना चाहिए, जस्चर आना चाहिए, वो सब दिखाई देना चाहिए, वो उसकी बात है।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया ये बात, ये डिफरेंस। तो एक प्ले तो आपने खुद भी लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्ट भी किया है, तो और शायद वो आकाशवाणी पे भी रिले हुआ था, कोई उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए कुछ।
1: हुआ यो कि हमारे यहाँ रेलवे वीक मनाया जाता है, सब जानते हैं कि भाई अप्रैल के उसके अंदर रेलवे वीक मनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: जब रेलवे पहली रेलवे शुरू हुई थी उसको लेकर के पूरी इंडियन रेलवे के अंदर एक रेलवे वीक मनाया जाता है, तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें अवार्ड फंक्शन भी होते हैं। तो मुझे कहा गया कि एक शॉर्ट प्ले आप लिखो और लिखने के बाद में वो करना है, तो मैंने एक शॉर्ट प्ले लिखा, बहुत हंसी मजाक का प्ले था वो। तो उसको इत्तेफाक से ये आपके हरिराम आचार्य जी के भाई थे घनश्याम आचार्य, जो आकाशवाणी के अंदर मेरे ख्याल से ड्रामा डिपार्टमेंट उनके पास में था, तो वो वहां देख रहे थे उसको, कवर कर रहे थे या क्या, मतलब वो बहुत आनंदित हो रहे थे। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो बोले यार ये किसने लिखा है यार, ये मिलाओ उससे मिलाओ। तो लोगों ने कहा ये इन्होंने लिखा है, तो इनसे बात कर लें आप। तो मेरी बात हुई घनश्याम आचार्य जी से, तो उन्होंने कहा मुझे मुझे एक प्रोग्राम चाहिए है युव वाणी के लिए। अब चूंकि टीम का लीडर मैं था, तो जो टीम के लीडर होने के नाते मैंने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए कि भाई सब तरह के प्रोग्राम उसमें शामिल हो जाए, वैरायटी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें गाना भी हो, म्यूजिक भी हो, प्ले भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई युव वाणी के लिए आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें वैरायटी प्रोग्राम चलेगा या खाली मेरा प्ले आपको लेना है? बोले वैरायटी हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया माउथ ऑर्गन प्लेयर थे, उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया और फिर एक प्ले लिखा मैंने हाथ की हाथी, और लिखने के बाद में वो रखा मेरे पास में, और उन्होंने कहा मैं जल्दी संपर्क करूंगा आपके आपसे। तो उन्होंने हमको वो चांस भी नहीं दिया। एक हमारे गजल गायक भी थे तो वो उनका गजल का भी प्रोग्राम लिया मैंने, तो उन्होंने वो चांस भी नहीं दिया मुझे कि भाई मैं उसको एक दो रिहर्सल निकालूं। बोले आ जाओ फटाफट आ जाओ आकाशवाणी में अंदर, उसके अंदर लगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और जाते के साथ उन्होंने बोले अंदर घुस जाओ और इसको पढ़ो, अपने प्ले को पढ़ो। तो मैं अपने साथ तीन चार लोगों को ले गया, जिसमें एक फीमेल आर्टिस्ट भी थी। तीन चार लोगों को ले जाने के बाद में वहां जब हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा बीच में, अरे आप थोड़ा सा निकल के इधर आओ, हारमोनियम पे दो बीट दे दो फटाफट। वो बीट दी। जब शाम को मैंने सुना तो मैं तो चकरा गया बुरी तरह से। मैंने कहा ये मेरी आवाज है, और वो जो हारमोनियम हमने प्ले किया था वो इतना फिट बैठ रहा था, मजा आ गया उसके अंदर। तो वो प्ले मेरा लिखा हुआ था, उसमें हमने एक्ट भी किया अपने हमारी टीम के साथ में। एक मजेदार रहा
0: बहुत अद्भुत
1: एक्सपीरियंस।
0: विवरण बताया आपने आकाशवाणी का, और घनश्याम आचार्य जी की जो बात आपने कह दी ना, कोइंसिडेंटली कह लीजिए या कैसे, घनश्याम आचार्य जी से मेरा भी किसी जमाने में बड़ा परिचय था। इन्होंने मुझे भी आकाशवाणी में एक बार कुछ पढ़ने के लिए बुलाया था, तो मेरी भी दोस्ती इनसे काफी थी। चलिए, बहुत पुरानी बात याद आ गई। तो घनश्याम आचार्य जी की याद में एक गाना सुन लेते हैं, मेरे को बड़े पसंद थे घनश्याम आचार्य जी, एक गाने के लिए रुक जा।

0: लिख दो।
1: अतुलेश जी, अब आते हैं आपके फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के सफर पर। आप 7 बॉलीवुड फिल्में, 6 टीवी सीरियल्स और 4 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इनमें से कौन सा मीडियम आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
2: बड़ा पर्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं ना, टीवी सीरियल्स वगैरह जो वो आपके घरों तक पहुंचते हैं, वहां से आपको फ्री डायरेक्ट मिलता है। अब बड़े सिनेमा को तो हालांकि आजकल तो सभी प्लेटफॉर्म पे आने लगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल गए, सब पे आने लगे, लेकिन तीनों जगह वो मौज मस्ती है और वो बढ़िया आलम रहता है। बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट रहता है इनका। मुझे तो तीनों जगह पसंद करने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेरा लगाव रहा थिएटर से, जो आप ये समझ लो कि ये मूल है उसका। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन लोगों ने फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। अब वो हो सकता है कि उनके अंदर कहीं से कोई निखार हो या क्या हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि थिएटर करना जरूरी है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, उम्दा एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह कह लीजिए या कोई, ये सब स्टेज से ही निकले हैं और अब अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हाल ही में आपने एक NTV के लिए शो किया है, दूसरी माँ। इस अनुभव के बारे में बताइए, ये कैसा है?
2: ये बड़ा बढ़िया अनुभव रहा साहब। हालांकि कहानियां आपके इर्द-गिर्द ही होती है, वो कहानियां कुछ लोगों की नजर में आ जाती हैं, वो राइटर उनको लिखते हैं और किसी हकीकत तक पहुंचते हैं। वहां एक अच्छा माहौल आपको मिलता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नेचुरल माहौल मिलता है जिसमें आपको कुछ करने को मिलता है कि हाँ भाई ठीक है। मुझे वैद जी का रोल मिला था, पहले रोल मिला था मेरे को जज का इसके अंदर, लेकिन उसके बाद मुझे रोल मिला इसमें वैद जी का। और वैद जी भी एक इस तरह के वैद जी के पैसे के लिए कुछ भी करना है।
1: ओके, अच्छा।
2: तो उसमें ये है कि एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में, जैसे रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं और वो गांठें अपने उसकी वजह से पड़ती हैं कि अपनी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती, या कोई ये चाहता है कि मेरी बड़ाई होती रहे परिवार के अंदर, बाकी के लोग ऐसे ही चलते रहे। और जहां कहीं दूसरे की बड़ाई की बात आती है, या कहीं किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, या कहीं कोई के मतलब ये समझ लो कि किसी की इनकम में फर्क आने लगता है, किसी की रेपुटेशन में फर्क आने। तो एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के बीच में ये रहा कि एक साजिश सी चल रही थी। आजकल तो हर एक सीरियल के अंदर आपको साजिश मिलेगी, है ना। तो वहां क्या थे, एक मतलब परिवार की एक सदस्य दूसरी सदस्य को इस बात पे मजबूर कर रही थी कि माँ ना बने। तो वो मेरे पास आती कि मेरे को वैद्य जी कोई ऐसी दवा दे दो, बहुत परेशानी में हूँ और ये कर दो वो कर दो। बाद में खुलासा होता है कि अरे मैं तो किसी साजिश का शिकार हो गया, मैंने उसको भी दवा दे दी और ये क्या किया मैंने। ये कुछ बड़ा मजेदार रहा।
1: अरे वाह, अच्छा, मुझे समझा कि दूसरी बात से मुझे ये लगा था कोई सौतेली मावा का किस्सा होगा।
2: हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है, किसी ने अडॉप्ट किया किसी को, लेकिन वो उसको भाया नहीं, दूसरी लेडी को ये नहीं भाया कि इसने इसको अडॉप्ट कैसे कर लिया। तो कुल मिलाकर के जब अडॉप्ट कर लिया तो बोले अब इसने अडॉप्ट कर लिया, अब इसके बच्चा नहीं होना चाहिए।
1: तो अतुलेश जी, कोई ऐसा रोल या करेक्टर जिसे करने की अब भी आपको ख्वाहिश है और यार ऐसा मेरे को कोई रोल मिल जाए तो मैं जरूर करूंगा, कोई है ऐसा?
2: बिल्कुल, अभी जो है ना मुझे करेक्टर एक्टर में कुछ मतलब ऐसा जो एकदम परिवार का मुखिया है और मुखिया होने के बावजूद भी पूरे कमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार में बिखराव रहता है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है, ऐसा कुछ करेक्टर मुझे करना है। ये ऐसी तमन्ना है कि भाई वो बराबर परिवार से जूझ रहा है, कभी कहीं संकट खड़ा हो जाता है, कभी कोई संकट खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर की बात ये कि एक ऐसे करेक्टर की तलाश है उन्हें।
1: नहीं, ये तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन चलिए आपके इस करेक्टर की तलाश के लिए हम एक गाना सुनते हैं इस स्टेज पर।

0: अतुलेश जी, आपने एक्टिंग के साथ कई नाटक लिखे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज भी किया है। इतनी
1: जी
0: क्रिएटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन आती कहाँ से है भाई, ये तो बताइए हमें।
1: बस यूँ समझ लो कि मैं करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। और मैंने एक कोशिश ये की है कि ना थकने की, कोई वो ऐसा होना चाहिए कि जहन में थकावट नहीं होनी चाहिए। ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, तो ये कोशिश रहती है कि। और दूसरा पीछे ये भी है कि मैं अपने पिताश्री का कुछ, अगर 0.05% भी कुछ करता हूँ तो अपने आप को सफल मानूंगा। क्योंकि मेरे पिता के विषय में जब मैं सुनता हूँ, उनके दोस्तों से सुना करता था कि हमारे पिता अपनी बगल में 8 संस्थाओं को दाब के चला करते थे और सबको समय दिया करते थे बावजूद अपनी नौकरी के। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि कम से कम उतना एनर्जेटिक तो रहूं। और मैं ये सोचता हूं कि कभी थक कर बैठ गया तो अपने घर लौट जाऊंगा, तो मैं थकने की कोशिश नहीं करता।
0: वाह, क्या बात कही है। एक तरह से आपकी जितनी एक्टिविटीज है, जितनी एनर्जी है, अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट है। आप, वो आपके साथ रहते हैं और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है और आप उससे काम करते रहे। क्या बात कही है आपने। पिता के लिए इससे बड़ी ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। कोई बेटा ये कहे कि मुझे सब कुछ उनसे मिल रहा है, एनर्जी भी उनसे मिलती है, क्या बात है।
1: जी
0: स्कूल टाइम में आप बास्केटबॉल कैप्टन भी रहे हैं, क्या उस टीम वर्क का असर आपके थिएटर ग्रुप या स्टेज लाइफ पर भी पड़ा है।
1: बिल्कुल साहब, टीम वर्क तो आपका सब जगह काम आता है। मतलब एकाकीपन जो है ना, अकेला में एकला चलो वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एकला चलो में तो मेरे ख्याल से मजा नहीं है। जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो सफलता जो सबको मिलकर के जो प्रसन्नता रहती है ना, उसका मुकाबला नहीं है साहब।
0: सही कह रहे हैं, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे इवन बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इतने बड़े टीम वर्क ही इनको सबको बनाता है। यही एसेंस है इस सारे काम का। क्रिएटिव कोई भी काम होगा, अकेले बहुत कम चीजें होती हैं। पेंटिंग भले ही आप अकेले कर लो, लेकिन ये जो मीडिया है, ये सारा टीम वर्क का है। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया।
1: बिल्कुल सर, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा साहब उनका। हमारे मित्र हैं पंडित हरिहर शरण भट्ट, सितार वादक जो हैं। उनके मुंह से एक वाक्य सुना मैंने, जब से वो मेरे 2001 के अंदर मेरे टच में आए थे, मैं उनके संपर्क में आया, तो उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनता हूँ कि अतुल जी, भाई साहब, मैंने पैसा तो अपनी जगह कमाया है सो कमाया, लेकिन मैंने आदमी कमाए हैं। अपने व्यवहार से किसी आदमी का आप दिल जीत लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये मैंने उनसे सीखा था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। भट्ट जी का नाम बहुत मशहूर है और बहुत आला दर्जे के कलाकार है।
1: जी
0: आपने प्रशासनिक क्षेत्र और कला दोनों में बेहतरीन काम किया है। आपकी
1: जी
0: नजर में आपको सक्सेस या सफलता की क्या परिभाषा है, क्या क्या कहेंगे आप इसको अगर।
1: सफलता की परिभाषा ये है कि जो काम मिले, प्रसन्नचित्त होकर के उस काम में जुट जाओ। अगर आपसे वो काम नहीं होता है, शुरुआती दौर में ही आपको लगने लगता है कि ये काम आपके उसमें नहीं है, तो आप उसको सीधे सीधे मना कर दो कि भाई ये काम मेरे बूते का नहीं है। अगर आपने काम हाथ में लिया है तो उसको प्रसन्नता पूर्वक निपटा दो। और जहां आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है, टीम का सहयोग जरूर लेना चाहिए।
0: अभी अगर यंग लोगों को कोई आप एक मैसेज देना चाहें, जो अपने जॉब के साथ पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे। एक छोटे से में कुछ बताइए हमें।
1: जब भी काम करें तो कभी तैश में या डिप्रेशन में ना आए, काम करें, उसको काम को एंजॉय करें।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही है आपने। छोटी सी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात। अब हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अतुलेश जी, आज आपके साथ बातचीत करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। आपका जीवन ये सिखाता है कि अगर जुनून सच्चा हो, तो कोई उम्र, कोई काम, कोई सीमा आपको अपने सपनों से नहीं रोक सकती। रेलवे की ड्यूटी से लेकर मंच और कैमरे की चमक तक आपका सफर मेहनत, लगन और कला से भरा हुआ है। आप जैसे

0: लगा हूँ आपके साथ बात कर।
1: वाह क्या बात है। और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हर आवाज के पीछे होती है एक कहानी।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: मंगल पांडे।
6: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी। कहानी जय है बड़ी पुरानी। मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभक्त था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी।
7: दादी जी। अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
8: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
7: हाँ पूछो।
8: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
7: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
8: अच्छा।
7: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
8: अच्छा।
7: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
9: अच्छा।
7: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
8: मंगल पांडे।
7: हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
9: अच्छा।
7: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे।

0: और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
1: बड़े बहादुर थे ये।
0: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
1: वो कहाँ के रहने वाले थे?
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
1: अच्छा।
0: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
2: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे हीरो ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
5: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
6: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
7: ए मंगल पांडे, वॉच आर यू।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
2: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो,
7: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
2: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Tim, bind a coal, tea kona manta hai. Durant, hospital pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ, माँ।
3: लो, देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6वीं कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
6: Send your bill for any infernal damages.
7: Oh, thanks.
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
3: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ।
8: मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है।
3: दीदी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
9: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
10: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
9: लड़की हट।
3: माँ,
9: ये चाकू देख रही है ना?
10: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
3: अरे
10: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
3: क्या बात है? कुछ जल्दी आओ।
2: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
9: चोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: मेरी माँ को छोड़ दो।
9: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो।
2: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
10: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
2: अरे मेरे बात छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
9: चुप चुप, आवाज से गाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
10: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
3: हाँ, पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
3: हेलो।
9: हाँ बेटा, बोलो।
3: पापा। पापा।
9: हाँ बोलो बेटा।
3: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
9: कौन घुसा है?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
9: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
3: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
9: घर में चोर घुसाए।
2: मदद करो।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
11: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
9: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
11: देखो ना सबकी जान
2: बहादुर है मेरी बच्ची।
5: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: from Meri Duniya. Radio Tantya Bhil 90.8 FM Jabwa ki Awaaz.
1: Harappa Sanskriti. ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
2: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोहनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुक।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ, ये देखिए।
0: हाँ,
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए, अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमर बंद में रखता हूँ।
1: तो भी ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: चुप्पन, अरे ओ चुप्पन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो चुप्पन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर उस पर इस सौदे की बाबत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले आ।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदन
0: जी,
1: आप तब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ कुछ देर तो लगेगी, क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं कोई विशेष जल्दी तो नहीं है, मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे, पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर, युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
1: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा,
0: जाती
1: नहीं तो ठंड लग जाएगी।
0: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो। माँ माँ वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
2: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
1: हेलो, कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
0: जाती हूँ।
3: इधर से आइए जी।
4: जी हाँ, आइए आइए
5: जी।
4: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
5: नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: बोधा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
1: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
4: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
1: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है, ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ उसकी निगरानी में बने हैं।
4: हाँ हाँ, याद आया,
1: वो भी यहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आप स्वयं बात कर लीजिए।
4: हाँ हाँ ठीक है, बुला ला।
5: आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं?
4: हाँ, इरादा तो है, अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं, अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
5: जी
1: आओ बेटा।
4: जी
1: ये मेरे पति हैं, व्यापारी शिमुक।
6: नमस्कार।
4: प्रसन्न रहो। अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
6: जी सब मातृ देवी की कृपा है।
4: अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
6: जी।
4: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
6: जी।
4: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
6: जी।
4: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है, ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
0: और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
4: लो भाई, हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है।
6: जी मैं समझ गया, काम कब से शुरू करना है?
4: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
6: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्कार।
4: नमस्कार,
0: नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया।
4: अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा।

0: बोधा, ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
1: हाँ, ये तो ठीक ही सुना है आपने।
2: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
1: नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है। ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
2: ओह।
1: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
2: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
1: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते। हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते। लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
2: अच्छा।
1: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके।
2: और क्या क्या है आपके लोथल में?
0: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
3: जरा सुनिए।
0: क्या बात है?
3: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे? नहीं।
0: हाँ हाँ, लेकिन उदंक?
3: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं। चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
0: अच्छा बोधा।
2: जी पिताजी।
0: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
2: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
1: हाँ चलिए।
2: अच्छा लोथल में तो
1: रखते हैं।
2: अच्छा तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
1: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
2: अच्छा।
1: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
2: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
1: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
2: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
1: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
2: लेकिन वो तो बस इसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
1: ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
2: क्या मालूम।
0: बोधा। अरे बोधा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
1: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
0: अच्छा अच्छा, आप मातृ देवी के दर्शन करना चाहती हो तो चले।
1: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप?
0: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
1: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
0: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
2: पिताजी,
0: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
1: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
0: फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
1: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए मुझे ही लीजिए। मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
0: यानी आप विवाहित नहीं है?
1: नहीं।
0: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
1: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
0: अच्छा अच्छा
1: जी। यदि आपको आपत्ति ना हो तो तो मैं आपकी बेटी से।
0: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं?
1: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
0: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
2: पिताजी।
0: अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो।
2: क्या बात है?
0: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
2: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
0: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
2: क्या सच? क्यों बोधा?
0: लगता है बोधा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है।
2: मातृ देवी की कृपा है। चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा। चलो माँ। आओ बेटा, आइए।

कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं जिनमें ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिलमन को आज का बाहरीन माना जाता है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के नाते मुझे आप ही तो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
0: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया,
0: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बदलाया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम मेरी माँ।

0: केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के योगदान के प्रति नतमस्तक हैं। कैसे, ये सुनिए इस पाठ में, जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित आत्मकथा का एक अंश है।
1: लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग न होने देती थीं, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वो मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वो दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि ये तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थीं, उन्हीं में जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थीं। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वो अवर्णनीय है। मुझे जीवन का सुधार किया है वो अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई

0: परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वो ये कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मां, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं।
1: मेरी मां, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, पाठ संपादन प्रोफेसर अनिरुद्ध राय, निर्माण संचालन प्रभु दयाल खट्टर, वाचन स्वर बाबला कोचर, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में। और किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो आज हमने जो विषय लिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खाद की अगर बात करें, जो हम कल्चर अपने खेतों में डालते हैं, फर्टिलाइजर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, आज हम बताने जा रहे हैं कि कल्चर खाद हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो भूसा से, पत्तियों से और गोबर से जो खाद बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप और हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हम कार्यक्रम के माध्यम से साझा करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते चले आएंगे। हम कोशिश करते हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे, जो उनके लिए, उनकी खेती किसानी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो। आज हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आज किसान वहीं का वहीं है। आज हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।

और खास तौर पर किसान साथियों के लिए कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो परंपरागत खेती चली आ रही है उसको छोड़कर आज हम वैज्ञानिक खेती की ओर, यानी जो वैज्ञानिक ढंग से हम खेती करते हैं उसकी ओर अब हमें रुख करना होगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो पद्धति बताते हैं, जो समय समय पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी जो समय समय पर जानकारी देते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि उनको पता रहता है, उनको सब हालचाल पता रहता है खेती का कि हमारे इस मिट्टी में कौन सी उपजाऊ फसल है जिसको हम लगा सकते हैं, कैसे अपने बीजों का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हमें बीजों का उपचार करना नहीं आता है। हम क्या करते हैं, रखा रखाया जो बीज रहता है, बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं, खासतौर पर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी ये करते हैं कि जो भी पुराना बीज होता है उसको वो रखते हैं और उसको ही अपने खेतों में लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका हमें उपचार करके देखना चाहिए। उपचार का मतलब होता है कि आपको उस बीज को कुछ दाने हमें भिगोना चाहिए, यदि 70% से कम दाने अंकुरित होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये बीज हमें अपने खेतों में नहीं लगाना है, क्योंकि ये बीज हमारे खेती के लिए सही नहीं है। आप और हम जानते हैं कि महंगाई के इस जमाने में खेती करना कितना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में शासन की योजना के साथ साथ कृषि विभाग की मदद के साथ साथ यदि हम खेती किसानी करें तो हमारे आने वाले समय में हम अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, आय तो ठीक है हम दुगनी कर सकते हैं, हम अपने जो खेतों में जो गेहूं या कोई भी अन्य फसलें जो उगाते हैं उसका हम डायरेक्टली सीधा हम मंडी में बेच आते हैं। क्या साथियों और हमारे किसान साथियों, आपने कभी ये सोचा है कि इसको रोक के रखें और इसका जो बाजार में आज चीज़ें बिकती हैं, खासतौर पर अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की बरी बहुत पसंद लोग करते हैं, उसको बनाते हैं, और देखा जाए यदि उसकी पैकेजिंग कर बरी बनाकर हम बाजार में मार्केट में यदि उसको बेचा जाए तो आज हमारी जो फसल जो कम कीमत उसकी लगाई जाती है वो हमें दुगनी या तिगनी कीमत में वो हम अपने फसलों को बेच सकते हैं पैकेजिंग कर। दूसरा मक्का का भी हम पैकेजिंग कर आटा बनाकर उसका हम बेच सकते हैं, गेहूं का आटा बनाकर हम बेच सकते हैं, और भी फसलें हैं जैसे धान की अगर बात करें तो धान की भी हम जो फसल करते हैं उसका चावल डायरेक्टली हम मंडी में देकर चले जाते हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा है कि इस धान की जो फसल हम लेकर आते हैं उसको थोड़ा रोक कर रखें, उसको चावल बनाकर बढ़िया अच्छी तरीके से पैकेजिंग कर और उसको बाजार में बेचेंगे तो हमें जो रेट आज कम मिलता है उस रेट की बढ़ोतरी होगी और हम अपनी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। दूसरी और तीसरी बात ये बताना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी सब्जी भी अपने खेतों में लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा समय है और तैयारी भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं, और उस तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी क्या करें, पानी को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर देखा जाए जहां पर पथरीला इलाका है, जहां पर देखा जाए पानी नहीं रुकता है खेतों में, वहां पर मेड़बंधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे किसान साथियों को। दूसरी जो हमारे पुराने तालाब या बावरियाँ या कुआं उनको रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रिचार्ज करने का ये मतलब है कि आप उसकी साफ सफाई करें, उसका गहरीकरण करें और साथ में आने वाले बरसात के दिनों में उसको जो बरसात का पानी है उस तालाब या कुआं में हम डाल सकते हैं, जिससे आने वाली फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। और ये खास बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे थे। हम समय समय पर मौसम की जानकारी भी देते हैं। अब जो मौसम विभाग कहता है कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान साथी जो सब्जियों में अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में बहुत सारे जो कीड़े या फिर कीट व्याधियां जो रहती हैं उनमें लगते हैं और जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो ऐसे में किसान साथी ध्यान रखें, उनको निगरानी करते रहें समय समय पर। दूसरी बात कि यदि आपको लगता है कि हमारे
सब्जियों में कीट व्याधियों का प्रकोप देखा जा रहा है, तत्काल नजदीकी हमारे कृषि विभाग में जाकर या केवीके में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि तोमर साहब ने बताया था कि हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, उनको पता रहता है कि अब इस मौसम में कौन से कीट व्याधि हमारी फसलों में लग सकते हैं। तो ये बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात जो बताना चाहते हैं कि जो मौसम आने वाला मौसम है वो अगर पशुओं की खास तौर पर बात करें तो अभी से तैयारी कर कर रखें कि पशु जहाँ पर हम लोग बांधते हैं वो छत सही है कि नहीं है। आप यदि छत सही नहीं है, बरसात के मौसम में गिरने की संभावना यदि आपको लगती है तो उसकी मरम्मत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और तीसरी बात और चौथी बात बताना चाहते हैं कि पशुओं की, अगर पशुधन की बात करें, क्योंकि पशुधन ही हमारा सबसे बड़ा धन है खास तौर पर किसान साथियों का, और यदि पशुओं की हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमें जायज सी बात है कि हमें इसका परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे हमें हमारे किसान साथी, अब चूंकि आधुनिकीकरण है, ट्रैक्टर से लोग बखराई करते हैं, जुताई करते हैं, और कई कई जगह देखा जाए, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी हल और बखर से लोग खेती करते हैं, और उन यदि हम पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे, बैलों का खासतौर पर गायों का या भैंसों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको समय समय पर पानी पिलाते रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उनको मिश्रित जो जो घास फूस रहती है खासतौर पर हरा चारा उनको देते रहें, 25 किलोग्राम प्रतिदिन हमें अपने अपने जानवरों को हरा चारा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ साथ में इसके साथ जो मिनरल मिक्सचर आता है खासतौर पर जो जानवरों के लिए आता है, उनको भी खाने के साथ साथ मिनरल मिक्सचर भी हमारे किसान साथी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो वो यदि हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे तो हमें स्वस्थ हमारी खेती होगी, अच्छी खेती होगी और हमें मन भी लगेगा कि हमारे जानवर अच्छे हैं। दुधारू पशुओं में खासतौर पर गर्मियों में दूध कम हो जाता है तो ऐसे में उनके खान पीन के साथ साथ नमक की मात्रा भी देते रहें, सब्जियों का ध्यान रखें और अभी से तैयारी करें, बीजों का चयन करके रखें, क्योंकि बरसात अब बस कुछ दिन बचे हैं कि बरसात आने वाली है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये तो हमने अपने ओर से यानी रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM के माध्यम से आप लोगों को जानकारी साझा की है। अब वह हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं कि शुरुआत में मैंने बताया था कि हम अपने किसान साथियों को विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जो कल्चर खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट तैयार किया जाता है पत्तियों से, भूसे से, धान के भूसे से जो कंपोस्ट बनाते हैं, और ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर मक्का की खेती जाना होती है तो मक्का के जो डंठल निकलते हैं उससे हम कैसे कंपोस्ट, और जो घर की सब्जियाँ सड़ी गली की सब्जियाँ रहती हैं उससे कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, इस पर हाँ ये चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा सुनने से पहले हम एक गीत सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो आपकी बात है।

0: नमस्कार। आज किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे जो धान का और भूसा, कोई भी भूसा का कैसा कंपोस्ट बना सकते हैं, एक समृद्ध जो कंपोस्ट बोलता है उसको, वो बनाने का विधि हम आपको बताएंगे। जैसा हमारा जो नॉर्थ इंडिया में जो भूसा, पर्टिकुलरली जो हमारा धान का भूसा होता है वो जला देते हैं। जलाने का कारण यही है, जो उसको लेबर बहुत लगता है खेत से उसको हटाने के लिए, तो जैसे बर्निंग कर देंगे, जला देंगे, उसमें आसान से वो खेत से निकल जाता है। और अगले क्रॉप के लिए जैसा गेहूँ लगाना है, गेहूँ का और धान का जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी के कारण में जो फार्मर्स, जो हमारा चाषी भाई है, सारा जो भूसा है जला के ये देते हैं। जैसे हमारा देश में फर्टिलाइजर का प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, इसका कारण है जो फर्टिलाइजर डीएपी बनता है, डीएपी हमारा देश में बनता नहीं है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो बाहर से लेके आते हैं हम, बाहर से जो लेने के कारण में उसको कॉस्ट बढ़ जाता है। और हमारा देश में जितना भी जो सॉयल है, जो सॉयल का हमेशा है जो नाइट्रोजन का मात्रा हमेशा कम होता है, जो पोर ही होता है, और फॉस्फोरस का मात्रा मीडियम से लो होता है, और पोटाशियम थोड़ा मीडियम से हाई होता है, लेकिन पोटाशियम बहुत यूज कम होता है। हमारा कृषक भाई मोस्टली वो जो यूरिया यूज करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के हिसाब से, बाकी जो फॉस्फोरस और पोटाशियम यूज करते नहीं। इसका कारण में जो इम्बैलेंस हमारा फर्टिलाइजर यूज होता है, इम्बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब है जो एक बैलेंस खाना हमने पौधा को देना चाहिए था वो नहीं देते हैं, उसको जगह हमने खाली यूरिया जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उसी को देते हैं, फॉस्फोरस और पोटाशियम नहीं देते हैं। हमारा जो FYM जिसको बोलता है फार्म यार्ड मैन्योर, वो फार्म मैन्योर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो है जो गाय का जो काउडंग बोलता है, और बाकी जो यूरिन उसको बना के फिर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट मतलब खाद बनता है जो उसका नाम है फार्म यार्ड मैन्योर, और उसको ऐसा भी हमारा सीधा सीधा खाद बोलते हैं खाद, लेकिन ये खाद में मात्रा बहुत कम होता है। नाइट्रोजन का मात्रा 0.5% होता है, और फॉस्फोरस का 0.25, और पोटाशियम 0.5% हमारा उसमें मात्रा होता है। देसी खाद जिसको हमने जो कंपेयर करते हैं, जो खाद ही बोलते हैं कॉमनली, उसको खाद का मात्रा बहुत कम होता है। तो इसका कारण क्या है ना, जो एक हेक्टर में उसको कम से कम 15 से 20 टन पर हेक्टर देना पड़ता है, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ जो हमारा खाद इतना मात्रा में हमारा देश में अवेलेबल नहीं है। इसका ऑल्टरनेट हमने एक दूसरा जो खाद बनाने का विधि बनाया है, उसका नाम है एनरिच कंपोस्ट, और हिंदी में उसको बोलेंगे समृद्ध खाद बनाने का तरीका। वो समृद्ध खाद बनाने के लिए हम दो चीज उसको जरूरी है, जैसा नॉर्मल खाद के लिए हमारा वो गाय का जो हमारा डांग है वो लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमने लेते हैं कोई भी भूसा ले सकते हैं, तो उसको साथ जो देना है रॉक फॉस्फेट और माइका। रॉक फॉस्फेट जो है ये सभी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो फॉस्फोरस के लिए होता है, DAP, SSP, ये बनाने का लिए जो रॉ मटेरियल जो मिनिमम ये चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए वो है रॉक फॉस्फेट। लेकिन जो हमारा इंडियन रॉक फॉस्फेट उसका फॉस्फोरस कंटेंट बहुत कम है, 20% से नीचे है। इसका कारण में जो खाद बनाने का जो कंपनी है वो नॉर्मली ये वाला रॉक फॉस्फेट यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये रॉक फॉस्फेट नाम एसिड सॉइल जहाँ पर जो pH मात्रा बहुत कम है उस सॉइल के लिए तो बहुत अच्छा है, जो नॉर्मली उसको सॉल्युबल हो जाता है और फिर जो पौधा उसको फॉस्फोरस ले लेता है। ये समृद्ध कंपोस्ट के लिए 1 टन 1000 kg और 1 टन कंपोस्ट बनाने के लिए हमने ये रखा है जो उसका कम से कम बायोडिग्रेडेबल जो भी होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब है जो भी जैविक पत्ता और भूसा वो कंपोस्ट बन जाता है उसको बोलता है जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल, वो हमने कंपोस्ट का थ्रू से डिकम्पोज करके अल्टीमेटली खाद बनाते हैं। तो इसके लिए 1 टन मटेरियल बनाने के लिए एक टन भूसा रखेंगे, 200 केजी उसको रॉक फॉस्फेट डालेंगे, 200 केजी माइका डालेंगे और थोड़ा सा यूरिया उसको 1% के हिसाब से, जैसा 50 से 100 केजी यूरिया भी डालेंगे तो उसको नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा, फास्फोरस का मात्रा भी बढ़ जाएगा, पोटेशियम मात्रा भी बढ़ जाएगा। इसका फायदा क्या है, जो हमने अल्टीमेटली जो एक कॉम्पोस्ट बनाया वो कॉम्पोस्ट में नाइट्रोजन का मात्रा 1 से 2% बढ़ जाता है, और जो एफओएम जो देसी खाद है उसमें मात्रा है 0.5%, 0.5% नाइट्रोजन मात्रा है और 0.25% फॉस्फोरस का मात्रा है और पोटाशियम 0.5%, जो कि इस पद्धति जो अगर करेंगे समृद्ध पद्धति से करेंगे तो उसको मात्रा बढ़ जाएगा 1 से 2% नाइट्रोजन और 5 से 7% फॉस्फोरस जो P2O5 के हिसाब से माना जाता है, और 2 से 3% पोटाशियम बढ़ जाता है। इसका कारण में जहाँ पर जो कृषक भाइयों के लिए 20 टन कंपोस्ट जरूरी था और खाद जरूरी था, इस मटेरियल अगर यूज करेंगे तो उसको जगह 3 से 5 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टन मटेरियल अगर यूज करेंगे एक हेक्टर के लिए, वो पूरा काम 20 टन का और 25 टन का हिसाब से जो देसी खाद डालेंगे उसको बराबर है। और भी एक इम्पॉर्टेंट जो जरूरी है वो है कार्बन। जो कार्बन है ऐसा है जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का जान है। अगर इसको मात्रा बढ़ जाता है तो फिर सभी जो सॉयल हेल्थ, पूरा सॉयल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। इसी कारण में सॉयल का जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना जरूरी है, और ये जो उत्कृष्ट खाद है इससे जो कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा, और कात्रा अगर ऑर्गेनिक मैटर वो बढ़ गया तो उसमें क्या होता है ना, जो पानी उसका अंदर ज़्यादा टाइम अंदर रहेगा, मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा टाइम रहेगा तो वो नमी रहेगा, और उसका कारण में जो प्लांट जो पौधा उसको बहुत लंबा समय तक जो न्यूट्रिएंट उसका जरूरी है वो सप्लाई देगा। तो इसका फायदा है जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने के साथ साथ पूरा सॉयल हेल्थ, उसका जो पीएच का जो कंडीशन है, पीएच और इसी और ऑर्गेनिक मैटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलता है, जो पानी का धारण करने का जो क्षमता वो भी बढ़ जाता है। तो इसका कारण में ओवरऑल सॉयल हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। साथ के साथ हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर जिसको बहुत कॉस्टली है, आजकल दिन दिन हर दिन इसको प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको भी हमने मात्रा कम करके एक ऑर्गेनिक और जैविक खाद यूज करके जैविक खेती कर सकते हैं। ये जो पद्धति हमने अभी बताया, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो ये IRI जो मृदा विज्ञान शाखा है, जो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नाम पर जानते, और मृदा विज्ञान संस्था, ये डिवीजन में आप संपर्क करके कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने पूरा विधि जो चाची भाई को बताएंगे, इसके लिए हमारा साथ संपर्क कर कीजिए, और आगे कैसा कैसा बनाना है इसको ये आपको जानकारी देंगे। इसके साथ एक हमारा और इम्पोर्टेंट जो खाद है उसको बोलता है भर्मी कंपोस्टिंग, जो केचुआ का खाद बोलता है, वो उसका तरीका ये है। जो भर्मी कंपोस्टिंग का जो कंपोस्टिंग है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग। इसको भर्मी कंपोस्टिंग मतलब है, इसको केचुआ यूज करना है। जो कंपोस्ट का बनाने के टाइम में केचुआ डालते हैं, केचुआ अपना खाना के लिए वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अपना डिकम्पोज जल्दी जल्दी करता है। जल्दी करने के कारण में जो ये पद्धति है ये बहुत जल्दी बन जाता है, जो खाद बन जाता है बहुत कम टाइम में बन जाता है, 2 महीने में इसको खाद तैयार हो जाता है। इसका मात्रा में बहुत अच्छा है, इसका जो इम्प्रूव हो जाता है, जो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट वो भी इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज केचुआ का जब खाना खाते ग्रैनुल निकाल के बाहर आते हैं, उसको गीजर बोलते हैं, गीजर का अंदर से निकाल के बाहर आ जाते हैं, ये बहुत म्यूसलेजनेस होता है। जैसे हमने खाद खेत में डालेंगे उसको अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और कोई भी जो कचरा है, जो किचन का हमारा जितना भी वेजिटेबल का, सब्जी का, उसका और धान का भूसा का कोई भी जो कचरा है उसको भी यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ इसको केचुआ का एक ये बनाने का तरीका ऐसा है, एक का हमने कंपोस्ट का जो पीट बोलता है, कंपोस्ट का एक ट्रेंस बना के, जैसा 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, जैसा 2 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर उसको डेप्थ, ऐसा एक ट्रेंस बनाना है। ट्रेंस बनाने से पहले, बनाने के बाद उसको नीचे सबसे पहले वो हमने कोई ईंट का टुकड़ा उसको जमीन में डालते, और फिर एक सॉइल का लेयर डालते जो लोमी सॉइल होना जरूरी है, फिर हमने केचुआ डालते। इस 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के लिए 600 जो स्पीसीज केचुआ का स्पीसीज है, प्रजाति है, वो डालते हैं। जो केचुआ जिस लोकेलिटी में मिलता है वही केचुआ डालेंगे तो ये जो खाद बनने में जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ऐसा जो सबसे जो बढ़िया जो हमारा केचुआ का प्रजाति है वो है आइसिना फोएटिडा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा इंडिया में और इसी को ज़्यादा यूज होता है। तो एक जो ट्रेंस हम बनाते हैं 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का, उसके लिए 100 केचुआ बहुत, उसके लिए हमने एक लेयर का जो भूसा डालते हैं, फिर एक लेयर का भूसा डालने के बाद थोड़ा सा गोबर का खाद उसमें डालते हैं, फिर एक लेयर उसको भूसा डालते हैं, ऐसा ऐसा करके 1 मीटर हाइट जो हमने डेप है गिरा है उसको हमने लेयर वाइज कंपोस्टिंग बनाते हैं, और केचुआ सबसे पहले नीचे डालते हैं, फिर उसको ऑप्टिमम जो मॉइस्चर डालना है, जो पानी डालते हैं, पानी डालने के कारण यह है जो उसमें नमी होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो वो केचुआ भाग जाएगा वहाँ से, इसीलिए 50 से 60% मॉइस्चर होना जरूरी है, और जो पीएच का मात्रा भी वो 7 के आसपास होना चाहिए, उसमें 7 के आसपास 6 से 7 तक होगा तो वो सबसे बढ़िया है। उसके लिए हमने पीएच का मेंटेन करना जरूरी है, और ज़्यादा टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होता, तापमात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका नाम वर्मी कंपोस्ट बोलता है, और इसका फायदा ये है जो सबसे कम टाइम में खाद तैयार हो जाता है, और जैविक खाद के लिए बहुत जरूरी है, जो कम खाद कम टाइम में कैसा कैसा हमने उसको खाद बनाने का तरीका कर सकते हैं। तो मेरा आवेदन है जो हमारा जो कृषक भाई को सबको, ये जैविक खाद बनाने का अपना अपना तरीका आप फॉलो कीजिए, और इसके कारण में आपको जो जमीन का जो मात्रा खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको फिर से दोबारा लौट के आएगा और अच्छा फसल का उत्पादन देगा।
1: तो अभी आपने जाना भूमि सुधार के लिए क्या भूमिका है वर्मी कल्चर की और आप किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: कई बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपको खेती किसानी में कोई समस्या यदि आती है तो आप केबीके में जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर वैज्ञानिक हमारे उपस्थित रहते हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तोमर साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम।
4: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, साथ ही साथ यहाँ खेती करने वाले ज्यादातर लोग हैं और छोटी जोत है, मतलब जमीन भी कम है इनके पास
3: जी।
4: और अभी जैसे आज अपन बात कर रहे हैं, सामान्यतः यहाँ पर जो मानसून की आवक है
3: जी,
4: वो 10 से 15 जून के आसपास या 20 जून तक मानसून आ जाता है, मतलब बारिश शुरू हो जाती है
3: जी।
4: तो किसान भाइयों को एक सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हर बार हम ये देखते हैं कि किसान भाई जब मौसम जैसी बारिश का आता है
3: जी,
4: तो वो बीज के लिए बाजार की तरफ भागते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: और एक बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें बीज वाले वो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: तो किसान भाइयों को मैं एक पहली सलाह ये देता हूँ कि पिछले साल उन्होंने जो भी बीज बोया है
3: जी सर,
4: खासकर सोयाबीन का, उड़द का, मूंग का, गेहूं का, चने का जो बोते हैं
3: जी सर,
4: यदि उनके यहाँ वो बीज अच्छी तरीके से पका है
3: जी,
4: और उसकी उत्पादन अच्छा मिला है
3: जी,
4: तो ये मानते हुए कि ये बीज आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है
3: जी,
4: और यदि आप इस बीज को उपयोग करेंगे
3: जी,
4: तो भी आपके पास फसल उतनी ही पकेगी जितनी की आप अच्छी अपेक्षा करते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: मतलब कई बार ये होता है कि वो जो बाजार से बीज लेके आते हैं वो बीज उतना अच्छा नहीं मिलता।
3: बिल्कुल सर।
4: जिससे कि उनकी उपज अच्छी मिल पाए, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां आती हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: और इन प्रजातियों में कई क्षेत्र वाइज होता है कि जैसे क्षेत्र के लिए वो है कि नहीं
3: जी,
4: अधिसूचित है कि नहीं
3: जी,
4: तो इसमें क्या होता है कि कई बार ठगे जाते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: तो किसान भाई एक तो ये देख रहे हैं और दूसरा जो बीज वो बोएंगे
5: जी,
4: उस बीज को यदि अंकुरण उनको देखना है।
5: बिल्कुल सर,
4: अंकुरण का मतलब होता है कि यदि हमने 100 दाने लेके और बोए हैं
5: जी,
4: तो उसमें से यदि 70-80 दाने उग रहे हैं,
5: बिल्कुल सर,
4: इसका मतलब ये कि हमारा बीज बोने लायक है।
5: बिल्कुल सर,
4: इसको अंकुरण को देख लें
5: जी सर।
4: और दूसरा, जल्दी बिल्कुल भी बोने की में नहीं करें,
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि सोयाबीन की खासकर जो फसल होती है वो थोड़ी सी संवेदनशील होती है
5: जी सर।
4: और कई बार क्या होता है कि थोड़ा भी पानी बरस गया और हमने बोनी कर दी, उस पर पानी नहीं आया
5: जी,
4: तो बीज खराब हो जाता है।
5: बिल्कुल सर,
4: तो ये सब चीज सोयाबीन में भी मक्का में भी सब पर लागू होगी।
5: बिल्कुल,
4: तो बीज की व्यवस्था वो शीघ्र करके रख लें।
5: बिल्कुल,
4: खाद की व्यवस्था करके रख लें।
5: बिल्कुल,
4: मतलब आदान को लेके रखने का ये सबसे उचित समय है।
5: बिल्कुल सर,
4: और कम से कम 2-3 इंच बारिश
5: जी,
4: मतलब जमीन में 3-4 इंच गहराई तक उंगली, जो अपन हाथ से भी अपन देखें
5: जी,
4: 3-4 उंगलियों के बराबर गहराई जब तक हो जाए।
5: बिल्कुल,
4: और उसके बाद में आजकल एक बोनी की विधि होती है जिसको कहते हैं मेड़ कूण विधि
5: जी,
4: मतलब जिसमें थोड़ी सी मेड़ बन जाती है और बीच में नाली बन जाती है।
5: बिल्कुल सर,
4: वो इसलिए किया जाता है कि यदि हम ऐसी फसल बो रहे हैं जिसको मान लो पानी कम पड़ा
5: जी,
4: तो वो जो नाली में पानी भरा रहेगा
5: जी सर,
4: और पानी ज्यादा आता है तो उसी नाली से पानी बाहर निकल जाता है।
5: बिल्कुल सर,
4: तो ये इसका अटैचमेंट ट्रैक्टरों में आसानी से हो सकता है
5: जी।
4: यदि कोई किसान भाई जो हमारे आसपास के क्षेत्र में है
5: जी,
4: वो चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर यहाँ पर देख भी सकते हैं।
5: बिल्कुल सर,
4: और यहाँ से हमसे सलाह लेके वो हम बता देंगे किसी भी लोहार को
5: जी,
4: तो जो उनके पास सीड ड्रिल है
5: जी जी सर,
4: बोनिंग मशीन है
5: जी,
4: उसमें वो व्यवस्था हो सकती है।
5: बिल्कुल सर,
4: दूसरी बात ये है कि खाद बोने में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं
5: जी सर,
4: उन फसलों को हम बोते समय एनपीके से साथ बोए
5: जी,
4: मतलब उसमें खाद आगे और पीछे भी इस तरह की व्यवस्था होती है सीड ड्रिल में
5: जी सर।
4: और जितनी भी दाल वाली फसलें हैं
5: जी,
4: और खासकर सोयाबीन है या दाल वाली मूंग है, फसलों में इसमें DAP डाल सकते हैं।
5: बिल्कुल सर,
4: और यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 20 दिन के बाद ही करें
5: जी,
4: मतलब अभी बोने के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए
5: जी।
4: कई किसान भाई नहीं समझते हैं तो वो यदि खाद डालते हैं तो उसका प्रभाव फसल को नहीं मिल पाता।
5: बिल्कुल सर,
4: तो ये 2-3 चीजें हैं वो जो अभी यदि करेंगे
5: जी,
4: तो किसानों के लिए उत्तम होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में स्थित है
5: जी,
4: और ये एक तरह से किसानों की विद्यालय है, पढ़ने की जगह है
5: जी,
4: और किसी भी किसान को जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है
5: जी,
4: कि उसे क्या करना है
5: जी सर,
4: कौन सा बीज अच्छा हो सकता है, या उनके पास कोई समस्या आती है, कीड़े बीमारी आते हैं
5: जी,
4: तो वो आकर यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं
5: जी।
4: हमारा दायित्व तो उन सबकी समझाना है
5: जी,
4: बताना है, और आवश्यकता पड़ने पर किसान के खेत में जाके भी हम उसको तकनीकी ज्ञान देते हैं।
5: बिल्कुल,
4: तो ये यदि आप करेंगे
5: जी,
4: तो मतलब आपकी फसल भी अच्छी होगी
5: जी,
4: और मतलब ज्यादा लाभ होगा
5: जी,
4: तो आप KVK से संपर्क में बने रहें।
3: सर, यहाँ पर एक सवाल आता है, चूंकि हमने गांव पर भ्रमण किया है और बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि हमें उचित बीज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती, हम दूसरी जगह जाते हैं वहां पर कम पैसों में हमें बीज उपलब्ध हो जाता है, तो सर क्या कारण है? और हमारे किसान साथी, हमारा दूसरा सवाल कि हमारे किसान साथी कौन सा बीजों का चयन करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। सर,
4: अब जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पर खरीफ में कई सारी फसलें बोई जाती हैं
5: जी सर,
4: मुख्य रूप से मक्का है
5: जी,
4: कपास है
5: जी,
4: सोयाबीन
5: जी,
4: जो कि 3 बड़े क्षेत्रों में बोई जाती हैं
5: जी सर।
4: अब इसमें से क्या होता है कि कपास का जो बीज है वो संकर बीज आता है।
5: बिल्कुल सर,
4: और संकर बीज में भी यहाँ पर 2632 के नाम से एक बीज आता है जो कि लंबे समय तक रहता है और उसकी रेशे की लंबाई भी काफी रहती है
5: जी,
4: वो बीज अच्छा होता है। और मतलब उसको बोने से इनको फायदा यूं मिलता है कि बाजार में जो सामान्य कपास है
5: जी,
4: उससे इसका भाव करीब 2-3 हजार रुपये ज्यादा रहता है।
5: बिल्कुल सर,
4: क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है
5: जी,
4: मतलब हमारे बनवासी भाई हैं, सब लोग हैं
5: जी,
4: तो इनके पास श्रम शक्ति बहुत है।
5: बिल्कुल सर,
4: तो ये लोग कपास पैदा करके इससे अच्छा फायदा ले रहे हैं,
5: ले रहे हैं,
4: तो इनको ये ले सकते हैं। परंतु ये चूंकि संकर बीज है और इस बीज को हमको बार बार बदलना पड़ेगा।
5: बिल्कुल सर,
4: और ये दो देखिए बीज मिलने के 2 स्रोत हैं
5: जी,
4: एक तो सरकारी बीज गोदाम होते हैं और एक प्राइवेट है।
5: बिल्कुल सर,
4: हमको पिछले कई सालों से जब हम खेती करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि कौन सा बीज हमारे कौन सी कंपनियों के बीज हमारे लिए ज्यादा अधिक उपयुक्त है
5: जी सर।
4: अब मैं चूंकि कंपनियों का इसलिए नहीं नाम लूंगा क्योंकि कंपनियों का नाम लेना मेरे लिए वर्जित है।
5: बिल्कुल सर,
4: तो वो हम कपास का बीज ले सकते हैं
5: जी।
4: इसके अलावा मक्का के बीज भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, संकर भी होते हैं और एक कंपोजिट वेरायटी भी होती है। तो यदि हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि कंपोजिट वेरायटी में कुछ वेरायटी है जो कि उपलब्ध हो सकती है
5: जी सर।
4: और अब आपको जब भी बीज हम खरीदते हैं जहां से भी लेते हैं
5: जी सर,
4: चाहे सोयाबीन का हो या कोई भी हो,
5: बिल्कुल सर,
4: उस व्यक्ति से रसीद लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि होता ही है कि यदि हमारे पास बीज खराब निकल गया
5: जी सर,
4: तो बीज के हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तब कुछ नहीं कर पाते यदि आपको रसीद नहीं
5: है। बिल्कुल सर।
4: तो दूसरा ये है कि हमारा जो बहुत भरोसे का आदमी है,
5: बिल्कुल सर,
4: जो व्यक्ति हमारे भरोसे पे खरा उतरता है, हमको पता है कि ये व्यक्ति काफी समय से वो काम कर रहा है, उससे ले। दूसरा, यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई जानकारी समझ में चाहिए
5: जी सर,
4: तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग यहाँ पर 2400 घंटे उपलब्ध हैं।
5: बिल्कुल सर।
4: छुट्टी के दिन भी यदि कोई आएगा तो हमारे यहाँ केंद्र खुला रहता है
5: जी सर,
4: सब लोग यहीं रहते हैं
5: जी सर।
4: तो हम उनको अपनी उनकी जानकारी के हिसाब से बता देंगे कि कौन कौन सी वेरायटी, जैसे अभी सोयाबीन की वेरायटी 335 है
5: जी सर,
4: जवाहर 335 है
5: जी,
4: एक JS 2098 है
5: जी सर,
4: या अभी एक राज सोया 18 आई है
5: जी सर,
4: जो नई नई जातियां आती रहती है
5: जी सर,
4: तो वो हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त है उसके बारे में हम जानकारी उनको दे दें।
5: बिल्कुल सर।
4: और वो यहाँ से बीज ले जा सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यदि भारत के सभी किसान एक छोटी सी बात समझ जाएं
5: जी सर,
4: कि उन्हें यदि इस साल 40 किलो कोई बीज मिल गया है
5: जी सर,
4: वो जिसका उत्पादन यदि उन्होंने 4-5 क्विंटल कर लिया है, 10 क्विंटल कर लिया है
5: जी सर,
4: और उसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखना पड़ती है कि बीज बोने के बाद में फसल में निरंतर निगरानी रखें।
5: बिल्कुल सर।
4: और निगरानी रखने के बाद ये देख लें कि उसमें जो दूसरे प्रजाति के पौधे हैं वो देखने से पता चल जाता है।
5: बिल्कुल सर।
4: तो उन पौधों को निकाल के अलग कर दें, और उस बीज को यदि आपके अच्छा पका है तो ऐसे बीज को आप 3 से 4 साल तक कर सकते हैं।
5: बिल्कुल सर।
4: तो झाबुआ जिले के यदि सभी गांव के लोग यदि अपनाने लगे इन सब चीजों को
5: जी सर,
4: तो एक साल में ही

0: करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसे को बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सर।
0: किसान को ये एक गलत फहमी है कि वो जो दुकान से मिल रहा है या चमकने वाली पन्नी में जो बीज मिल रहा है वो अच्छा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी।
0: किसान अपने यहाँ स्वयं का बीज पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल सर।
0: या फिर कम मात्रा में बीज लाए
1: जी,
0: और उस बीज को अच्छा है तो उसको पैदा करके बढ़ाए और उस बीज का उपयोग वो लगातार आने वाले 3-4 साल तक कर सकता है।
1: बिल्कुल सर।
0: उसका उत्पादन भी कम होगा तो हम लोग यहाँ केंद्र में बैठे हैं कि हमारी जवाबदारी है कि इसी हम जानकारी उनको दें।
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि ये आपका जो रेडियो है इसके थ्रू यदि इसी जीत पहुंचेगी
1: जी सर,
0: और हम जो संपर्क करेंगे तो उनको निश्चित ही लाभ होगा।
1: बिल्कुल,
0: ये काम करना।
1: सर एक और सवाल है, यहाँ की हमने मिट्टी को देखा है, परखा है, जांचा है कि यहाँ पर दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है यहाँ पर, और यहाँ पर जो समस्या आती है कि सिर्फ 3 ही फसलें वो बोते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मक्का हो या कपास हो, अन्य फसलों को वो क्यों नहीं बोते हैं? सर आपका क्या कहना है इस बारे में? सर
0: देखिए क्या है कि ये तो अभी जैसे हम पूरे जब जिले की बात करते हैं
1: जी सर,
0: तो हमारे जिले में करीब 6 विकास खंड है।
1: बिल्कुल सर।
0: और यदि अलियापुर को भी जोड़ लिया जाए तो 12 विकास खंड, ऑलमोस्ट एक जैसी स्थिति है सभी जगह।
1: बिल्कुल सर।
0: अब इनमें जो पेटावत का क्षेत्र है या पॉकेट्स में काली देवी है, मेघनगर के आसपास है, थानला के आसपास है
1: जी सर,
0: तो जो लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं
1: जी,
0: तो वो लोग क्योंकि थोड़े समझदार हो गए, मतलब उन्होंने वो सब चीज समझ ली है
1: जी।
0: अब आधे से ज्यादा किसानों के हम बात करते हैं, पूछते हैं तो आप मक्का क्यों बो रहे हैं, तो उनका एक सोच होती है कि हम मक्का खाने के लिए बो रहे हैं
1: जी,
0: जबकि हमारी जो मिट्टी है जैसा अभी आपने कहा
1: जी,
0: कि हल्की है, दुमट है, कई तरह की मिट्टी है, मिक्सचर है
1: जी।
0: मक्का इन सभी फसलों में सबसे ज्यादा भोजन लेने वाली फसल है।
1: बिल्कुल सर।
0: और हमारी जमीन सबसे कमजोर है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो यदि हम कमजोर जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल बोएंगे
1: जी सर,
0: तो निश्चित ही उसमें उत्पादन कम होगा।
1: बिल्कुल सर, जय श्री राम।
0: तो यदि इनको ये चुनाव करके कि हमको क्या चीज बाजार में पैदा करके हम बेचें जिससे हमको ज्यादा पैसा मिले
1: जी जी जी,
0: और मक्का हम बाजार से खरीद भी सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो इस तरह की यदि इनकी मानसिकता बन जाएगी, और अभी क्या हो रहा है कि सब्जियों में अभी क्या हो रहा है, सेचुरेशन की स्थिति तो नहीं है
1: जी,
0: अभी आप लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: और शुरुआत में भी क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा टमाटर का भाव उस समय 100 रुपए के आसपास है।
1: बिल्कुल सर।
0: और बीच में 2 रुपए होगा कभी, तब आप फिर न्यूज आएगी
1: जी जी सर।
0: तो मतलब ये है कि जिनके पास संसाधन है
1: जी, जी,
0: या जिन्होंने पॉली हाउस बनाए
1: जी,
0: ये सब चीजें उनके लिए हैं कि आप ऐसे मौसम में साल में 365 दिन होते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो 365 दिन में से हमको ये पता होना चाहिए कि कब किस किस की चीज की मांग बढ़ती है।
1: बिल्कुल सर।
0: और किसकी कब उत्पादन होने से ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आप उसको समय को परिवर्तित करके
1: जी
0: उसको ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे मिट्टी की उतनी वो नहीं है दिक्कत है, लोगों में समझ के अभी उतनी नहीं है, अभी झाबुआ के आसपास भी लोग अभी खेती करने लगे।
1: जी जी।
0: कुछ किसानों को मैं जानता हूँ जो कि यहाँ पे हाट में आते हैं
1: जी,
0: तो यदि आप सब्जियों की तरफ जाएंगे
1: जी
0: और 4-5-6 तरह की सब्जियां लगाना शुरू कर दें
1: जी,
0: और चूंकि हमारे पास श्रम शक्ति भी ज्यादा है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो वो लोग आपके हाट में खुद बैठ के बेच दें,
1: बेच सकते हैं,
0: तो मंडी में बेचने और हाट के बेचने में आपको दुगने से ज्यादा अंतर फर्क पड़ जाता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो यदि वो बेचना शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी माली हालत में सुधार हो सकता है, यदि वो 7 दिन में से 4-5 यदि 3-4 हाट भी बेच चुके
1: जी
0: सब्जी को मौसम के अनुसार, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो मिट्टी नहीं, यदि वो खेती करना चाहेंगे तो किसी भी मिट्टी में या कोई भी खेती हो सकती है।
1: बिल्कुल।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक यहाँ पर विराम लेते हैं, सुनते हैं इस गीत को, इसके बाद डॉक्टर साहब से बहुत सारे हमारे सवाल हैं, उनसे भी हमें जानना है, उन सवालों के जवाब भी हमें जानना है, तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बातें।

0: सर आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा बस आखिरी सवाल है कि यहाँ पर हमारे किसान साथी चूंकि उबड़ खाबड़ जमीन है, पानी का संसाधन बहुत ही कम है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें वो कौन सी हैं जिसको वो कर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? सर
1: देखिए क्या है कि पानी तो ऐसी चीज है कि उसके बिना कोई खेती हो नहीं सकती
0: जी।
1: अब चूंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है जमीन की वो ढालू है,
0: बिल्कुल सर,
1: मतलब ऊंची नीची है, और इसमें किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं
0: जी।
1: यदि हम जाके कई बार खेतों में देखते हैं तो पता लगता है कि नीचे हमारे यहाँ देखिए धान भी बोया जाता है,
0: बिल्कुल सर,
1: मक्का भी बोई जाती है
0: जी,
1: और उड़द भी बोया जाता है,
0: बिल्कुल सर।
1: तो जैसे ये उड़द है, मूंग है
0: जी,
1: है ना, ये दोनों जो फसलें हैं ये करीब 65-70 दिन में पक के तैयार हो जाती है
0: जी,
1: और इनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम
0: बहुत कम होती है, बिल्कुल सर।
1: तो यदि किसी के पास पानी की कमी है
0: जी,
1: तो उड़द मूंग लगा सकता है,
0: बिल्कुल सर।
1: दूसरा ये है कि पानी के लिए हमको सबसे पहले ये पड़ेगा कि दो तरह का पानी होता है, एक तो भूमिगत जल,
0: बिल्कुल सर,
1: और एक सतही जल,
0: बिल्कुल सर।
1: तो जो भूमिगत जल है उसको यदि बढ़ाना है तो हमको पानी जगह जगह रोकना पड़ेगा, तो नीचे का जल बढ़ेगा
0: जी सर।
1: तो बार बार हम कई जगह देखते हैं, सब जगह कहा जाता है कि जितना वर्षा जल आ रहा है
0: जी सर,
1: उसमें से अधिक जल को कैसे भूमि के नीचे उतारा जाए,
0: बिल्कुल सर।
1: तो वो यदि आपके तालाब है, नदी नाले हैं, उन सबको जिसमें कि पूर्व पानी को तो नहीं रोका जा सकता,
0: बिल्कुल सर,
1: परंतु हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आने वाले जो समय रहेगा बरसात के बाद उस साल भर हमारे पास पानी मिलता रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो वो एक तो काम करना अपने को, जितने पुराने कुएं हैं उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज का मतलब ये होता है कि आप उसमें पानी को डाइवर्ट करके ले जाएं
0: जी सर,
1: और उस पानी उसमें भरे, तो वो जो कभी पानी निकालने के लिए काम में आ रहा था वो जमीन में जल स्तर बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं
0: जी सर, जी सर,
1: ये हो सकते हैं। दूसरा जो फसलों की आपने बात की थी उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इस तरह की स्थिति है
0: जी,
1: उसमें एक चीज होती है कि यदि पानी कभी कम ज्यादा होता है तो हम दो तरह की फसलों को लगाते हैं
0: जी,
1: जैसे मक्का के साथ सोयाबीन है
0: जी, जी जी,
1: कब मक्का के साथ कपास है
0: जी,
1: ये जो इसको कहते हैं हम लोग इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है अंतर्वर्ती फसल पद्धति, ये इसलिए चुनाव किया जाता है
0: जी,
1: कि जिसमें से एक फसल की पानी की मांग अधिक होती है एक की कम होती है
0: जी सर,
1: एक की जड़ों की गहराई ज्यादा होती है एक की जड़ों की गहराई कम होती है
0: जी,
1: ये इसलिए चुनाव किया जाता है कि मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में पानी बहुत कम बरसता है
0: जी,
1: एक फसल पक जाए,
0: पक जाए,
1: तो यदि पानी ठीक बरसता है ज्यादा बरसता है दोनों फसल पक जाए,
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो इंटरक्रॉपिंग होती है ना वो करना चाहिए, और झाबुआ जिले में चूंकि अभी बेलों से खेती हो रही
0: जी,
1: बहुत सारे किसान अभी करते हैं
0: जी,
1: तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप जितनी अंतर्वर्ती फसलों की खेती करेंगे उतनी आपकी मतलब पानी की जो परेशानी
0: जी,
1: कम पानी ज्यादा पानी की जो स्थिति बनती है
0: जी सर,
1: उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं,
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये कर सकते हैं
0: जी।
1: साथ ही साथ अब ये देखिए कि आजकल तो बड़ी कई किसान क्या करते हैं कि पूरे खेत में ड्रिप लगा देते हैं,
0: ड्रिप सिंचाई,
1: और आवश्यकता पड़ने पर वो ड्रिप पर चालू कर देते हैं,
0: बिल्कुल सर।
1: यदि मान लीजिए बहुत परिस्थिति खराब हुई, अब जैसे कपास की फसल है
0: जी सर,
1: आपने उसको यदि 4-5 बीघा में लगा रखा है
0: जी सर,
1: और यदि पानी की स्थिति खराब हुई
0: जी,
1: तो फसल खराब हो जाएगी,
0: बिल्कुल सर।
1: तो आप एक बार ड्रिप ले लें और ड्रिप को खेत में जब आवश्यकता पड़े चला दें
0: जी सर,
1: तो आपकी फसल बच सकती है,
0: बहुत बढ़िया।
1: और झाबुआ के

0: पर उपलब्ध दे रहा है कि लोगों में अभी तक ये जागरूकता तो ये कम है
1: जी सर,
0: कि जब हम किसी किसान कभी कार्यक्रम में जाते हैं और पूछते हैं
1: जी
0: कि आपके पास ड्रिप है या नहीं, तो कई सारे लोग कहते नहीं
1: जी जी जी,
0: और जब उनसे पूछते हैं कि तुमको पता है कैसे मिलती है
1: उनको पता ही
0: तो वो 99% लोगों को पता नहीं
1: पता
0: है कैसे
1: नहीं है, बिल्कुल सर,
0: उनको बताया जाए कि ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन का मतलब वो समझते नहीं
1: बिल्कुल,
0: तो उनको हम लोग कई बार यहाँ पर जो आते हैं उनको प्रयास कर रहे हैं कि आप संबंधित विभाग है जैसे कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है
1: जी,
0: यहाँ पर जाके अपना कागज सब ले जाएं और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, वो जिस स्कीम में आप चाहते हो उस स्कीम में आपका नाम लिख जाएगा
1: बिल्कुल,
0: और यदि पहले आए पहले पाए में यदि आपका नंबर आ गया सर तो आपको वो मिल जाएगी, नहीं तो आप घर पे बैठे रहोगे तो सॉरी कोई भी आके आपको कुछ देगा नहीं,
1: बिल्कुल सर,
0: तो ये जानकारी उनको पहुंचाना बहुत जरूरी है जो कि उनके लिए हितकर रहेगी और पानी का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
2: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
0: जी जी जी बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जब भी आपको ऐसा लगता है कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ सकते हैं
1: जी,
0: साथ ही किसानों को भी प्रेरित करें कि वो यहाँ पर आए
1: जी, जी, जी,
0: और हम लोगों का काम उनको यहाँ ज्ञान देना ही,
1: बिल्कुल सर।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और पता ही नहीं चला ये समय कितने जल्दी निकल गया है। हमने विषय विशेषज्ञ को भी सुना, साथ में हमारे झाबुआ जिले के डॉक्टर तोमर साहब जो कृषि विभाग यानी KBK में पदस्थ हैं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। हम अपने बार बार किसान साथियों को ये जानकारी सुना रहे हैं कि ये जानकारी सुनकर, क्योंकि अभी तैयारी का समय है, किसान साथी थे खेतों की तैयारी करें, कंपोस्ट इसलिए बता रहे हैं कि इससे लागत कम हो और आपकी आमदनी बढ़े। तो हमें आशा है कि इस कार्यक्रमों को सुनकर आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प लिया होगा। हम आशा करते हैं कि ये आप बातचीत आपको हम सुनाते हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम बात करते हैं सेहत की, सोच की और जिंदगी की, जो हम रोज जीते तो हैं बट कई बार रुकना भूल जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी वेलनेस कोच हैं जो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की बात नहीं करती बल्कि जीने का तरीका सिखाती हैं। हेल्थ कोच, लाइफ कोच, पब्लिक वेलनेस कोच और एक बहुत ही पॉजिटिव क्रिएटिव सोल, मानसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग पर।
1: थैंक यू सो मच तनुषा जी, थैंक्स अ लॉट।
0: हम शुरू करते हैं। मानसी जी, आप एक हेल्थ कोच हैं, एक लाइफ कोच हैं और एक पब्लिक वेलनेस कोच हैं। इन तीनों का अगर हम समागम करते हैं तो इस रोल को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी? हमारी लिसनर्स के लिए थोड़ा समझाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं और किस तरह आपकी ये जर्नी शुरू हुई और आपके लिए वेलनेस का सही मायने में मतलब क्या है? आज के जमाने में, आज के दौर में वेलनेस का मतलब क्या है?
1: मैं अगर कुछ लाइनों में इसको डिफाइन करूं तो मैं एक सारथी वाला रोल प्ले करती हूं बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर, उनको सही लाइफस्टाइल में हेल्प करने के लिए, उनके सही फिटनेस को अचीव करवाने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों को पता तो होता है करना क्यों है, कैसे करना है, बट कई बार एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वी वर्क एज अ सपोर्ट फॉर देम, जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लाइफ लॉन्ग अपनी आइडियल बॉडी फिटनेस को मेंटेन करने में, और नॉट जस्ट बॉडी फिटनेस को, पर जब हम बात करते हैं वेलनेस की, तो तनुषा वेलनेस सिर्फ हम अगर किसी के बॉडी को फिटनेस के रूप में देखकर समझना चाहे तो शायद वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है, बट द रियल वेलनेस इज अगर हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर चीज को अगर हम सही तरीके से फिगर आउट करके उसको परफेक्ट मायने में या नियर टू परफेक्ट मायने में हम जीना शुरू करते हैं, दैट इज एक्चुअली वेलनेस। और हम एज अ वेलनेस कोच बस लोगों को इसी जर्नी को जीने में, इसी जर्नी को जीतने में हेल्प करते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन क्या आपको कभी कभी लगता है कि आज के जमाने में आपका जॉब बहुत टफ होता जा रहा है, इस वेलनेस के इस डेफिनेशन को अचीव करना जिस लाइफ में हम रह रहे हैं, क्या आपको चैलेंजेस आते हैं कुछ इसको अचीव करने के लिए कि हाँ हम नियर परफेक्ट, आपने सही कहा, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बट नियर परफेक्ट जाने के लिए आप अपने आप को कैसे फ्यूल करते हैं कि इस वेलनेस को अचीव कर सकें?
1: इनडीड, ये बहुत टफ है आज के लाइफ के अंदर, क्योंकि हम कोई भी चीज जब अचीव करने की कोशिश करते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं। और आजकल की लाइफ के जो मेजर डिस्ट्रैक्शंस है वो है लोगों का स्ट्रेस, लोगों का वर्क स्टाइल, हमारा वर्क स्टाइल, हमारे खाने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, ये सब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से कई बार हमारे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं पर लोग समझ नहीं पाते। एंड इसके साथ में प्रायोरिटीज, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी लाइफ में हम हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम हमारे जॉब को, काम को, बिजनेस को, घर को, बच्चों को, अगर वाइफ है तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो अपने काम को, हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, पर हम खुद को प्रायोरिटी पे कभी नहीं रखते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हमें इस फील्ड में काफी सारा चैलेंज आता है लोगों को सही गाइड करने में, बट देन ये हमारा काम है और हम हमेशा चाहेंगे कि हम लोगों को इसी तरीके से गाइड करते रहें।
0: जी जी, तो एक तरह से कहा जाए तो काउंसलिंग और मोटिवेशन भी आपके प्रोफेशन में आपको बहुत काम आती होगी। जैसे आपने हमें बताया कि आपने 25,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को टच किया है, 15 स्टेट्स और 6 कंट्रीज में आप अभी फिलहाल काम कर रही हैं, और इतना बड़ा इम्पैक्ट जब आप देखते हैं तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि हाँ ये सब मतलब मैं कर रही हूँ, मैंने ये जर्नी शुरू करी, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस बात पे चलूंगी, तो आज आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सफर वर्थ इट है, जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां आपको लगता है कि आप पहुंच पा रहे हैं अपने एफर्ट से?
1: बिल्कुल, ये हर रोज महसूस होता है, क्योंकि जब आपके हम उम्र, आपसे बड़े, आपसे छोटे, हर सुबह हमारी शुरुआत करवाते हैं थैंक यू से, तो ये हमें हर रोज महसूस होता है, क्योंकि हमें बहुत बार हमने ऐसे काम देखे हैं जहाँ पे लोग अपना काम तो कर देते हैं पर उनको उतना ग्रैटिट्यूड या उनको उतना थैंकफुलनेस नहीं दिया जाता है। पर जब हम अपना ये वाला काम कर रहे हैं और जब हमारी हर सुबह जब हमारा हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, हमारा मैसेज ओपन करते हैं, हमारा कॉल्स उठाना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला शब्द हमें सुनाई देता है वो होता है थैंक यू सो मच मैम. और उस थैंक यू के पीछे बहुत सारी चीजें वो जो अपनी लाइफ में सही कर चुके होते हैं वो छुपी होती है. बहुत सारे लोग बहुत सारे कई सालों से तकलीफ में होते हैं, बीमारियों से घिरे हुए होते हैं, दवाओं पर निर्भरता बना के रखते हैं. तो जब वो इन सबसे छुटकारा पाते हैं और एक कहते ना नम आंखों से भरी हुई आवाज से जब वो हमें थैंक यू बोलते हैं तब हमें वाकई में लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं ये वर्थ इट है, ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है.
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपके. और सच में आपने जैसे कहा कि आप एक सारथी का रोल निभा रहे हैं, तो कभी कभी जिंदगी हमें रुक कर खुद से मिलने का मौका देती है और साथ में एक जीवन साथी की जगह एक सारथी देती है जो हमें रास्ता दिखाता है, जो कई बार हम खुद जानते हुए बूझते हुए देख नहीं पाते और हमारे आंखों के सामने कई बार धुंधला छा जाता है, कई बार परेशानियां आ जाती हैं, कई बार वर्कलोड आ जाता है. तो कोई ऐसा जो आपका हाथ पकड़े और आपका रास्ता साफ करे और आपको आगे का रास्ता दिखाए, वो आज के जमाने में, वेलनेस के जमाने में कितना जरूरी है. इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, उठे सबके कदम देखो रम पम पम.
2: उठे सबके कदम देखो रम पम पम,

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मानसी जी। मानसी जी, आपने हमें बताया कि आपकी जिंदगी का बहुत एक गहरा पल था, जो एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, जब आप कभी किसी एक लम्हे में, एक मोमेंट में एक मेडिसिन ले रहे थे और आपकी बेटी ने आपसे वही मेडिसिन मांगी कि मैं ये खा सकती हूँ क्या। उस सवाल ने आपने हमें बताया कि आपके जीवन का डायरेक्शन बदल दिया। तो उस समय वो किस तरह से उस सवाल ने आपको अंदर से महसूस करवाया, और जब ये महसूस हुआ आपको, तो ये डिसीजन आपने किस तरह से लिया, मतलब सबसे पहला स्टेप आपका क्या था कि ये नहीं एक्सेप्टेबल है, इसको मैं चेंज करना चाहूंगी, और इसी से कनेक्टेड में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अपना पहला कदम रखूंगी, वो क्या मोमेंट था, वो क्या टर्निंग पॉइंट था, वो किस्सा हमारे साथ थोड़ा शेयर करें।
1: वाकई तनुषा, वो पल है ना, मुझे आज भी झकझोर देता है जब मैं वो पल एक बार के लिए वापस जहन में आता है और इस बारे में सोचती हूँ। और उस दिन यूजुअली बच्चों की आदत होती है कि जो वो हमें कुछ भी खाता देखते हैं, पीता देखते हैं, तो बच्चों की आदत होती है हमें भी दे दो, हमें भी टेस्ट करना है। तो उस वक्त मैं अपने बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स के साथ चल रही थी, जब मुझे बहुत डॉक्टर ने हैवी मेडिसिन और स्टेरॉइड सजेस्ट किए हुए थे, और मैं उस वक्त वही ले रही थी, एंड सडनली वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा मम्मी मुझे भी ये खाना है। और वो पल ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि हम कभी भी ये सोच नहीं रहे कि हमारे बच्चे हमें क्या करता हुआ देख रहे हैं, और वो भी वही चीज करना शुरू कर देते। तो वो पल मेरे लिए बड़ा ही झकझोर देने वाला था। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ में इतनी सारी मेडिकेशंस फॉर डिसऑर्डर्स पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं परिवार के लिए भाग रही हूँ, मैं कमाने के लिए भाग रही हूँ, मैं मेरे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए भाग रही हूँ। पर मैं ये भूल चुकी थी कि अगर मैं इतना सब कुछ जुटाने के लिए भाग रही हूँ, और ये भूल चुकी हूँ कि मेरे बच्चे के लिए उसकी रियल वेल्थ उसके हेल्दी पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के लिए रियल वेल्थ उनके हेल्दी बच्चे हैं, ये मैं भूल चुकी थी, और इसीलिए मैं सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना शुरू कर चुकी थी। बट उस वक्त जब मेरी डॉटर ने मुझे वो मेडिसिन खाने के लिए बोला कि मुझे भी वो खानी है, तब मैंने अपना एक डिसीजन बनाया कि मुझे अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी इकट्ठा करना है, जो कुछ भी मुझे वसीयत तैयार करनी है मेरे बच्चे के लिए, वो उस वसीयत में सबसे पहली चीज हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास खुद के पास नहीं होगा वो मेरे बच्चे को मैं कभी दे ही नहीं पाऊंगी। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, मुझे अपने आप को फिट बनाना है, मुझे अपने आप को एक अच्छी जीवन शैली में लेके जाना है, क्योंकि अगर ये मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्चे को कभी ना ये करने के लिए कह पाऊंगी, ना मैं उसे सिखा पाऊंगी। सो दैट यस, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ।
0: बहुत ही गहरी बात आपने बताई कि सच में हमारी सबसे बड़ी लेगेसी, हम जो हमारे बच्चों को पास ऑन करेंगे, वो हमारी गुड हेल्थ और वेलनेस है। इससे बड़ी लेगेसी कुछ हो नहीं सकती। और सच है कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर एक हेल्दी मदर है, एक हेल्दी फादर है, तो बच्चों में अपने आप वो आदतें डाउनलोड होती हैं, अच्छा खाने की, अपने हेल्थ पे ध्यान रखने की। इससे बहुत फर्क पड़ता है, मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात जानती हूँ। और आज आपसे ये बातें सुन के मुझे खुद फिर से वो बात याद आ गई, जब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में ये समझ आया कि किस तरह से अगर एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी फादर और एक घर में ये माहौल मिले बच्चों को, तो बच्चे किस तरह से वेलनेस की इंपॉर्टेंस समझते हैं और जानते हैं, और उसी तरह से उनका लाइफ मैप, उनकी खुद की वेलनेस शेप होती है। तो बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की। आप हमेशा ये कहते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए सेविंग्स करते हैं, जैसे अभी आपने बताया, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर का सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं, बट आप कहते हैं कि रियल वेल्थ इज अ हेल्दी मेडिसिन फ्री लाइफ। जो सही हमारा वेल्थ है, जो सही हमारी कमाई है हमारे बच्चों के लिए, वो एक अच्छी सेहतमंद बिना दवाइयों के जो एक जीवन हम उनको दे सकते हैं वो है। तो आज के पेरेंट्स, क्योंकि आप डील करते होंगे, आई एम श्योर आपके पास उस एज ग्रुप के भी बच्चे आते होंगे जहाँ पे पेरेंट्स उनसे परेशान हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, उनकी हेल्थ के लिए परेशान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जब उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, मतलब क्या, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, जहां पे हमारे लिए हेल्थ आज इतना बड़ा एक इश्यू, एक समस्या बन चुकी है, अगर आप हमारे लिसनर्स के साथ साझा करें।
1: बिल्कुल, ये बहुत डे टू डे हम लोग इन सारी चीजों से डील कर रहे हैं। रीजन बीइंग, चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ा मेजर हेल्थ कंसर्न बन चुका है, क्योंकि जैसे जैसे एरा बदल रहा है, समय बदल रहा है, बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा बदलती जा रही है. बट हम अक्सर है ना बच्चों को ब्लेम कर देते हैं, मेरा बच्चा ये खाता नहीं है, या मेरा बच्चा बिना टीवी के नहीं देखता, मेरे बच्चे को चिप्स सबसे पहले चाहिए, या मेरे बच्चे को रोज का एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए. और मैं उन पेरेंट्स से अक्सर सबसे पहला सवाल यही करती हूँ कि जब आपने सबसे पहले आपके बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दी थी तो क्या आपका बच्चा खुद दुकान से जाके लेकर आया था या आपने लाके दी थी उसके सिर पे? तो यानी कि हम खुद गलती की शुरुआत करते हैं, और उसका सबसे बड़ा बैकहैंड रीजन ये है कि हम खुद उस तरह की गलती को करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए वो बच्चे उसके अडिक्टेड हो जाते हैं. तो अक्सर हम पेरेंट्स यही गलती रोजमर्रा के जीवन में भी करते थे. जैसे हम बच्चों को अक्सर बोलते हैं आप आलस मत करो, पर हम खुद ही पेरेंट जब वर्कआउट की बात आती है तो आलस कर देते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हम बच्चों को बोलते हैं बेटा रात को जल्दी सोया करो, पर हम खुद हमारा व्हाट्सएप का जब लास्ट सीन देखते हैं तो 11 या 12 एक बजे का होता है ना. हम खुद बच्चे को बोलते हैं चलो आज बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, और हम बाहर से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारे खाने में पिज्जा पास्ता जैसी चीजें हम ऑर्डर करने का यू नो काम करते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. हम बच्चों को बोलते हैं कूल ड्रिंक मत पियो, है ना, आपने बहुत सारे ऐसे ठंडी ड्रिंक्स नहीं पीनी है, पर खुद हम एज अ पेरेंट चाय के एडिक्टेड होते हैं, हम चाय के बिना रह नहीं पाते. तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हम अक्सर बच्चों की लाइफ में गलत एग्जाम्पल सेट करने से शुरू करते हैं. एंड देन बच्चों के जब शरीर में इससे बदलाव आना शुरू होता है तो एज अ पेरेंट क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं होती तो हम इन सारे बदलाव को इग्नोर भी करना शुरू करते हैं, और बच्चों को भी मेडिसिन पे डाल देते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो एज अ पेरेंट ये हम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं कि हम बच्चों की इम्यून सिस्टम के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बच्चों के एपेटाइट के साथ खेलना शुरू करते हैं. तो एज अ पेरेंट ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है.
0: बिल्कुल. बहुत ही क्लोजली आपने ऑब्जर्व किया क्योंकि आप इतना क्लोजली डील करते हैं इन इश्यूज से, कि सच में हम एग्जाम्पल्स ही गलत सेट कर रहे हैं तो हम बच्चों को क्यों ब्लेम करते हैं, क्यों हम नहीं समझ पाते कि हम जो करेंगे वही बच्चे अपनाएंगे, वही देखेंगे, वही सीखेंगे. और एक एक अपनी शैली में, अपनी जीवन शैली में आपको चेंज लाने की जरूरत है, और एक सही एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वही उनकी सोच बदल सकती है, वही उनकी जीवन शैली बदल सकती है, वही उनकी आदतें बदल सकती है एक सुंदर और एक एक एक हेल्दी लाइफ के लिए. तो इसी नोट पर हम सुनेंगे, जब सोच बदलती है तो जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है. इसी भाव के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गाना, ओरे ताल मिले नदी के जल में.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मानसी जी।
1: थैंक यू वंस अगेन
0: जी। आपने हमें बताया कि आप रिसर्च बहुत करते हैं और रिसर्च बेस्ड स्टडीज, लर्निंग्स, केस स्टडीज, इन सब से अपने आप को अपडेट रखते हैं जब आप काम करते हैं, और आपको लगता है कि इस सारी इंफॉर्मेशन के बीच आपको अपडेटेड रहना, आपकी रिसर्च ड्रिवन रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे कंफ्यूज हो जाएं या वो आपके काम में इम्पैक्ट डालें। आप कैसे डिसाइड करते हैं इस सब रिसर्च, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में रह रहे हैं, हम फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में रह रहे हैं, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सही है, क्या है क्या नहीं है?
1: बिल्कुल सही बोला आपने, और आजकल ये जो ट्रेंडिंग वाला जमाना चल रहा है उसमें वाकई में इट इज वेरी टफ टू चूज द राइट थिंग फॉर यू, बट क्योंकि सभी ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं तो कई बार हमें अपनी चीजें भी ट्रेंड के थ्रू ही लोगों तक पहुंचानी पड़ती है ताकि वो जागरूक हो सके। और रही बात जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है उसमें से राइट एंड रॉन्ग को चूज करना या व्हाट इज गुड फॉर यू या आपके लिए क्या ज्यादा चीजें फायदेमंद होती है, तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ मैं उन चीजों को जरूर ऑप्ट करूँ जो मुझे मेरे पॉजिटिव माइंडसेट को बूस्ट करने में हेल्प करे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को और ज्यादा प्रमोट करने में हेल्प करे, मुझे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाए। एंड आई वुड सजेस्ट हम तब भी जो भी इन ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं हमें उस हर ट्रेंड से, देखिए हर ट्रेंड जरूरी नहीं खराब हो और हर ट्रेंड जरूरी नहीं अच्छा हो, बट ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो ट्रेंड आपको हेल्दी बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बना रहा है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो सभी चीजों के हमेशा दोनों पहलुओं को देखते हुए उसमें से बेस्ट एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे जैसे अगर हम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो उन दोनों पहलुओं को जज करना, उससे अपनी जीवन शैली के अनुरूप हम कितना बेस्ट ढाल सकते हैं उसे देखना, सही जीवन शैली में आपके लिए वो ट्रेंड कितना ज्यादा फायदेमंद होगा वो भी देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम इसीलिए बहुत सारे ट्रेंड्स को कई बार फिल्टर में डाल देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी हटा देते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करती डेफिनेटली हमें उसे इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रेंड जो पैटर्न हमें हेल्प करें उसको अपनाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। क्या कोई ऐसा ट्रेंड या ऐसा कॉज है जिसके लिए आप बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि आजकल जो चल रहा है उससे डील करने का क्या तरीका है? कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: बिल्कुल। आजकल का एक बड़ा मेजर मुद्दा चलता है जहाँ पे हम बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड की, बिकॉज मैं हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि नेचुरल फूड आर द बेस्ट फूड, और इनडीड बहुत ज्यादा ट्रेंड किया जाता है कि नेचुरल फूड ही खाना चाहिए, किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स या किसी भी प्रकार का हमें एक ऐसा सोर्स नहीं अपनाना चाहिए जो आउटसोर्स करना पड़ रहा है। तो कई मायने में कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं, और हम अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये ना पूरी तरीके से सही है ना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमारे भोजन में आज जो आज का भोजन है उसमें पहली वाली बात नहीं रही है। आज की जो जीवन शैली है वो भी पहले जैसी नहीं रही है। पहले के लोग बहुत सारा घी खा के भी अपने फिजिकल एक्टिविटीज से अच्छी रखते थे कि वो घी पचा लेते थे, पर आजकल के टाइम पे ना घी इतना शुद्ध है और ना हमारे फिजिकल एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग, तो हमें कहीं ना कहीं फूड के मामले में और जीवन शैली के मामले में ये चूज करना और चॉइस सही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम सिर्फ एक नेचुरल भोजन के पे निर्भरता बनाते हुए अपने शरीर को इग्नोर ना कर दे और ना पूरी तरीके से सिर्फ किसी सप्लीमेंट पे डिपेंडेंसी बनाते हुए अपने भोजन को इग्नोर कर दे। तो ये जो तालमेल है ये बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से बैठा पाना।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। आप ये भी कहती हैं और मानती हैं कि आप कुछ भी चीज सिंपल नहीं कर सकती और हर चीज में अपना तड़का डालती हैं, जैसे आपने हमें बताया। तो डांस, म्यूजिक, बातें, ये सब पॉजिटिविटी, ये क्रिएटिविटी आपकी कोचिंग और आपकी लीडरशिप को किस तरह से बढ़ावा देती है, कैसे आपको अलग और पावरफुल बनाती है आपके काम में?
1: इंडीड, थैंक यू सो मच तनुषा, इस चीज को मुझे फिर से याद दिलाने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की क्रिएटिविटी की या किसी भी चीज को अलग तरीके से पेश करने की, क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारी चीजें जानते हैं समझते हैं पर अक्सर एक ही तरीके से बार बार सुनने से या बार बार दोहराने से हम उस चीज से ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं, पर अगर हम उसी बात को कभी कभी अलग अंदाज में, अलग कहानी के रूप में या अलग लाइफ लेसन के रूप में बताते हैं, तो लोग फिर से उस तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर सकते हैं. बहुत एक बेसिक एग्जांपल है, आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे बड़े पुराने जमाने के गाने फिर से ट्रेंड हो रहे हैं क्योंकि उसमें अलग डांस का स्टेप डाल दिया गया, उसमें थोड़ी सी बीट ऐड कर दी गई. तो वही जो पुराना गाना जो कभी किसी ने शायद बहुत कम सुना होगा, जो बहुत कम ध्यान दिया होगा, पर उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी का और अलग किस्म का तड़का लगा और वो ट्रेंड हो गया. तो इसीलिए अगर हम चीजों में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली हम काफी अच्छे तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. और एज अ लीडर मैं ये पर्सनली मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि एक लीडर को रेनबो की तरह होना चाहिए. कि एक लीडर के पास में बहुत बड़ी टीम होती है और उस टीम में बहुत सारे अलग अलग नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं और हम हर किसी को एक ही तरीके से नाप तोल नहीं सकते और एक ही तरीके से हम उनके साथ काम नहीं कर सकते. तो पर जब एक लीडर एक रेनबो पैटर्न का व्यक्ति होता है तो वो बहुत आसानी से अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ काम कर पाता है और उसे लीडरशिप मैनेज करना काफी आसान हो जाता है.
2: बहुत ही खूबसूरत जवाब. और ये एक नई हमने सीख आज सुनी है, सीखी है कि लीडरशिप एक रेनबो, एक इंद्रधनुष की जैसी होनी चाहिए. क्योंकि सच है कि एक लीडर को हर तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो अगर उनमें वो सतरंगी रंग नहीं होंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि हर तरह का व्यक्ति क्या चाहता है, किस तरह से हैंडल हो सकता है, किस तरह से उसकी एनर्जीज, उसकी जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको रीच कर सकते हैं. और बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें बताया, जब दिल खुश होता है तो थकान भी मुस्कुरा जाती है और पीछे से हार जाती है. इसी एनर्जी के साथ, इसी क्रिएटिविटी के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है.

0: वेलकम बैक श्रोताओं। मानसी जी, आज के दौर में फिजिकल वर्कआउट तो सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है, बट मेंटल एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप तीन कोई सिंपल डेली हैबिट सजेस्ट करना चाहें, जो बिना प्रेशर के आप अपने माइंडसेट को, बिकॉज आई थिंक हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट है। आप हेल्दी तो फिर भी हो जाएंगे अगर आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट उसको रेगुलरिटी से करने के लिए, उसको खुश होके करने के लिए, उसको क्रिएटिवली करने के लिए, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया, खुश रह के उस चीज को करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत है। तो उस माइंडसेट को एज अ वेलनेस कोच अगर ठीक करना हो तो आपके क्या सिंपल डेली तरीके होंगे जो हमारे लिसनर्स बहुत आम जिंदगी में कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डेली में अपनी कुछ आदतों को बदलें या डेली अपनी आदतों को कुछ फॉलो करें जो हमें लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने में हेल्प करती है। क्योंकि आप कुछ भी अचीव करना चाहेंगे उसके लिए ब्रेन का ट्यून होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कुछ ऐसी हैबिट्स है तनुषा जी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और

0: ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो शेयर करने पे। मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ क्योंकि अगेन हम जो भोजन करते हैं उससे हमारा हमारा पूरा बॉडी बन रहा है, तो हम कैसा भोजन ले रहे हैं, क्योंकि अगेन हम जो भोजन करते हैं उससे हमारा हमारा पूरा बॉडी बन रहा है, तो हम कैसा भोजन ले रहे हैं वो तय करता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ कैसी जाने वाली है। तो मेरा एक मानना है कि जो मन को भाए उसे कम खाए और जो शरीर को भाए उसे ज्यादा। तो ये मेरा हमेशा एक रूल रहा है, क्योंकि हम अक्सर है ना ऐसे फूड को देख के बड़ा टेम्पटिंग और क्रेविंग वाली फीलिंग आती है कि ये बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत सारा खाना है। पर जो हमें क्रेविंग दे ऐसे भोजन से हमें थोड़ा दूर रहना जरूरी है, तो बस उसे मन भरने के लिए खा लीजिए। और जो शरीर को स्वस्थ बना रहा है उस भोजन को पेट भर के खाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके माइंड सेट को डेवलप करने के लिए सबसे पहला। जी, दूसरी हैबिट मैं जो हमेशा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ वो मैं लिखने की बड़ी कोशिश करती हूँ। मैं अपनी आदत बनाए रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज लिखूँ। मैं लिखूँ कि मैंने आज क्या किया, मैं लिखूँ कि मुझे अचीव क्या करना है। अगर हम हर रोज हमारे ब्रेन को ये याद दिलाएं कि मुझे क्या अचीव करना है और मुझे मैं क्या अचीव करने के लिए काम कर रही हूँ, तो ये मैनिफेस्टेशन ये बड़ा हेल्प करता है और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स देता है जिसे हम कभी भूलते नहीं है, क्योंकि अगेन डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हमारी लाइफ में। और अगर हम लिखते हैं बार बार तो हमारे ब्रेन को बार बार ये मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है और हमें इसकी तरफ आगे बूस्ट पर बढ़ाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं अपनी दूसरी हैबिट जो बड़ा फॉलो करती हूँ है लिखने की। और तीसरी हैबिट जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो है कि हमें लाइफ में बहुत कुछ पाना होता है, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर हम अक्सर सपनों को सपनों की तरह छोड़ देते हैं। अगर हम अपने उस सपने को अचीव करना चाहते हैं तो उसे लक्ष्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने सपनों के ऊपर तारीख लिख देने से वो लक्ष्य बन जाते हैं। तो मैं जब भी कोई चीज अपने जिंदगी में एक सपना देखती हूँ या कुछ अचीव करने के लिए डिसाइड करती हूँ तो मैं उसके नीचे तारीख जरूर लिख देती हूँ। और हर रोज छोटे छोटे छोटे कदम लेती हूँ। बहुत बार अक्सर लोग अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर अचीव करने की कोशिश करते हैं और उससे बड़े कदम लेने की कोशिश करते हैं और कई बार थक जाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अपने सपनों को तारीख देके उसे लक्ष्य बनाइए और छोटे छोटे कदम रोज लीजिए और उसे पूरा कीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने सपनों को तारीख दें, अपने सपनों को एक लिखावट एक एक एक डायरी में उतारें, उसको एक विजन बोर्ड की तरह उतारें और मन भरने के लिए नहीं अपने तन के लिए भोजन खाएं और सही और स्वस्थ भोजन खाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैबिट्स अगर आप करते हैं तो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप खुद से रिजॉल्व को और बेहतर बना रहे हैं। और अगर आप इसको स्किप करेंगे, अगर आप इसको मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होगा, जो बहुत जरूरी है कि शायद एक दिन आपने स्किप कर लिया, अगले दिन आप फिर अपने गोल्स पे वापस जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उन्हें लिख रहे हैं, उस पे एक तारीख डली हुई है और आप मानते हैं कि मुझे अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपको और पुश करेगा। तो बहुत ही खूबसूरती से मानसी जी आपने हमें बताया कि किस तरह से हम हमारी डेली लाइफ में हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ सिंपल कर सकते हैं बट एक्स्ट्रा कर सकते हैं उनको अचीव करने के लिए सिंपल तरीके से। और आप अंत में मुझे बताएं कि आपने हमें ये भी बताया कि आप अकेले में भी खुश रहते हैं और आप कंपनी में भी खुश रहते हैं, आप भीड़ में भी उतने ही एक्साइटेड और हैप्पी और सेल्फ प्रोपेल्ड रहते हैं जितने आप अकेले में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, बहुत रेयर क्वालिटी है जो सब लोगों में नहीं होती। अक्सर लोग भीड़ में भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप से भाग रहे होते हैं। तो हमारा कोई लिसनर जो आज ये महसूस कर रहा है कि मैं तो सबके लिए हूं बट मेरे लिए कोई नहीं और वो अकेलापन उनके जीवन में है, तो आप उसे एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी कि वो अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कर सके और अपने साथ रहना कंफर्टेबल फील करके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर सके?
0: बिल्कुल, ये ना जीवन का सच है। अगर आप खुद अपने लिए सबसे पहले नहीं है तो आप कभी किसी के लिए पूरी तरीके से हो ही नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को अपने लिए जी भर के जीना है ताकि आप दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा बना पाओ और ना भी बना पाओ तो आप अपने जीवन को इतना जी भर के जी रहे कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अक्सर परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं जो खुद पहले अपना साथ देता है। हमें कई बार लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए सेवा करना चाहते हैं, दूसरों के लिए खड़े रहना चाहते हैं,

0: आप पहले खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि जो इरादों से भूखा है, जो लक्ष्य से भूखा है, जो सेहत से भूखा है, खुशियों से भूखा है, वो व्यक्ति कभी किसी का पेट किसी भी सूरत में नहीं भर पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें बहुत बड़ी कोशिश करने की जरूरत है कि पहले हमें इन सभी तरीकों में खुद को पूरी तरीके से प्यार करना, खुद को पूरी तरीके से समझना, खुद को पूरी तरीके से समय देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्वयं को ये सब कुछ दे दिया तो आप बहुत आसानी से लोगों को दे पाएंगे और लोग भी उन्हीं लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं जो ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही और बहुत ही सटीक जवाब आपने हमें दिया कि सच है कि आप अकेले ही हैं, अल्टीमेटली अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो अगर आप खुद के लिए नहीं हैं तो आप किसी के लिए नहीं हैं। आप एक खाली ग्लास से पोर नहीं कर सकते, तो अपने आप को भरें और इतना भरें कि आप ओवरफ्लो करें और दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सकें। वो वो एक एक एक खुशी और एक ड्रीम्स उनकी लाइफ में, एस्पिरेशंस उनकी लाइफ में ऐड कर सकें अपने ओवरफ्लोइंग वेसल से। बिकॉज कोई भी बिना खुद भरे कुछ दे नहीं सकता किसी को। आपसे आज की बातचीत मानसी जी हमें ये याद दिलाती है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी का नहीं, सोच और जज्बात का मामला है। और दोस्तों, आज आपने एक छोटा सा थॉट भी अगर हमारी कॉन्वर्जेशन से पिक किया हो और अगर आपको इंस्पिरेशन मिली हो, तो समझिए आज का एपिसोड सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच मानसी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सो मच अनुषा जी। अनुषा जी थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट रियली मीन्स अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस कॉन्वर्जेशन में, थैंक यू सो मच।
1: सेम है मानसी जी। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। सेहत चुनिए, खुशी चुनिए और खुद को कभी भी लास्ट प्रायोरिटी मत बनाइए। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है थिएटर या स्टेज की बहुरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर जितना लंबा है उतना ही प्रेरणादायक भी। रेल की पटरियों से शुरू हुई उनकी कहानी आज मंच, फिल्म और टीवी तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री अतुलेश कुमार जी का, एक ऐसे शख्स जिन्होंने रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और साथ ही रंगमंच पर अपनी एक्टिंग, लेखन और निर्देशन से सबका दिल जीत लिया। 30 से ज्यादा नाटकों में शानदार भूमिकाएं, 2 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और हाल ही में टीवी शो दूसरी माँ में अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं ऐसे कलाकार का जिन्होंने ड्यूटी और पैशन दोनों को बराबर सम्मान दिया। अतुलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: धन्यवाद आलोक जी, और सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में जुड़ करके और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद समीर गोयल साहब का भी।
0: तो अतुलेश जी, शुरुआत करते हैं, तो अब आप आरंभ से बताइए, बचपन में ही एक्टिंग का शौक लग गया था क्या आपको?
1: ये पता नहीं क्या था, एक जुनून था या क्या था, लेकिन हाँ, मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था, लेकिन बंदिशें बहुत थी। कभी कभार हम लोग नाटक वगैरह देखने जाया करते थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने पहला पिक्चर जो देखा जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन उससे पहले मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। ये पता नहीं कहाँ का एक वो, पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, एक उत्सुकता थी, कोई कीड़ा था या क्या था, या बचपन में मैं मेरे फादर को देखा करता था कि भाई फादर के साथ में बैठ करके कुछ एक्टर एक्टिंग सीखा करते थे और कुछ हमारे यहाँ रिहर्सल वगैरह चलती थी, लेकिन जब मैंने होश संभाला तब तक हमारे फादर ने ये सब छोड़ दिया था। तो ये समझ लो कि बचपन से ही मेरी कुछ इसमें उत्सुकता रही, और बहुत बाद में जाके पता लगा कि हमारे फादर किसी जमाने में ड्रामा डायरेक्टर हुआ करते थे। ये किस्से बहुत सुनाया करते थे वो, लेकिन मुझे नहीं लग, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो प्ले डायरेक्ट करते थे। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट फादर के टाइम के वो मिले, मिल करके मैंने उनको पैर वैस छुए, तो उन्होंने कहा हाँ हम आया करते थे और अंकल जो है ड्रामा डायरेक्ट किया करते थे। ये बहुत बाद में आकर के मुझे पता लगा।
0: भाई अतुलेश जी, ये बात तो अद्भुत है, हमारे साथ भी आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है, ये बात शेयर नहीं हुई कि आपके फादर को भी डायरेक्शन का और एक्टिंग का शौक था। ये तो आज ही इस इंटरव्यू के दौरान मुझे पता लगा है, और नॉस्टैल्जिक भी है और अद्भुत भी है, और उसी से शायद आपने ये लिया है।
1: बिल्कुल, मजे की बात ये थी आलोक जी कि हमारे फादर को मैंने कभी पिक्चर देखते हुए नहीं देखा, और उनके ब्रदर वगैरह जो थे हमारे ताऊ या चाचा जो भी होते थे उनको रिक्वेस्ट करते थे कि चलो पिक्चर देख आते हैं, तो वो कभी पिक्चर देखने नहीं जाते। एक बड़ा मुश्किल से एक दबाव बना के उनको वक्त पिक्चर दिखाने लेकर के गए, फादर बीच में से ही उठे आए, बलराज साहनी की पिक्चर थी।
0: हाँ बहुत, चलिए बहुत अच्छा है। अब आप थोड़ा आपके रेलवे के सफर पे आते हैं, आपने रेलवे में एक बहुत ही लंबा और ऑनरेबल कैरियर बिताया, लेकिन साथ ही साथ आप ड्रामा और कल्चरल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे आप मैनेज करते थे?
1: ये थोड़ा बचपन से ही थोड़ा शौक था कि भाई मैं कहीं एक्टिंग करूं या क्या करूं, तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो हम लोगों ने खोला हुआ था, फोटोग्राफी का एक शौक वो भी था हमारा, तो फोटोग्राफी करने जाया करते थे। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ मेरे फादर की वॉइस, तो फादर भी रेलवे में थे, तो फादर चूंकि बहुत एक्टिव थे तो लोग बागों को मुझसे भी उतनी ही ज्यादा उम्मीदें थी। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1984 के अंदर, तो उस समय से ही लगभग मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम इस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, सब जगह मेरे पीछे पड़े रहते थे। और पता नहीं क्यों एक आत्मविश्वास उनके अंदर था कि ये आदमी कर जाएगा, इसको जो काम दो वो कर लेगा ये। और मैंने भी उसको ये समझते हुए लिया कि फादर की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है इसलिए मुझे करना है। तो ये एक अद्भुत रहा,
0: मतलब फादर एक साये की तरह आपके साथ हमेशा रहे एक तरह से, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
0: आपको याद है आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई और कैसे उस वक्त आपने अनुभव कैसा रहा था, वो कैसा हुआ?
1: वो बहुत ही मजेदार रहा। वो एक्चुअली मैं पहला अगर सोचा जाए तो पहला स्टेज तो मैंने प्राइमरी स्कूल में, जब मैं मेरे ख्याल से नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, तब हमको एक सॉन्ग के लिए खड़ा किया गया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था तो उसमें एक सॉन्ग दिया था, तो उसमें वो कर गुजरे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में एक सनक सी थी जिसको मैं पहचानने में भूल कर रहा था क्या कर रहा था। मैं जब फिफ्थ क्लास में पढ़ता था तो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मैं पढ़ता था, आदर्श विद्या मंदिर बांदीपुर के अंदर। उस समय एक प्ले था, उसका नाम था हृदय परिवर्तन। ये था महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का। शक्ति सिंह किन्हीं कारणों से अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि भाई मैं अपने भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं,

0: मेरा रोल था शक्ति सिंह का, मैं महाराणा प्रताप का पीछा कर रहा हूं और वो पलट करके मुझे देखते हैं, आगे भागते हैं। लास्ट में मतलब ये कि स्टेज की परफॉर्मेंस थी तो इसलिए उनको स्टेज पर रुकना ही था। मैं उनके आगे गड़गड़ाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। इतने में अकबर का कोई सिपाह साला जो होता है वो, उसने तीर चलाने की कोशिश करी और मैंने अपने तीर से उसको मार दिया। और उस समय आंसू तो खैर क्या आते थे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे आंसू आए। मैं महाराणा प्रताप के कदमों में पड़ा हुआ था, महाराणा प्रताप ने मुझे गले से लगाया, ये एक मुझे अभी भी वो याद है, ये पहला
1: बहुत
0: प्रयास।
1: वैसे आपने बहुत पुरानी याद दिला दी मुझे भी। ये शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का जो है, ये हम लोगों की स्कूल की किताब में भी ये चैप्टर था, और
0: जी
1: हल्दीघाटी के युद्ध से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें भी बहुत पुरानी याद है। आप गजब की चीज याद दिला दी आपने, ये
0: क्या बात,
1: हिस्टोरिकल बहुत बढ़िया है। तो चलिए इस पुरानी हिस्टोरिकल बात पे ही एक अपन गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं।

0: आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और जॉइंट कल्चर सेक्रेटरी भी रहे हैं। उस समय में रेलवे में कल्चरल एक्टिविटीज का माहौल कैसा था, थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं कुछ उसके बारे में, रेलवे के बारे में।
1: यो तो रेलवे की एक सशक्त टीमें रही हैं जगह जगह, लेकिन जयपुर डिवीजन इस मामले में कहीं थोड़ा सा पीछे था। हाँ, मुझे याद है कि 1982 के अंदर रेलवे की एक टीम ने या एक टीम लीडर ने यहाँ 82 में जब एशियाड 82 हुए थे, उस समय के लगभग 1000 लड़कियों को लेकर के घूमर वहां कराया था। तो वो चूंकि फादर के दोस्तों में हुआ करते थे, मैं उनके टच में था, तो वो टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट पे हुआ करते थे, तो वो डांस भी अच्छा करते थे, अच्छी वो करते थे, तो मैं उनके टच में था बराबर से। लेकिन हाँ, रेलवे का जो आप कह रहे हैं कि कल्चरल था, कल्चरल बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन जयपुर डिवीजन में काफी कम रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी फरमान कुछ ज्यादा दबाव में चलता था।
0: ओके, अच्छा। तो,
1: और जहां तक हम बात करें जयपुर डिवीजन की, मतलब ये डिवीजन बने हुए थे, वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन था जयपुर डिवीजन, यहाँ ब्रिटिश टाइम का इंस्टीट्यूट बना हुआ था जिसके अंदर किसी जमाने में बहुत अच्छे शो हुआ करते थे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था बांदीकुई में, और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता था फुलेरा के अंदर। तो बांदीकुई में जो इंस्टीट्यूट चलते थे, वहां इंस्टीट्यूट में हम लोग प्ले वगैरह देखा करते थे, और उसमें हमारे फादर कभी डायरेक्ट किया करते थे।
0: और ये एक छोटे मियां बड़े मियां ट्रेन रेस, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसा बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया जो बहुत पॉपुलर रहा, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो शेयर कीजिए।
1: उसके पीछे की कहानी यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2003 के अंदर इसका जन्म हुआ। तो अलग अलग जोन बनाए गए थे, नए जोन खोले गए थे, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से मिलकर के एक नया जोन बनाया गया था, और ये अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ था। तो नई एक कमेटी बनाई गई कि भाई इसका जो अपन पहली बरसी जो मनाया जाए, पहला एनुअल डे जो मनाया जाए, वो किस तरीके से मनाया जाए। तो एक बहुत ही क्रिएटिव डॉक्टर एनके कल्ला थे, उन्होंने पूछा होगा किसी से कि भाई यहाँ कल्चरल का कोई संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो उसमें ये रहा कि मेरा नाम उभर करके आया सबसे पहले, कि अगर किसी आदमी को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो सबसे पहला शख्स अतुलेश होगा। तो चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम एक अद्भुत तरीके का करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी लाइन भी है और बड़ी लाइन भी है, गैस कन्वर्जन का काम चल रहा है, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि हम एक छोटी लाइन के डिब्बों के अंदर जो सीटें होती हैं उन सीटों को हटा के साइड में लगाते हुए बड़ी लाइन के डिब्बे हैं उनके अंदर बड़े, मतलब बीच में से सीटों को हटाते हुए साइड में लगा, और बीच में मतलब 8-8 बोगियों के वो बनाए गए, और बीच में जो है कल्चरल प्रोग्राम चलते रहे। तो हमारे पास में जो जोन में डिस्ट्रिक्ट थे या डिवीजन थे, वो थे जोधपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन। इसमें भी वर्कशॉप भी शामिल थे, जिसमें बीकानेर वर्कशॉप था, जोधपुर वर्कशॉप था, अजमेर वर्कशॉप था। तो इस तरीके से हमारे पास में टीमें पर्याप्त, दो दो टीमें हमने मंगाई सब जगह से, और हमारा सौभाग्य रहा कि उसके अंदर जो है जसदेव सिंह जैसी शख्सियत भी उसकी विटनेस रही। बहुत ही बढ़िया चला है, छोटी लाइन का और बड़ी लाइन का एक बराबर से रेस हुई, उस रेस में कभी छोटी लाइन आगे कभी बड़ी लाइन आगे, तो इस तरीके से चलता रहा।
0: बड़ा इंटरेस्टिंग।
1: हाँ, जिसको बीबीसी तक ने कवर किया इस न्यूज को।
0: अरे वाह वाह वाह, ये तो जसदेव सिंह साहब की आपने याद दिला दी, क्या हस्ती थे, वो भी जयपुर के ही थे भाई, वो जयपुर
1: हाँ
0: के थे,
1: जी
0: और क्या तो कमेंट्री करते थे क्रिकेट की और हॉकी की, तो खैर गजब के ही थे वो।
1: मेरे लिए इससे बड़े सम्मान का विषय कोई नहीं था कि मैं बिल्कुल साक्षात जसदेव जी के सामने खड़ा हुआ हूं और उनसे बात कर रहा हूं, जहां कभी मैं कमेंट्री कान लगा करके उस पर ट्रांजिस्टर पर सुना करता था कि जसदेव सिंह जी हॉकी की कमेंट्री कर रहे हैं, क्या मजा आता था।
0: अद्भुत अद्भुत, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के नाम पे, इसके नाम की शायद कोई एक फिल्म भी आई है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं उसको।

0: अब अतुलेश जी आते हैं आपकी थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में।
1: जी,
0: आपकी पहली थिएटर एक्टिंग 1968 में और आखिरी 5 अगस्त 2025 में, मतलब लगभग 6 दशक का शानदार सफर। इतने सालों तक एक्टिंग का जुनून कैसे बरकरार रहा है आपका?

0: अब यो सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में आपको अपना दैनिक कार्य भी करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं नौकरी भी करनी है, और आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो समय में से समय ही चुराना पड़ता है साहब, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस छोटे छोटे क्षणों को चुराते हुए मैं अपना काम करता रहा। कुछ तो ये रहा कि लोगों का विश्वास मेरे साथ में रहा, कुछ मेरे पिताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा। तो कुल मिलाकर के ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हो गया बराबर से।
1: आपने स्टेज पे भी एक्टिंग की है, कैमरे के सामने भी एक्टिंग की है, क्या
0: जी
1: दोनों में क्या फर्क महसूस होता है आप?
0: स्टेज की एक्टिंग आपके पसीने निकाल देती है, और जो आप पर्दे पे जब आप करते हैं तो ये समझ लो कैमरा मैन के पसीने निकलवा देती है। मतलब वहां तो आपको रिटेक के चांस ही चांस है, वो बार बार कहेगा कि रिटेक रिटेक रिटेक, और जब आप स्टेज पे होते हैं तो स्टेज का जब आप शो कर रहे होते हैं और आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई तो सामने जो आपको डायलॉग कवर कर रहा है को आर्टिस्ट, उसके पसीने आ जाते हैं। बहुत मुश्किल है साहब स्टेज की आर्टिस्ट स्टेज पे आपको परफॉर्म करना, और उतना मतलब उतना तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, लेकिन वहां भी मजा हुआ, कलाकारी चाहिए आपको, जहां आप बड़े पर्दे पे या टीवी पे एक्टिंग कर रहे हैं तो वहां भी मजा हुआ कलाकार चाहिए, लेकिन वहां क्या रिटेक के चांसेस होते हैं, यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ अगर आपको इम्प्रोवाइज करना आता है तो आप चल सकते हो, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है।
1: ये बहुत ही आपने गहरी बात कह दी, और सही बात है, स्टेज की एक्टिंग और कैमरे के सामने की एक्टिंग में अपना डिफरेंस बहुत ही बखूबी बयान कर दिया। चलिए, आपने 30 से ज्यादा नाटकों में लीड और सपोर्टिंग रोल किए हैं, कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपको याद है, आपके बहुत दिल के करीब है, ऐसा कोई किरदार है?
0: किरदार तो है सर, मैं बताऊं आपको, एक बार मैं प्ले कर रहा था तो मुझे बोलना था विद्यावती, विद्यावती मेरी मिसेज का नाम था, और बोलना था ये कि विद्यावती मैं आज कमला की शादी तय कर रहा हूं। मेरे मुंह से ये निकल गया, विद्या की माँ मैं आज
1: अच्छा
0: रिश्ता तय कर रहा हूं। फिर मैंने वहां कमला नहीं बोला, कमला की जगह अपनी बेटी का बोला बोला, ये मैंने वहां संभाला, तो बड़ा हिला देने वाला बात हुई, और लेकिन वो बड़ा सक्सेस हुआ और उसमें हम लोगों का अवार्ड भी मिला, क्योंकि वो डायरेक्टर जानता था और मैं जानता था कि कहाँ मिस्टेक हुई, तो
1: जी
0: बस ये रहा। और एक हादसा ये हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था तो उस डायरेक्शन के अंदर एक लड़का हमारे बहुत पीछे पड़ा कि देखो मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज कहाँ तक जाती है। मेरा कायदा ये रहा है कि जब मैं टीम के साथ करता हूँ, एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि स्टेज पे से कम ऑडियंस की 5 पंक्ति तक आपकी आवाज बिना माइक के जाए, उसके मतलब उससे कम मैं सहमत नहीं होता। तो उस आर्टिस्ट ने मुझे काफी दूर तक आवाज सुना करके बताई, लेकिन वो जैसे ही स्टेज पर आया, स्टेज पर आने के बाद वो ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक होते के साथ ही अब वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि मैं विंग में खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये तो खतरनाक काम हो गया। मैंने जबरदस्ती एक आर्टिस्ट को स्टेज पर धक्का दिया, वो बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ, उसने बात को सुना। तो ये तो बात रही, लेकिन जहां तक मेरे किरदार का सवाल है तो मुझे सेठ जी के रोल बहुत अच्छे लगे, जहां जहां मैंने सेठ की किरदार निभाए, या कहीं कहीं मुझे ऐसे करेक्टर आर्टिस्ट में मान के चलो कि करेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगे।
1: अच्छा, नहीं, सेठ का रोल आपके दिल के काफी गहरा, वो बिल्कुल राजस्थानी पगड़ी वगड़ी लगा के सेठ के रोल जो
0: जी
1: होते हैं वो आपने काफी किया लगता है।
0: जी
1: तो चलिए, इस किरदार की बात पे एक गाने के लिए हम एक साथ में देते हैं अपने एक गाने को और एक गाना सुनते हैं।

0: अतुलेश जी, आप दो बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीत चुके हैं। डायरेक्शन का एक्सपीरियंस एक्टिंग से कितना अलग रहता है?
1: डायरेक्शन और एक्टिंग का ये समझ लो कि काफी डिफरेंस है। डायरेक्टर जो होता है उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है कि मतलब ओवरऑल सारे करेक्टर जितने भी काम कर रहे हैं वो उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। जिस हद तक आपको पब्लिक तक आपको अपनी बात पहुंचानी है उस हद तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उनके इमोशन वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि जो इमोशन आप पब्लिक में ढालना चाहते हो या पब्लिक के चेहरे पे देखना चाहते हो। मतलब अगर कुछ ऐसा है कि भाई आंख में आंसू आने हैं तो पब्लिक बाकायदा रुमाल निकाल के आंसू पोंछते हुए दिखाई देनी चाहिए। अगर हंसी की बात है तो वो खुल करके हंसने वाली बात आ जानी चाहिए। और जहां तक एक्टिंग का सवाल है, वो एक्टिंग तो आप अपने ऊपर ही पूरा खर्चा करते हो, अपने ऊपर ही पूरा फोकस करते हो, आप कोशिश करते हो उस किरदार को पढ़ने की, उस किरदार की सराउंडिंग्स में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखने की, और उसको उतार करके मतलब जैसे किसी किरदार को आपने जहन से लेकर के और आपके कलेजे तक उतारा और कलेजे से निकाल करके मुंह से निकाल के और आपके हाथ और आंखें और जो जो ऊपर मतलब शख्स से शिरा से लेकर के और नीचे मतलब कलवे के नाखून तक आपका जो पोस्चर आना चाहिए, जस्चर आना चाहिए, वो सब दिखाई देना चाहिए, वो उसकी बात है।
0: बहुत खूबसूरती से आपने बताया ये बात, ये डिफरेंस। तो एक प्ले तो आपने खुद भी लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्ट भी किया है, तो और शायद वो आकाशवाणी पे भी रिले हुआ था, कोई उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए कुछ।
1: हुआ यो कि हमारे यहाँ रेलवे वीक मनाया जाता है, सब जानते हैं कि भाई अप्रैल के उसके अंदर रेलवे वीक मनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: जब रेलवे पहली रेलवे शुरू हुई थी उसको लेकर के पूरी इंडियन रेलवे के अंदर एक रेलवे वीक मनाया जाता है, तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें अवार्ड फंक्शन भी होते हैं। तो मुझे कहा गया कि एक शॉर्ट प्ले आप लिखो और लिखने के बाद में वो करना है, तो मैंने एक शॉर्ट प्ले लिखा, बहुत हंसी मजाक का प्ले था वो। तो उसको इत्तेफाक से ये आपके हरिराम आचार्य जी के भाई थे घनश्याम आचार्य, जो आकाशवाणी के अंदर मेरे ख्याल से ड्रामा डिपार्टमेंट उनके पास में था, तो वो वहां देख रहे थे उसको, कवर कर रहे थे या क्या, मतलब वो बहुत आनंदित हो रहे थे। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो बोले यार ये किसने लिखा यार, ये मिलाओ उससे मिलाओ। तो लोगों ने कहा ये इन्होंने लिखा है, तो इनसे बात कर लें आप। तो मेरी बात हुई घनश्याम आचार्य जी से, तो उन्होंने कहा मुझे एक प्रोग्राम चाहिए युव वाणी के लिए। अब चूंकि टीम का लीडर मैं था, तो जो टीम के लीडर होने के नाते मैंने कहा कि यार ऐसा होना चाहिए कि भाई सब तरह के प्रोग्राम उसमें शामिल हो जाए, वैरायटी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें गाना भी हो, म्यूजिक भी हो, प्ले भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई युववाणी के लिए आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें वैरायटी प्रोग्राम चलेगा या खाली मेरा प्ले आपको लेना है? बोले वैरायटी हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया माउथ ऑर्गन प्लेयर थे, उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया और फिर एक प्ले लिखा मैंने हाथ की हाथी, और लिखने के बाद में वो रखा मेरे पास में, और उन्होंने कहा मैं जल्दी संपर्क करूंगा आपसे। तो उन्होंने हमको वो चांस भी नहीं दिया। एक हमारे गजल गायक भी थे, तो वो उनका गजल का भी प्रोग्राम लिया मैंने, तो उन्होंने वो चांस भी नहीं दिया मुझे कि भाई मैं उसको एक दो रिहर्सल निकालूं। बोले आ जाओ फटाफट आ जाओ आकाशवाणी में अंदर उसके अंदर लगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और जाते के साथ उन्होंने बोले अंदर घुस जाओ और इसको पढ़ो, अपने प्ले को पढ़ो। तो मैं अपने साथ तीन चार लोगों को ले गया, जिसमें एक फीमेल आर्टिस्ट भी थी। तीन चार लोगों को ले जाने के बाद में वहां जब हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा बीच में, अरे आप थोड़ा सा निकल के इधर आओ, हारमोनियम पे दो बीट दे दो फटाफट। वो बीट दी। जब शाम को मैंने सुना तो मैं तो चकरा गया बुरी तरह से। मैंने कहा ये मेरी आवाज है, और वो जो हारमोनियम हमने प्ले किया था वो इतना फिट बैठ रहा था, मजा आ गया उसके अंदर। तो वो प्ले मेरा लिखा हुआ था, उसमें हमने एक्ट भी किया अपने हमारी टीम के साथ में। एक मजेदार रहा।
0: बहुत अद्भुत विवरण बताया आपने आकाशवाणी का, और घनश्याम आचार्य जी की जो बात आपने कह दी ना, कोइंसिडेंटली कह लीजिए कैसे, घनश्याम आचार्य जी से मेरा भी किसी जमाने में बड़ा परिचय था। इन्होंने मुझे भी आकाशवाणी में एक बार कुछ पढ़ने के लिए बुलाया था, तो मेरी भी दोस्ती इनसे काफी थी। चलिए, बहुत पुरानी बात याद आ गई। तो घनश्याम आचार्य जी की याद में एक गाना सुन लेते हैं, मेरे को बड़े पसंद थे घनश्याम आचार्य जी, एक गाने के लिए रुक जाए।

0: पे लिख दो।
1: अतुलेश जी, अब आते हैं आपके फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के सफर पर। आप 7 बॉलीवुड फिल्में, 6 टीवी सीरियल्स और 4 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इनमें से कौन सा मीडियम आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
2: बड़ा पर्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं ना, टीवी सीरियल्स वगैरह जो वो आपके घरों तक पहुंचते हैं, वहां से आपको फीडबैक मिलता है। अब बड़े सिनेमा को तो हालांकि आजकल तो सभी प्लेटफॉर्म पे आने लगे, OTT प्लेटफॉर्म चल गए, सब पे आने लगे, लेकिन तीनों जगह वो मौज मस्ती है और वो बढ़िया आलम रहता है। बड़ा बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट रहता है इनका। मुझे तो तीनों जगह पसंद करने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेरा लगाव रहा थिएटर से, जो आप ये समझ लो कि ये मूल है उसका। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन लोगों ने फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। अब वो हो सकता है कि उनके अंदर कहीं से कोई निखार हो या क्या हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि थिएटर करना जरूरी है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, उम्दा एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह कह लीजिए या कोई, ये सब स्टेज से ही निकले हैं और अब अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हाल ही में आपने एक NTV के लिए शो किया है, दूसरी माँ। इस अनुभव के बारे में बताइए, ये कैसा है?
2: ये बड़ा बढ़िया अनुभव। हालांकि कहानियां आपके इर्द-गिर्द ही होती है, वो कहानियां कुछ लोगों की नजर में आ जाती हैं, वो राइटर उनको लिखते हैं और किसी हकीकत तक पहुंचते हैं। वहां एक अच्छा माहौल आपको मिलता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नेचुरल माहौल मिलता है जिसमें आपको कुछ करने को मिलता है कि हाँ भाई ठीक है। मुझे वैद्य जी का रोल मिला था, पहले रोल मिला था मेरे को जज का इसके अंदर, लेकिन उसके बाद मुझे रोल मिला इसमें वैद्य जी का। और वैद्य जी भी एक इस टाइप के वैद्य जी के पैसे के लिए कुछ भी करना है।
1: ओके,
2: तो उसमें ये है कि एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में जैसे रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं और वो गांठें अपने उसकी वजह से पड़ती हैं कि अपनी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती, या कोई ये चाहता है कि मेरी बड़ाई होती रहे परिवार के अंदर, बाकी के लोग ऐसे ही चलते रहे। और जहां कहीं दूसरे की बड़ाई की बात आती है, या कहीं किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, या कहीं कोई के मतलब ये समझ लो कि किसी की इनकम में फर्क आने लगता है, किसी की रेपुटेशन में फर्क आने, तो एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के बीच में ये रहा कि एक साजिश सी चल रही थी। आजकल तो हर एक सीरियल के अंदर आपको साजिश मिलेगी, है ना। तो वहां क्या थे, एक मतलब परिवार की एक सदस्य दूसरी सदस्य को इस बात पे मजबूर कर रही थी कि मां ना बने, तो वो मेरे पास आती कि मेरे को वैद्य जी कोई ऐसी दवा दे दो, बहुत परेशानी में हूँ और ये कर दो वो कर दो। बाद में खुलासा होता है कि अरे मैं तो किसी साजिश का शिकार हो गया, मैंने उसको भी दवा दे दी और ये क्या किया मैंने। ये कुछ बड़ा मजेदार रहा।
1: अरे वाह, अच्छा मुझे समझा कि दूसरी बात से मुझे ये लगा था कोई सौतेली मावा का किस्सा होगा।
2: हाँ, कुछ ऐसा ही है, किसी ने एडॉप्ट किया किसी को, लेकिन वो उसको भाया नहीं, दूसरी लेडी को ये नहीं भाया कि इसने इसको एडॉप्ट कैसे कर लिया। तो कुल मिलाकर के जब एडॉप्ट कर लिया तो बोले अब इसने एडॉप्ट कर लिया, अब इसके बच्चा नहीं होना चाहिए।
1: तो अतुल जी, कोई ऐसा रोल या करेक्टर जिसे करने की अब भी आपको ख्वाहिश है और यार ऐसा मेरे को कोई रोल मिल जाए तो मैं जरूर करूंगा, कोई है ऐसा?
2: बिल्कुल, अभी जो है ना मुझे करेक्टर एक्टर में कुछ मतलब ऐसा जो एकदम परिवार का मुखिया है और मुखिया होने के बावजूद भी पूरे कमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार में बिखराव रहता है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है, ऐसा कुछ करेक्टर मुझे करना है। ये ऐसी तमन्ना है कि भाई वो बराबर परिवार से जूझ रहा है, कभी कहीं संकट खड़ा हो जाता है, कभी कोई संकट खड़ा हो जाता है, कुल मिलाकर की बात ये कि एक ऐसे करेक्टर की तलाश है उन्हें।
1: नहीं, ये तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन चलिए आपके इस करेक्टर की तलाश के लिए हम एक गाना सुनते हैं इस स्टेज पर।

0: अतुलेश जी, आपने एक्टिंग के साथ कई नाटक लिखे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज भी किया है। इतनी क्रिएटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन आती कहाँ से है भाई, ये तो बताइए हमें।
1: बस यूँ समझ लो कि मैं करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। और मैंने एक कोशिश ये की है कि ना थकने की, कोई वो ऐसा होना चाहिए कि जहन में थकावट नहीं होनी चाहिए। ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, ये मिलना है तो ये करना है, तो ये कोशिश ही रहती है कि। और दूसरा पीछे ये भी है कि मैं अपने पिताश्री का कुछ, अगर 0.05% भी कुछ करता हूँ तो अपने आप को सफल मानूंगा। क्योंकि तो मेरे पिता के विषय में जब मैं सुनता हूँ, उनके दोस्तों से सुना करता था कि हमारे पिता अपनी बगल में 8 संस्थाओं को दाब के चला करते थे और सबको समय दिया करते थे बावजूद अपनी नौकरी के। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि कम से कम उतना एनर्जेटिक तो रहूं। और मैं ये सोचता हूं कि कभी थक कर बैठ गया तो अपने घर लौट जाऊंगा, तो मैं थकने की कोशिश नहीं करता।
0: वाह, क्या बात कही है। एक तरह से आपकी जितनी एक्टिविटीज है, जितनी एनर्जी है, अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट है। आप, वो आपके साथ रहते हैं और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है और आप उससे काम करते रहे। क्या बात कही है आपने। पिता के लिए इससे बड़ी ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। कोई बेटा ये कहे कि मुझे सब कुछ उनसे मिल रहा है, एनर्जी भी उनसे मिल रही है, क्या बात है। स्कूल टाइम में आप बास्केटबॉल कैप्टन भी रहे हैं, क्या उस टीम वर्क का असर आपके थिएटर ग्रुप या स्टेज लाइफ पर भी पड़ा है।
1: बिल्कुल साहब, टीम वर्क तो आपका सब जगह काम आता है। मतलब एकाकीपन जो होता है ना, अकेला मैं एकला चलो वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एकला चलो में तो मेरे ख्याल से मजा नहीं है। जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो सफलता जो सबको मिल करके जो प्रसन्नता रहती है ना, उसका मुकाबला नहीं है साहब।
0: सही कह रहे हैं, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे इवन बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इतने बड़े टीम वर्क ही इनको सबको बनाता है। यही एसेंस है इस सारे काम का। क्रिएटिव कोई भी काम होगा, अकेले बहुत कम चीजें होती हैं। पेंटिंग भले ही आप अकेले कर लो, लेकिन ये जो मीडिया है, ये सारा टीम वर्क का है। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया।
1: बिल्कुल सर, हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा था उनका। हमारे मित्र हैं पंडित हरिहर शरण भट्ट, सितार वादक जो हैं। उनके मुंह से एक वाक्य सुना मैंने, जब से वो मेरे 2001 के अंदर मेरे टच में आए थे, मैं उनके संपर्क में आया, तो उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनता हूँ कि अतुल जी, भाई साहब, मैंने पैसा तो अपनी जगह कमाया है सो कमाया, लेकिन मैंने आदमी कमाए हैं। अपने व्यवहार से किसी आदमी का आप दिल जीत लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये मैंने उनसे सीखा था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। भट्ट जी का नाम बहुत मशहूर है और बहुत आला दर्जे के कलाकार है।
1: जी
0: आपने प्रशासनिक क्षेत्र और कला दोनों में बेहतरीन काम किया है। आपकी
1: जी
0: नजर में आपको सक्सेस या सफलता की क्या परिभाषा है, क्या क्या कहेंगे आप इसको अगर।
1: सफलता की परिभाषा यह है कि जो काम मिले, प्रसन्नचित्त होकर के उस काम में जुट जाओ। अगर आपसे वो काम नहीं

0: होता है, शुरू शुरुआती दौर में ही आपको लगने लगता है कि ये काम आपके उसमें नहीं है, तो आप उसको सीधे सीधे मना कर दो कि भाई ये काम मेरे बूते का नहीं है। अगर आपने काम हाथ में लिया है तो उसको प्रसन्नता पूर्वक निपटा दो आप, और जहां आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है टीम का सहयोग जरूर लेना चाहिए।
1: अभी अगर यंग लोगों को कोई आप एक मैसेज देना चाहें जो अपने जॉब के साथ पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? एक छोटे से में कुछ बताइए हमें।
0: जब भी काम करें तो कभी तैश में या डिप्रेशन में ना आए, काम करें, उसको काम को एंजॉय करें।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही आपने, छोटी सी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात। अब हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अतुलेश जी, आज आपके साथ बातचीत करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। आपका जीवन ये सिखाता है कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई उम्र, कोई काम, कोई सीमा आपको अपने सपनों से नहीं रोक सकती। रेलवे की ड्यूटी से लेकर मंच और कैमरे की चमक तक आपका सफर मेहनत, लगन और कला से भरा हुआ है। आप जैसे कलाकार आज भी नई पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैशन कभी रिटायर नहीं होता। अतुलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज मुझे, आपने मेरे से संपर्क किया, बातें साझा हुई और एकदम रिफ्रेश हो गया। ये यकीनन ये मानिए है कि मैं वाकई में अपने आप को और ज्यादा यंग महसूस करने लगा हूँ आपके साथ बात करके।
1: वाह, क्या बात है! और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हर आवाज के पीछे होती है एक कहानी।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

Coche.

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे, लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवी कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएनसीपी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा, संगीत बनाने के अलावा, रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे न याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

यह कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे मेहमान जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है राहुल कुंभकार। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मौका दिया और मैं आपके FM पर आया हूँ, बहुत शुक्रिया इसके लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, आप कैसे शायर बने, अपना थोड़ा सा परिचय दें।
1: जी जी समीर भैया, मैं राहुल कुंभकार मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से ताल्लुक रखता हूँ और शिक्षा में मैंने MA हिंदी एवं BEd किया हुआ है। एक निजी विद्यालय में मैं अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। उसी के साथ मैं गीतों गजलों की दुनिया में आया हूँ एवं कुछ शेर लोगों तक पहुंचे भी हैं। तो मेरा जो ये सफर शुरू हुआ था, मैं लगभग जब विद्यालय समय से ही मैं लिखता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने गजलों का जो नियम कायदा है वो थोड़ा बाद में सीखा, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि और अच्छा अच्छे से अच्छा कर सकूं।
0: बहुत खूब राहुल भाई, बहुत खूब। तो राहुल भाई मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमको और हमारे सुनने वालों को सुनाएं प्लीज।
1: जी शुक्रिया भैया, मैं एक दो शेर पेश करता हूँ कि चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए, चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए, घने जंगल से बाहर जाने का रास्ता निकल आए।
0: वाह क्या बात है
1: भैया, एक मिनट इसको काट देना, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूँ।
0: ओके।
1: चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए।
0: जी।
1: चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए, घने जंगल से जाने का कोई रास्ता निकल आए।
0: जी।
1: शेर यूं है कि मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार, मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिश्ता निकल आए।
0: क्या बात है क्या बात है,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिश्ता निकल आए। बहुत शुक्रिया। नहीं चलता है मेरा घर सुखन के कारखाने से, नहीं चलता है मेरा घर सुखन के कारखाने से, गजल इतना तो दे कि कुछ मेरा खर्चा निकल आए।
0: क्या बात है बहुत खूब।
1: गजल इतना तो दे कि कुछ मेरा खर्चा निकल आए, मैं घर अपना जब बनाऊंगा खुदा इतना करम कर दे, मैं घर अपना बनाऊंगा खुदा इतना करम कर दे, किताबों के लिए इसमें कोई कमरा निकल आए।
0: बहुत खूब।
1: किताबों के लिए इसमें कोई कमरा निकल आए। बहुत शुक्रिया, ये गजल मैंने अभी ताजा कही है भैया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपने खासम खास जो एक किताबों के लिए एक कमरे की दरख्वास्त की है खुदा से, उसमें तो मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे हमेशा मेरे घर में एक बहुत बढ़िया सी, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, लाइब्रेरी जरूर चाहिए साहब। चाहे मैं उसे अपने ड्राइंग रूम में रखूं, चाहे बेडरूम में रखूं, लेकिन लाइब्रेरी तो चाहिए साहब।
1: जी जी भैया, मैंने ये चीज महसूस की है कि जो ये सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ी है वो पुस्तकों से दूर होती जा रही है। हम लोग तो पाठक हैं, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई लोगों ने पुस्तकों को जितना महत्व देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। एक मतलब एक शेर मैंने कहा था, मैं सुनाता हूँ। हकीकत की तुला पर तौल कर अब कौन देखेगा,
0: जी
1: हकीकत की तुला पर तौल कर अब कौन देखेगा, मेरी बातें बताओ बोल कर अब कौन देखेगा। और शेर यूं है कि छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में,
0: ओहो
1: छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में, वो कहती है कि गीता खोल कर अब कौन देखेगा।
0: ओहो क्या बात
1: वो
0: है,
1: वो कहती है कि गीता खोलकर अब कौन देखेगा।
0: तो इस वजह से वो 10 का नोट हमेशा वहां सुरक्षित रहेगा।
1: जी
0: क्या बात है क्या बात है, क्योंकि किताबों पढ़ने की तो आदतें छूट गई हैं, तो
1: आदतें छूट गई हैं,
0: 10 रुपए का नोट जो है वो वहां पर सुरक्षित रहेगा। बहुत खूब बहुत खूब। तो राहुल भाई, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: जी भैया, मैं मुझे हस्तीमल हस्ती साहब की एक गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जो जगजीत सिंह ने गाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है, वो आप सुनवा दीजिए।
0: बहुत खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज में गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत बढ़िया राहुल भाई, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इससे पहले कि हम गुजारिश करें कि आप अपनी अगली गजल हमें सुनाएं। एक छोटा सा सवाल, गजल गायकों में सबसे पसंदीदा गजल गायक आपके कौन है?
1: जी भैया, अगर मैं बात करूं तो जगजीत साहब मैं मुझे बहुत पसंदीदा गजल गायक लगते हैं
0: जी।
1: उनकी आवाज में जो मीठा सा दर्द है वो मुझे महसूस होता है। उन्होंने जो भी गजलें गाई हैं लगभग मुझे सारी गजलें पसंद हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। इसी वजह से शायद उन्हें गजल सम्राट कहा जाता है हिंदुस्तान में। बहुत
1: बिल्कुल।
0: तो राहुल भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक और गजल सुनाएं।
1: जी मैं कोशिश करता हूं भैया। देखिए, एक मतलब एक शेर की, जो लुगत में भी नहीं है
0: जी,
1: उस माने की तलाश, जो लुगत में भी नहीं है उस माने की तलाश, फिर नए किरदार लेकर फिर कहानी की तलाश, जो लुगत में भी नहीं है उस माने की तलाश, फिर नए किरदार लेकर फिर कहानी की तलाश, जिसने मेरी रूह को तड़पा दिया महका दिया, जिसने मेरी रूह को तड़पा दिया महका दिया, दिल को मेरे है उसी एक रात रानी की तलाश, दिल को मेरे है उसी एक रात रानी की तलाश, राजधानी को भी जाना चाहिए गांव तलक, राजधानी को भी जाना चाहिए गांव तलक, कब तलक गांव करेंगे राजधानी की तलाश।
0: क्या बात है।
1: कब तलक गांव करेंगे राजधानी की तलाश, तुम तो सानी पहले कहकर ऊला कह लेते हो यार, तुम तो सानी पहले कहकर ऊला कह लेते हो यार, हमने ऊला कह दिया है हमको सानी की तलाश, हमको सानी की तलाश, आबे सहरा जो बचा है ले उड़ेगा आफ्ताब, आबे सहरा जो बचा है ले उड़ेगा आफ्ताब, हम भी सहरा में करेंगे रोज पानी की तलाश, हम भी सहरा में करेंगे रोज पानी की तलाश।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल, बहुत खूब, क्या खूब कहा है साहब। तो राहुल भाई, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी गजल के लिए।
1: अगली शुक्रिया।
0: अगली कौन सी गजल आपने पसंदीदा गजल गायकों में से किसी एक की सुनवाना चाहेंगे आप?
1: मैं एक गजल जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है वो हमारे नूर साहब ने लिखी है
0: जी,
1: जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जगजीत सिंह ने ही गाया है उसको
0: जी,
1: जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब
1: जी।
0: आइए दोस्तों, जगजीत सिंह साहब की ही आवाज में ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: राहुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में। और एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा
1: जी।
0: अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं उनको आपका परिचय कैसे दूं?
1: भैया देखिए, मेरा परिचय, मेरा जो शेर था, मैं एक शेर से परिचय देना चाहता हूँ।
0: इरशाद, इरशाद।
1: पिता से पूछिए वो घर को घर कैसे बनाते थे। पिता से पूछिए वो घर को घर कैसे बनाते थे। तपाते थे बदन तब जाके कुछ रुपये बनाते थे। और शेर यूं है कि मुझे पहचान दुनिया में मेरे फन ने अता की है। मुझे पहचान दुनिया में मेरे फन ने अता की है, वगरना बाप दादा गांव में मटके बनाते थे।
0: क्या बात है।
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही सीधी सादी सच्ची बात अपने परिचय के तौर पर आपने फरमाई। बहुत ही सीधा सा, मतलब यूं कहें तो मैं अपनी तरफ से इसमें ये जोड़ सकता हूं, जिसको मैं किसी को बताऊंगा कि राहुल साहब बेहद सीधे सादे इंसान हैं, जिनको शायद छल कपट छू के नहीं गया। बाकी आप इनका ये शेर सुन लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने सीधे व्यक्ति हैं। बहुत खूब राहुल भाई, बहुत खूब। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक गजल और सुनाएं हमारे सुनने वालों को।
1: जी देखिए, मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। मैं जब महानगरों में जाता हूँ तो बदलता हुआ परिवेश देखता हूँ, तो उससे बड़ा प्रभावित होता हूँ। एक मतलब एक शेर मैंने कहा था कि दिलों के खून हुआ करते थे पहले।
0: जी।
1: दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले।
0: जी।
1: दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले। और शेर देखिए भैया, आपको पसंद आएगा।
0: इरशाद।
1: खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन।
0: जी।
1: खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत,
0: बहुत ही प्यारा।
1: एक मतलब एक दूसरे और देखें कि
0: इरशाद, इरशाद।
1: जी भैया, जब मैं उला और वो सानी हो गया।
0: जी।
1: जब मैं, मतलब यूं है कि जब मैं उला और वो सानी हो गया, एक उम्दा शेर यानी हो गया।
0: जी।
1: जब मैं उला और वो सानी हो गया, एक उम्दा शेर यानी हो गया। और शेर यूं है कि कल तलक तो मैं फकत किरदार था, कल तलक तो मैं फकत किरदार था, आज मैं खुद एक कहानी हो गया।
0: खुद एक कहानी हो गया, क्या बात है।
1: आज मैं खुद एक कहानी हो गया। और एक शेर यूं है कि याद उसको इस कदर मैंने किया, याद उसको इस कदर मैंने किया, याद अब वो मुंह जबानी हो गया। याद अब वो मुंह जबानी हो गया। गांव सारे जुड़ गए एहसास के, गांव सारे जुड़ गए एहसास के, दर्द की मैं राजधानी हो गया।
0: वाह,
1: दर्द की मैं राजधानी हो गया। और आखिरी शेर इस गजल का,
0: इरशाद,
1: तो मुझे बहुत पसंद है। एक दफा सहरा में पानी क्या कहा, एक दफा सहरा में पानी क्या कहा, लफ्ज मेरा पानी पानी हो गया।
0: ओहो।
1: एक दफा सहरा में पानी क्या कहा, लफ्ज मेरा पानी पानी हो गया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा, क्या जबरदस्त शेर, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसा लगता है पानी को भी शर्म आ गई होगी कि मुझे भी प्यार मोहब्बत से जितना निर्मल रहना चाहिए, जितना स्वच्छ रहना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं तो हमारे भाई बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी गजल। तो राहुल भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम सुनवाएं।
1: जी जी भैया, मुझे मेहदी हसन साहब भी बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी जो नाजुकी है गजल में, जो उनका मिजाज है
0: जी।
1: उनकी एक गजल है, उन्होंने गाई है, गुलों में रंग भरे, वो गजल मैं चाहूंगा कि आप वो दर्शकों तक, सॉरी श्रोताओं तक पहुंचाएं।
0: बेहतरीन बेहतरीन। आइए दोस्तों, सुनते हैं मेहदी हसन साहब की सौंधी सौंधी आवाज में गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत बढ़िया, राहुल भाई आगे बढ़ते हैं
1: जी।
0: आपसे गुजारिश है कि हमारे सुनने वालों को एक गजल और सुनाएं प्लीज।
1: जी मैं कोशिश करता हूं। एक मतलब एक दो शेर यूं है कि अंतर मन में घोर उदासी,
0: जी
1: अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है,
0: जी
1: अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है, सारी दुनिया खून की प्यासी कल भी थी और आज भी है,
0: आज भी है। वाह।
1: शेर यूं है कि बच्चों ने मंचूरियन बर्गर पिज्जा डोसा बांट लिया,
0: ओहो
1: बच्चों ने मंचूरियन बर्गर पिज्जा डोसा बांट लिया, माँ की प्लेट में रोटी बासी कल भी थी और आज भी है।
0: वाह क्या बात है।
1: कल भी थी और आज भी है। और एक शेर यूं कहा था कि हमने हमने आया थी पौधों को पानी वानी खूब दिया,
0: जी
1: हमने हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया, लेकिन घर की तुलसी प्यासी कल भी थी और आज भी है।
0: ओहो क्या बात है।
1: हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया, लेकिन घर की तुलसी प्यासी कल भी थी और आज भी है। और एक शेर यूं है कि जिनका दर्द हमारे दिल में आज भी है और कल भी था, जिनका दर्द हमारे दिल में आज भी है और कल भी था, दिल में उनके फांस जरा सी कल भी थी और आज भी है।
0: ओहो आज भी है जी।
1: आखिरी शेर की झूठे चोर उचक्के पागल लंपट मायावी गुंडे, झूठे चोर उचक्के पागल लंपट मायावी गुंडे, इनकी संख्या अच्छी खासी कल भी थी
0: और आज भी है। बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन भाई वाह क्या कह दिया क्या कह दिया। शानदार शानदार राहुल भाई थैंक यू सो मच। तो अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: जी शुक्रिया भैया। मैं एक गजल परवीन शाकिर साहिबा ने लिखी थी जो उस्मान मीर साहब ने गाई है
0: जी,
1: और भी कई सारे गजल गायकों ने गाई है। तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पर एहसान हवा करती है।
0: वाह क्या बात है क्या बात है। पहले के ही कुछ अल्फाज बड़े खूबसूरत है इस गजल के। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: ये हमारे सुनने वालों को।
1: कि मैं कोशिश करता हूं। एक मतलब एक दो शेर यूं है कि
0: इरशाद
1: रफ्ता रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे,
0: जी।
1: रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे, हो रहे हैं ऐब सब जाहिर मेरे,
0: ओहो
1: रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे, हो रहे हैं ऐब सब जाहिर मेरे। शेर यूं है, मेरे दुख ने एक दिन मुझसे कहा,
0: जी
1: मेरे दुख ने एक दिन मुझसे कहा, मेरा दुख भी लिख कभी शायर मेरे,
0: क्या बात है।
1: मेरा दुख भी लिख कभी शायर मेरे। कहते हैं इमरोज मेरी अमृता,
0: जी
1: कहते हैं इमरोज मेरी अमृता, अमृता कहती है कि साहिर मेरे,
0: ओहो
1: अमृता कहती है कि साहिर मेरे। शेर यूं है कि कब तलक आखिर रहेगा कैद में, कब तलक आखिर रहेगा कैद में, तोड़ पिंजरा और उड़ ताईर मेरे,
0: जी
1: तोड़ पिंजरा और उड़ ताईर मेरे। आखिरी शेर, दुश्मनी का क्यों करूं अफसोस मैं,
0: जी
1: दुश्मनी का क्यों करूं अफसोस मैं, दोस्त सारे हो गए शातिर मेरे।
0: ओहो क्या बात है,
1: जी
0: बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है, दोस्त हो गए सभी शातिर मेरे।
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। राहुल भाई बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी गजलें हमने सुनी, आपके पसंदीदा गायकों की गजलें हमें सुनी, हमने आपसे बातचीत करी।
1: जी जी भैया,
0: हमारे सुनने वालों को भी आपसे बातचीत करके, आपकी बातें सुनकर, आपकी गजलें सुनकर बहुत मजा आया होगा।
1: बहुत अच्छा लगा भैया मुझे आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुंचने के लिए, आपके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नई नई प्रतिभाओं को श्रोताओं से मिलवा रहे हैं। रूप आभार आपका।
0: बहुत शुक्रिया।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में. और किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो आज हमने जो विषय लिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खाद की अगर बात करें, जो हम कल्चर अपने खेतों में डालते हैं, फर्टिलाइजर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है. तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, आज हम बताने जा रहे हैं कि कल्चर खाद हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो भूसा से, पत्तियों से और गोबर से जो खाद बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं. आप और हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हम कार्यक्रम के माध्यम से साझा करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते चले आएंगे. हम कोशिश करते हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे, जो उनके लिए, उनकी खेती किसानी के लिए

बड़ी महत्वपूर्ण हो। आज हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आज किसान वहीं का वहीं है। आज हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ख़ास तौर पर उन किसान साथियों के लिए कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो परंपरागत खेती चली आ रही है उसको छोड़कर आज हम वैज्ञानिक खेती की ओर, यानी जो वैज्ञानिक ढंग से हम खेती करते हैं उसकी ओर अब हमें रुख करना होगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक जो पद्धति बताते हैं, जो समय समय पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी जो समय समय पर जानकारी देते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि उनको पता रहता है, उनको सब हालचाल पता रहता है खेती का कि हमारे इस मिट्टी में कौन सी उपजाऊ फसल है जिसको हम लगा सकते हैं, कैसे अपने बीजों का उपचार कर सकते हैं। क्योंकि हमें बीजों का उपचार करना नहीं आता है, हम क्या करते हैं, रखा रखाया जो बीज रहता है, बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं, खासतौर पर झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी ये करते हैं कि जो भी पुराना बीज होता है उसको वो रखते हैं और उसको ही अपने खेतों में लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका हमें उपचार करके देखना चाहिए। उपचार का मतलब होता है कि आपको उस बीज को कुछ दाने हमें भिगोना चाहिए, यदि 70% से कम दाने अंकुरित होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये बीज हमें अपने खेतों में नहीं लगाना है, क्योंकि ये बीज हमारे खेती के लिए सही नहीं है। आप और हम जानते हैं कि महंगाई के इस जमाने में खेती करना कितना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में शासन की योजना के साथ साथ कृषि विभाग की मदद के साथ साथ यदि हम खेती किसानी करें तो हमारे आने वाले समय में हम अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, आय तो ठीक है हम दुगनी कर सकते हैं, हम अपने जो खेतों में जो गेहूं या कोई भी अन्य फसलें जो उगाते हैं उसका हम डायरेक्टली सीधा हम मंडी में बेच आते हैं। क्या साथियों और हमारे किसान साथियों, आपने कभी ये सोचा है कि इसको रोक के रखें और इसका जो बाजार में आज चीज़ें बिकती हैं, खासतौर पर अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की बरी बहुत पसंद लोग करते हैं, उसको बनाते हैं, और देखा जाए यदि उसकी पैकेजिंग कर बरी बनाकर हम बाजार में मार्केट में यदि उसको बेचा जाए तो आज हमारी जो फसल जो कम कीमत उसकी लगाई जाती है वो हमें दुगनी या तिगनी कीमत में वो हम अपने फसलों को बेच सकते हैं पैकेजिंग कर। दूसरा, मक्का का भी हम पैकेजिंग कर आटा बनाकर उसका हम बेच सकते हैं, गेहूं का आटा बनाकर हम बेच सकते हैं, और भी फसलें हैं जैसे धान की अगर बात करें तो धान की भी हम जो फसल करते हैं उसका चावल डायरेक्टली हम मंडी में देकर चले जाते हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा है कि इस धान की जो फसल हम लेकर आते हैं उसको थोड़ा रोक कर रखें, उसको चावल बनाकर बढ़िया अच्छी तरीके से पैकेजिंग कर और उसको बाजार में बेचेंगे तो हमें जो रेट आज कम मिलता है उस रेट की बढ़ोतरी होगी और हम अपनी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। दूसरी और तीसरी बात ये बताना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी सब्जी भी अपने खेतों में लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा समय है और तैयारी भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं, और उस तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी क्या करें, पानी को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर देखा जाए जहां पर पथरीला इलाका है, जहां पर देखा जाए पानी नहीं रुकता है अब खेतों में, वहां पर मेड़बंधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे किसान साथियों को। दूसरी, जो हमारे पुराने तालाब या बावरियाँ या कुआं उनको रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रिचार्ज करने का ये मतलब है कि आप उसकी साफ सफाई करें, उसका गहरीकरण करें और साथ में आने वाले बरसात के दिनों में उसको जो बरसात का पानी है उस तालाब या कुआं में हम डाल सकते हैं, जिससे आने वाली फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। और ये खास बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे थे। हम समय समय पर मौसम की जानकारी भी देते हैं। अब जो मौसम विभाग कहता है कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावनाएं को ध्यान में रखते हुए किसान साथी जो सब्जियों में अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में बहुत सारे जो कीड़े या फिर कीट व्याधियां जो रहती हैं उनमें लगते हैं और जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है,
तो ऐसे में किसान साथी ध्यान रखें, उनको निगरानी करते रहें समय समय पर। दूसरी बात कि यदि आपको लगता है कि हमारे सब्जियों में कीट व्याधियों का प्रकोप देखा जा रहा है, तत्काल नज़दीकी हमारे कृषि विभाग में जाकर या केवीके में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि तोमर साहब ने बताया था कि हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, उनको पता रहता है कि अब इस मौसम में कौन से कीट व्याधि हमारे फसलों में लग सकते हैं। तो ये बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात जो बताना चाहते हैं कि जो मौसम आने वाला मौसम है, वो अगर पशुओं की खास तौर पर बात करें तो अभी से तैयारी कर कर रखें कि पशु जहाँ पर हम लोग बांधते हैं वो छत सही है कि नहीं है। आप यदि छत सही नहीं है, बरसात के मौसम में गिरने की संभावना यदि आपको लगती है, तो उसकी मरम्मत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और तीसरी बात और चौथी बात बताना चाहते हैं कि पशुओं की, अगर पशुधन की बात करें, क्योंकि पशुधन ही हमारा सबसे बड़ा धन है खास तौर पर किसान साथियों का, और यदि पशुओं की हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमें जायज सी बात है कि हमें इसका परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे हमें हमारे किसान साथी, अब चूंकि आधुनिकीकरण है, ट्रैक्टर से लोग बखराई करते हैं, जुताई करते हैं, और कई कई जगह देखा जाए, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी हल और बखर से लोग खेती करते हैं, और उन यदि हम पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे, बैलों का खासतौर पर गायों का या भैंसों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको समय समय पर पानी पिलाते रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और उनको मिश्रित जो जो घास फूस रहती है खासतौर पर हरा चारा उनको देते रहें, 25 किलोग्राम प्रतिदिन हमें अपने अपने जानवरों को हरा चारा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ साथ में इसके साथ जो मिनरल मिक्सचर आता है खासतौर पर जो जानवरों के लिए आता है, उनको भी खाने के साथ साथ मिनरल मिक्सचर भी हमारे किसान साथी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो वो यदि हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे तो हमें स्वस्थ हमारी खेती होगी, अच्छी खेती होगी, और हमें मन भी लगेगा कि हमारे जानवर अच्छे हैं। दुधारू पशुओं में खासतौर पर गर्मियों में दूध कम हो जाता है, तो ऐसे में उनके खान पीन के साथ साथ नमक की मात्रा भी देते रहें, सब्जियों का ध्यान रखें, और अभी से तैयारी करें, बीजों का चयन करके रखें, क्योंकि बरसात अब बस कुछ दिन बचे हैं कि बरसात आने वाली है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये तो हमने अपने ओर से यानी रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से आप लोगों को जानकारी साझा की है। अब वह हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं कि शुरुआत में मैंने बताया था कि हम अपने किसान साथियों को विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जो कल्चर खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट तैयार किया जाता है पत्तियों से, भूसे से, धान के भूसे से जो कंपोस्ट बनाते हैं, और ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर मक्का की खेती जाना होती है तो मक्का के जो डंठल निकलते हैं उससे हम कैसे कंपोस्ट, और जो घर की सब्जियाँ सड़ी गली सब्जियाँ रहती हैं उससे कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, इस पर हाँ ये चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा सुनने से पहले हम एक गीत सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो आपकी बात है।

0: नमस्कार, आज किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे जो धान का और भूसा, कोई भी भूसा का कैसा कंपोस्ट बना सकते, एक समृद्ध जो कंपोस्ट बोलता है उसको, वो बनाने का विधि हम आपको बताएंगे। जैसा हमारा जो नॉर्थ इंडिया में जो भूसा, पर्टिकुलरली जो हमारा धान का भूसा होता है वो जला देते हैं। जलाने का कारण यही है, जो उसको लेबर बहुत लगता है खेत से उसको हटाने के लिए, तो जैसे बर्निंग कर देंगे, जला देंगे, उसमें आसान से वो खेत से निकल जाता है। और अगले क्रॉप के लिए जैसा गेहूँ लगाना है, गेहूँ का और धान का जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी के कारण में जो फार्मर्स, जो हमारा चाषी भाई है, सारा जो भूसा है जला के ये देते। जैसे हमारा देश में फर्टिलाइजर का प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, इसका कारण है जो फर्टिलाइजर डीएपी बनता है, डीएपी हमारा देश में बनता नहीं है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो बाहर से लेके आते हैं हम, बाहर से जो लेने के कारण में उसको कॉस्ट बढ़ जाता है। और हमारा देश में जितना भी जो सॉयल है, जो सॉयल का हमेशा है जो नाइट्रोजन का मात्रा हमेशा कम होता है, जो पोर ही होता है, और फॉस्फोरस का मात्रा मीडियम से लो होता है, और पोटाशियम थोड़ा मीडियम से हाई होता है, लेकिन पोटाशियम बहुत यूज कम होता है। हमारा कृषक भाई मोस्टली वो जो यूरिया यूज करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के हिसाब से, बाकी जो फास्फोरस और पोटाशियम यूज करते नहीं। इसका कारण में जो इम्बैलेंस हमारा फर्टिलाइजर यूज होता है, इम्बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब है जो एक बैलेंस खाना हमने पौधा को देना चाहिए था वो नहीं देते हैं, उसका जगह हमने खाली यूरिया जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उसी को देते हैं, फॉस्फोरस और पोटाशियम नहीं देते हैं। हमारा जो FYM जिसको बोलता है फार्म यार्ड मैन्योर, वो फार्म मैन्योर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो है जो गाय का जो काउडंग बोलता है, और बाकी जो यूरिन उसको बना के फिर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट मतलब खाद बनता है, जो उसका नाम है फार्म यार्ड मैन्योर, और उसको ऐसे भी हमारा सीधा सीधा खाद बोलता है खाद, लेकिन ये खाद में मात्रा बहुत कम होता है। नाइट्रोजन का मात्रा 0.5% होता है, और फॉस्फोरस का 0.25, और पोटाशियम 0.5% हमारा उसमें मात्रा होता है। देसी खाद जिसको हमने जो कंपेयर करते हैं, जो खाद ही बोलते हैं कॉमनली, उसको खाद का मात्रा बहुत कम होता है। तो इसका कारण क्या है ना, जो एक हेक्टर में उसको कम से कम 15 से 20 टन पर हेक्टर देना पड़ता है, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ जो हमारा खाद इतना मात्रा में हमारा देश में अवेलेबल नहीं है। इसका ऑल्टरनेट हमने एक दूसरा जो खाद बनाने का विधि बनाया, उसका नाम है एनरिच कंपोस्ट, और हिंदी में उसको बोलेंगे समृद्ध खाद बनाने का तरीका। वो समृद्ध खाद बनाने के लिए हम दो चीज उसको जरूरी है, जैसा नॉर्मल खाद के लिए हमारा वो गाय का जो हमारा डांग है वो लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमने लेते हैं कोई भी भूसा ले सकते हैं, तो उसको साथ जो देना है रॉक फॉस्फेट और माइका। रॉक फॉस्फेट जो है ये सभी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो फॉस्फोरस के लिए होता है, DAP, SSP, ये बनाने का लिए जो रॉ मटेरियल जो मिनिमम ये चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए वो है रॉक फॉस्फेट, लेकिन जो हमारा इंडियन रॉक फॉस्फेट उसका फॉस्फोरस कंटेंट बहुत कम है, 20% से नीचे है। इसका कारण में जो खाद बनाने का जो कंपनी है वो नॉर्मली ये वाला रॉक फॉस्फेट यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये रॉक फॉस्फेट नाम एसिड सॉइल जहाँ पर जो pH मात्रा बहुत कम है उस सॉइल के लिए तो बहुत अच्छा है, जो नॉर्मली उसको सॉल्युबल हो जाता है और फिर जो पौधा उसको फॉस्फोरस ले लेता है। ये समृद्ध कंपोस्ट के लिए 1 टन 1000 kg और 1 टन कंपोस्ट बनाने के लिए हमने ये रखा है जो उसका कम से कम बायोडिग्रेडेबल जो भी होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब है जो भी जैविक पत्ता और भूसा वो कंपोस्ट बन जाता है उसको बोलता है जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल, वो हमने कंपोस्ट का थ्रू से डिकम्पोज करके अल्टीमेटली खाद बनाते हैं। तो इसके लिए 1 टन मटेरियल बनाने के लिए एक टन भूसा रखेंगे, 200 केजी उसको रॉक फॉस्फेट डालेंगे, 200 केजी माइका डालेंगे और थोड़ा सा यूरिया उसको 1% के हिसाब से, जैसा 50 से 100 केजी यूरिया भी डालेंगे तो उसको नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा, फास्फोरस का मात्रा भी बढ़ जाएगा, पोटेशियम मात्रा भी बढ़ जाएगा। इसका फायदा क्या है, जो हमने अल्टीमेटली जो एक कॉम्पोस्ट बनाया है वो कॉम्पोस्ट में नाइट्रोजन का मात्रा 1 से 2% बढ़ जाता है, और जो एफवाइन जो देसी खाद है उसमें मात्रा है 0.5%, 0.5% नाइट्रोजन मात्रा है और 0.25% फॉस्फोरस का मात्रा है और पोटाशियम 0.5%, जो कि इस पद्धति जो अगर करेंगे समृद्ध पद्धति से करेंगे तो उसको मात्रा बढ़ जाएगा 1 से 2% नाइट्रोजन और 5 से 7% फॉस्फोरस जो P2O5 के हिसाब से माना जाता है, और 2 से 3% पोटाशियम बढ़ जाता है। इसका कारण में जहाँ पर जो कृषक भाइयों के लिए 20 टन कंपोस्ट जरूरी था और खाद जरूरी था, इस मटेरियल अगर यूज करेंगे तो उसको जगह 3 से 5 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टन मटेरियल अगर यूज करेंगे एक हेक्टर के लिए, वो पूरा काम 20 टन का और 25 टन का हिसाब से जो देसी खाद डालेंगे उसको बराबर है। और भी एक इम्पॉर्टेंट जो जरूरी है वो है कार्बन। जो कार्बन है ऐसा है जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का जान है। अगर इसको मात्रा बढ़ जाता है तो फिर सभी जो सॉयल हेल्थ, पूरा सॉयल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। इसी कारण में सॉयल का जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना जरूरी है, और ये जो उत्कृष्ट खाद है इससे जो कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा, और कात्रा अगर ऑर्गेनिक मैटर वो बढ़ गया तो उसमें क्या होता है ना, जो पानी उसका अंदर ज़्यादा टाइम अंदर रहेगा, मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा टाइम रहेगा तो वो नमी रहेगा, और उसका कारण में जो प्लांट जो पौधा उसको बहुत लंबा समय तक जो न्यूट्रिएंट उसका जरूरी है वो सप्लाई देगा। तो इसका फायदा है जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने के साथ साथ पूरा सॉयल हेल्थ, उसका जो पीपीएस का जो कंडीशन है पीएस और इसी और ऑर्गेनिक मैटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलता है, जो पानी का धारण करने का जो क्षमता वो भी बढ़ जाता है, तो इसका कारण में ओवरऑल सॉयल हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। साथ के साथ हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर जिसको बहुत कॉस्टली है आजकल, दिन दिन हर दिन इसको प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको भी हमने मात्रा कम करके एक ऑर्गेनिक और जैविक खाद यूज करके जैविक खेती कर सकते हैं। ये जो पद्धति हमने अभी बताया, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो ये आईआरआई जो मृदा विज्ञान शाखा है जो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नाम पर जानते हैं, और मृदा विज्ञान संस्था, ये डिवीजन में आप संपर्क करके कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने पूरा विधि जो चाशी भाई को बताएंगे, इसके लिए हमारा साथ संपर्क कर कीजिए, और आगे कैसा कैसा बनाना है इसको ये आपको जानकारी देंगे। इसके साथ एक हमारा और इम्पोर्टेंट जो खाद है उसको बोलता है भर्मी कंपोस्टिंग, जो केचुआ का खाद बोलता है, वो उसका तरीका ये है। जो भर्मी कंपोस्टिंग का जो कंपोस्टिंग है ये भी एक टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग, इसको भर्मी कंपोस्टिंग मतलब है इसको केचुआ यूज करना है। जो कंपोस्ट का बनाने का टाइम है केचुआ डालते हैं, केचुआ अपना खाद खाना के लिए वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अपना डिकम्पोज जल्दी जल्दी करता है, जल्दी का करने के कारण में जो ये पद्धति है ये बहुत जल्दी बन जाता है, जो खाद बन जाता है बहुत कम टाइम में बन जाता है, 2 महीने में इसको खाद तैयार हो जाता है। इसका मात्रा में बहुत अच्छा है, इसका जो इम्प्रूव हो जाता है जो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट वो भी इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज केचुआ का जब खाना खाते ग्रैनुल निकाल के बाहर आते हैं उसको गीजर बोलते हैं, गीजर का अंदर से निकाल के बाहर आ जाते हैं, ये बहुत म्यूसुलेजिनस होता है। जैसे हमने खाद खेत में डालेंगे उसको अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और कोई भी जो कचरा है जो किचन का हमारा जितना भी वेजिटेबल का सब्जी का उसका और धान का भूसा का कोई भी जो कचरा है उसको भी यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ इसको केचुआ का एक ये बनाने का तरीका ऐसा है, एक का हमने कंपोस्ट का जो पीट बोलता है, कंपोस्ट का एक ट्रेंस बना के, जैसा 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, जैसा 2 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर उसको डेप, ऐसा एक ट्रेंस बनाना है। ट्रेंस बनाने से पहले, बनाने के बाद उसको नीचे सबसे पहले वो हमने कोई ईंट का टुकड़ा उसको जमीन में डालते और फिर एक सॉइल का लेयर डालते जो लोमी सॉइल होना जरूरी है, फिर हमने केचुआ डालते इस 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के लिए 600 जो स्पीसीज केचुआ का स्पीसीज है, प्रजाति है, वो डालते हैं। जो केचुआ जिस लोकेलिटी में मिलता है वही केचुआ डालेंगे तो ये जो खाद बनने में जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ऐसा जो सबसे जो बढ़िया जो हमारा केचुआ का प्रजाति है वो है आइसिना फोएटिडा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा इंडिया में और इसी को ज़्यादा यूज होता है। तो एक जो ट्रेंस हम बनाते हैं 2 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का, उसके लिए 100 केचुआ बहुत, उसके लिए हमने एक लेयर का जो भूसा डालते हैं, फिर एक लेयर का भूसा डालने के बाद थोड़ा सा गोबर का खाद उसमें डालते हैं, फिर एक लेयर उसको भूसा डालते हैं, ऐसा ऐसा करके 1 मीटर हाइट जो हमने डेप आए गिरा है उसको हमने लेयर वाइज कंपोस्टिंग बनाते हैं और केचुआ सबसे पहले नीचे डालते हैं, फिर उसको ऑप्टिमम जो मॉइस्चर डालना है, जो पानी डालते हैं, पानी डालने के कारण ये है जो उसमें नमी होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो वो केचुआ भाग जाएगा वहाँ से, इसीलिए 50 से 60% मॉइस्चर होना जरूरी है और जो पीएच का मात्रा भी वो 7 के आसपास होना चाहिए, उसमें 7 के आसपास 6 से 7 तक होगा तो वो सबसे बढ़िया है, उसके लिए हमने पीएच का मेंटेन करना जरूरी है और ज़्यादा टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होता, तापमात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसका नाम वर्मी कंपोस्ट बोलता है। और इसका फायदा ये है जो सबसे कम टाइम में खाद तैयार हो जाता है और जैविक खाद के लिए बहुत जरूरी है, जो कम टाइम में कैसा कैसा हमने उसको खाद बनाने का तरीका कर सकते हैं। तो मेरा आवेदन है जो हमारा जो किशन भाई को सबको ये जैविक खाद बनाने का अपना अपना तरीका आप फॉलो कीजिए और इसके कारण में आपको जो जमीन का जो मात्रा खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको फिर से दोबारा लौट के आएगा और अच्छा फसल का उत्पादन देगा।
1: तो अभी आपने जाना भूमि सुधार के लिए क्या भूमिका है वर्मी कल्चर की और आप किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: कई बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपको खेती किसानी में कोई समस्या यदि आती है तो आप केबीके में जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर वैज्ञानिक हमारे उपस्थित रहते हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तोमर साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम।
4: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, साथ ही साथ यहाँ खेती करने वाले ज्यादातर लोग हैं और छोटी जोत है, मतलब जमीन भी कम है इनके पास
3: जी।
4: और अभी जैसे आज अपन बात कर रहे हैं, सामान्यतः यहाँ पर जो मानसून की आवक है
3: जी,
4: वो 10 से 15 जून के आसपास या 20 जून तक मानसून आ जाता है, मतलब बारिश शुरू हो जाती है
3: जी।
4: तो किसान भाइयों को एक सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हर बार हम ये देखते हैं कि किसान भाई जब मौसम जैसी बारिश का आता है
3: जी,
4: तो वो बीज के लिए बाजार की तरफ भागते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: और एक बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें बीज वाले वो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: तो किसान भाइयों को मैं एक पहली सलाह ये देता हूँ कि पिछले साल उन्होंने जो भी बीज बोया है
3: जी सर,
4: खासकर सोयाबीन का, उड़द का, मूंग का, गेहूं का, चने का जो बोते हैं
3: जी सर,
4: यदि उनके यहाँ वो बीज अच्छी तरीके से पका है
3: जी,
4: और उसकी उत्पादन अच्छा मिला है
3: जी,
4: तो ये मानते हुए कि ये बीज आपके इस क्षेत्र के लिए अनुकूल है
3: जी,
4: और यदि आप इस बीज को उपयोग करेंगे
3: जी,
4: तो भी आपके पास फसल उतनी ही पकेगी जितनी की आप अच्छी अपेक्षा करते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: मतलब कई बार ये होता है कि वो जो बाजार से बीज लेके आते हैं वो बीज उतना अच्छा नहीं मिलता।
3: बिल्कुल सर।
4: जिससे कि उनकी उपज अच्छी मिल पाए, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां आती हैं।
3: बिल्कुल।
4: और इन प्रजातियों में कई क्षेत्र वाइज होता है कि जैसे क्षेत्र के लिए वो है कि नहीं
3: जी,
4: अधिसूचित है कि नहीं
3: जी,
4: तो इसमें क्या होता है कि कई बार ठगे जाते हैं।
3: बिल्कुल सर।
4: तो किसान भाई एक तो ये देख रहे हैं, दूसरा जो बीज वो बोएंगे
5: जी,
4: उस बीज को यदि अंकुरण उनको देखना है।
5: बिल्कुल सर,
4: अंकुरण का मतलब होता है कि यदि हमने 100 दाने लेके और बोए हैं
5: जी,
4: तो उसमें से यदि 70-80 दाने उग रहे हैं,
5: बिल्कुल सर,
4: इसका मतलब ये कि हमारा बीज बोने लायक है।
5: बिल्कुल सर,
4: इसको अंकुरण को देख लें
5: जी सर।
4: और दूसरा, जल्दी बिल्कुल भी बोने की में नहीं करें,
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि सोयाबीन की खासकर जो फसल होती है वो थोड़ी सी संवेदनशील होती है
5: जी सर।
4: और कई बार क्या होता है कि थोड़ा भी पानी बरस गया और हमने बोनी कर दी, उसके बाद पानी नहीं आया
5: जी,
4: तो बीज खराब हो जाता है।
5: बिल्कुल सर,
4: तो ये सब चीज सोयाबीन में भी, मक्का में भी, सब पे लागू होगी।
5: बिल्कुल,
4: तो बीज की व्यवस्था वो शीघ्र करके रख लें।
5: बिल्कुल,
4: खाद की व्यवस्था करके रख लें।
5: बिल्कुल,
4: मतलब आदान को लेके रखने का ये सबसे उचित समय है।
5: बिल्कुल,
4: और कम से कम 2 से 3 इंच बारिश
5: जी,
4: मतलब जमीन में 3 से 4 इंच गहराई तक उंगलियों, जो अपन हाथ से भी अपन देखें
5: जी,
4: 3-4 उंगलियों के बराबर गहराई जब तक हो जाए।
5: बिल्कुल,
4: और उसके बाद में आजकल एक बोनी की विधि होती है जिसको कहते हैं मेड़ कूड़ विधि
5: जी,
4: मतलब जिसमें थोड़ी सी मेड़ बन जाती है और बीच में नाली बन जाती है।
5: बिल्कुल सर,
4: वो इसलिए किया जाता है कि यदि हम ऐसी फसल बो रहे हैं जिसको मान लो पानी कम पड़ा
5: जी,
4: तो वो जो नाली में पानी भरा रहेगा
5: जी सर,
4: और पानी ज्यादा आता है तो उसी नाली से पानी बाहर निकल जाता है।
5: बिल्कुल सर,
4: तो ये इसका अटैचमेंट ट्रैक्टरों में आसानी से हो सकता है
5: जी,
4: यदि कोई किसान भाई जो हमारे आसपास के

0: क्षेत्र में हैं वो चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर यहाँ पर देख भी सकते हैं और यहाँ से हमसे सलाह लेके वो हम बता देंगे किसी भी लोहार को
1: जी।
0: तो जो उनके पास सीड ड्रिल है बोनिंग मशीन है
1: जी,
0: उसमें वो व्यवस्था हो सकती है।
1: बिल्कुल सर।
0: दूसरी बात ये है कि खाद बोने में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं
1: जी सर,
0: उन फसलों को हम बोते समय एनपीके से खाद बोए
1: जी,
0: मतलब उसमें खाद आगे और पीछे बीज इस तरह की व्यवस्था होती है सीड ड्रिल में
1: जी सर।
0: और जितनी भी दाल वाली फसलें हैं
1: जी,
0: और खासकर सोयाबीन है या दाल वाली उड़द मूंग है इस फसलों में, इसमें डीएपी डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: और यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 20 दिन के बाद ही करें
1: जी,
0: मतलब अभी बोने के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई किसान भाई नहीं समझते हैं कि वो यदि खाद डालते हैं तो उसका प्रभाव फसल को नहीं मिल पाता।
1: बिल्कुल सर।
0: तो ये दो तीन चीजें हैं वो जो अभी यदि करेंगे
1: जी,
0: तो किसानों के लिए उत्तम होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में स्थित है
1: जी,
0: और ये एक तरह से किसानों की विद्यालय है, पढ़ने की जगह है
1: जी।
0: और किसी भी किसान को जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है
1: जी,
0: कि उसे क्या करना है
1: जी सर,
0: कौन सा बीज अच्छा हो सकता है, या उनके पास कोई समस्या आती है, कीड़े बीमारी आते हैं
1: जी,
0: तो वो आकर यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: हमारा दायित्व तो उन सब की समझाना है
1: जी,
0: बताना है, और आवश्यकता पड़ने पर किसान के खेत में जाके भी हम उसको तकनीकी ज्ञान देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये यदि आप करेंगे तो मतलब आपकी फसल भी अच्छी होगी और मतलब ज्यादा लाभ होगा, तो आप केवीके से संपर्क में बने रहें।
2: सर यहाँ पर एक सवाल आता है, चूंकि हमने गांव पे भ्रमण किया है और बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि हमें उचित बीज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती, हम दूसरी जगह जाते हैं वहां पर कम पैसों में हमें बीज उपलब्ध हो जाता है, तो सर क्या कारण है? और हमारे किसान साथी, हमारा दूसरा सवाल कि हमारे किसान साथी कौन सा बीजों का चयन करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके सर।
0: अब जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पर खरीफ में कई सारी फसलें बोई जाती हैं
1: जी सर,
0: मुख्य रूप से मक्का है
1: जी,
0: कपास है
1: जी,
0: सोयाबीन
1: जी,
0: जो कि तीन बड़े क्षेत्रों में बोई जाती हैं
1: जी सर।
0: अब इसमें से क्या होता है कि कपास का जो बीज है वो संकर बीज आता है।
1: बिल्कुल सर।
0: और संकर बीज में भी यहाँ पर डीसेज 32 के नाम से एक बीज आता है जो कि लंबे समय तक रहता है और उसकी रेशे की लंबाई भी काफी रहती है
1: जी।
0: वो बीज अच्छा होता है और मतलब उसको बोने से इनको फायदा यूं मिलता है कि बाजार में जो सामान्य कपास है
1: जी,
0: उससे इसका भाव करीब 2 से 3 हजार रूपये ज्यादा रहता है।
1: बिल्कुल सर।
0: क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है
1: जी,
0: मतलब हमारे बनवासी भाई हैं, सब लोग हैं
1: जी,
0: तो इनके पास श्रम शक्ति बहुत है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो ये लोग कपास पैदा करके इससे अच्छा फायदा ले रहे हैं,
1: ले रहे हैं,
0: तो इनको ये ले सकते हैं। परंतु ये चूंकि संकर बीज है और इस बीज को हमको बार बार बदलना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सर।
0: और ये दो देखिए, बीज मिलने के दो स्रोत हैं
1: जी,
0: एक तो सरकारी बीज गोदाम होते हैं और प्राइवेट है।
1: बिल्कुल सर।
0: हमको पिछले कई सालों से जब हम खेती करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि कौन सा बीज हमारे कौन सी कंपनियों के बीज हमारे लिए ज्यादा अधिक उपयुक्त है
1: जी सर।
0: अब मैं चूंकि कंपनियों का इसलिए नहीं नाम लूंगा क्योंकि कंपनियों का नाम लेना मेरे लिए वर्जित है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो वो हम कपास का बीज ले सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा मक्का के बीज भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, संकर भी होते हैं और एक कंपोजिट वेरायटी भी होती है। तो यदि हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि कंपोजिट वेरायटी में कुछ वेरायटी है जो कि उपलब्ध हो सकती है
1: जी सर।
0: और अब आपको जब भी बीज हम खरीदते हैं जहां से भी लेते हैं
1: जी सर,
0: चाहे सोयाबीन का हो या कोई भी हो,
1: बिल्कुल सर,
0: उस व्यक्ति से रसीद लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता ये कि यदि हमारे पास बीज खराब निकल गया
1: जी सर,
0: तो बीज के हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तब कुछ नहीं कर पाते यदि आपको रसीद
1: नहीं है। बिल्कुल सर।
0: तो दूसरा ये है कि हमारा जो बहुत भरोसे का आदमी है,
1: बिल्कुल सर,
0: जो व्यक्ति हमारे भरोसे पे खड़ा उतरता है, हमको पता है कि ये व्यक्ति काफी समय से काम कर रहा है
1: जी,
0: उससे ले। दूसरा, यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई जानकारी संबंध में चाहिए
1: जी सर,
0: तो आके कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: छुट्टी के दिन भी यदि कोई आएगा तो हमारे यहाँ केंद्र खुला रहता है
1: जी सर,
0: सब लोग यहीं रहते हैं
1: जी सर।
0: तो हम उनको अपनी उनकी जानकारी के हिसाब से बता देंगे कि कौन कौन सी वैरायटी, जैसे अभी सोयाबीन की वैरायटी 335 है
1: जी सर,
0: जवाहर 335 है
1: जी,
0: एक JS 2098 है
1: जी सर,
0: या अभी एक राज सोया 18 आई है
1: जी सर,
0: जो नई नई जातियां आती रहती है
1: जी सर,
0: तो वो हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त है उसके बारे में हम जानकारी उनको दे दें।
1: बिल्कुल सर।
0: और वो यहाँ से बीज ले जा सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यदि भारत के सभी किसान एक छोटी सी बात समझ जाएं
1: जी सर,
0: कि उन्हें यदि इस साल 40 किलो कोई बीज मिल गया है
1: जी सर,
0: वो जिसका उत्पादन यदि उन्होंने 4-5 क्विंटल कर लिया है, 10 क्विंटल कर लिया है
1: जी सर,
0: और उसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखना पड़ती है कि बीज बोने के बाद में फसल में निरंतर निगरानी रखें।
1: बिल्कुल सर।
0: और निगरानी रखने के बाद ये देख लें कि उसमें जो दूसरे प्रजाति के पौधे हैं वो देखने से पता चल जाता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो उन पौधों को निकाल के अलग कर दें और उस बीज को यदि आपके अच्छा पका है तो ऐसे बीज को आप 3 से 4 साल तक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो झाबुआ जिले के यदि सभी गांव के लोग यदि अपनाने लगे इन सब चीजों को
1: जी सर,
0: तो 1 साल में ही करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसे को बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सर।
0: किसान को ये एक गलत फहमी है कि वो जो दुकान पे मिल रहा है या चमकने वाली पन्नी में जो बीज मिल रहा है वो अच्छा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है
1: जी।
0: किसान अपने यहाँ स्वयं का बीज पैदा कर सकता है, या फिर कम मात्रा में बीज लाए और उस बीज को अच्छा है तो उसको पैदा करके बढ़ाए और उस बीज का उपयोग लगातार आने वाली पूजा कर सकता है। उसका उत्पादन भी कम होगा तो हम लोग केंद्र में बैठे हैं कि हमारी जवाबदारी है कि ऐसी हम जानकारी उनको दें। तो मुझे लगता है कि ये आपका जो रेडियो है इसके थ्रू यदि इसी चीज पहुंचेगी
1: जी सर,
0: और हम जो संपर्क करेंगे तो उनको निश्चित ही लाभ होगा ये काम करना।
2: सर एक और सवाल है, यहाँ की हमने मिट्टी को देखा है, परखा है, जांचा है कि यहाँ पर दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है यहाँ पर, और यहाँ पर जो समस्या आती है कि सिर्फ 3 ही फसलें वो बोते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मक्का हो या कपास हो, अन्य फसलों को वो क्यों नहीं बोते हैं? सर आपका क्या कहना है इस बारे में? सर
0: देखिए क्या है कि ये तो अभी जैसे हम पूरे जब जिले की बात करते हैं
1: जी सर,
0: तो हमारे जिले में करीब 6 विकास खंड है।
1: बिल्कुल सर।
0: और यदि अलीराजपुर को भी जोड़ लिया जाए तो 12 विकास खंड, ऑलमोस्ट एक जैसी स्थिति है सभी जगह।
1: बिल्कुल सर।
0: अब इनमें जो पेटावत का क्षेत्र है या पॉकेट्स में काली देवी है, मेघनगर के आसपास है, थानला के आसपास है
1: जी सर,
0: तो जो लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं
1: जी,
0: तो वो लोग क्योंकि थोड़े समझदार हो गए, मतलब उन्होंने वो सब चीज समझ ली है
1: जी।
0: अब आधे से ज्यादा किसानों के लिए हम बात करते हैं, पूछते हैं तो आप मक्का क्यों बो रहे हो, तो उनका एक सही सोच होती है कि हम मक्का खाने के लिए बो रहे हैं
1: जी,
0: जबकि हमारी जो मिट्टी है जैसा अभी आपने कहा
1: जी
0: कि हल्की है, दुमट है, कई तरह की मिट्टी है, मिक्सचर है
1: जी।
0: मक्का इन सभी फसलों में सबसे ज्यादा भोजन लेने वाली फसल है।
1: बिल्कुल सर।
0: और हमारी जमीन सबसे कमजोर है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो यदि हम कमजोर जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल बोएंगे
1: जी सर,
0: तो निश्चित ही उसमें उत्पादन कम होगा।
1: बिल्कुल सर, क्या सही बात।
0: तो यदि इनको ये चुनाव करके कि हमको क्या चीज बाजार में पैदा करके हम बेचें जिससे हमको ज्यादा पैसा मिले
1: जी जी जी,
0: और मक्का हम बाजार से खरीद भी सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो इस तरह की यदि इनकी मानसिकता बन जाएगी, और अभी क्या हो रहा है कि सब्जियों में अभी क्या हो रहा है, सेचुरेशन की स्थिति तो नहीं है
1: जी,
0: अभी आप लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: और शुरुआत में भी क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा टमाटर का भाव उस समय 100 रुपए के आसपास है।
1: बिल्कुल सर।
0: और बीच में 2 रुपए होगा कभी, तब आप फिर न्यूज आएगी
1: जी जी सर।
0: तो मतलब ये है कि जिनके पास संसाधन है
1: जी जी जी,
0: या जिन्होंने पॉली हाउस बनाए
1: जी,
0: ये सब चीजें उनके लिए हैं कि आप ऐसे मौसम में, साल में 365 दिन होते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो 365 दिन में से हमको ये पता होना चाहिए कि कब किस किस की चीज की मांग बढ़ती है और किसकी कब उत्पादन होने से ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आप उसको समय को परिवर्तित करके
1: जी
0: उसको ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे मिट्टी की उतनी वो नहीं है दिक्कत है, लोगों में समझ के अभी उतनी नहीं है, अभी झाबुआ के आसपास भी लोग अभी खेती करने लगे। कुछ किसानों को मैं जानता हूँ जो कि यहाँ पे हाट में आते हैं
1: जी,
0: तो यदि आप सब्जियों की तरफ जाएंगे
1: जी
0: और 4-5-6 तरह की सब्जियां लगाना शुरू कर दें
1: जी,
0: और चूंकि हमारे पास श्रम शक्ति भी ज्यादा है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो वो लोग आके हाट में खुद बैठ के बेच दें,
1: बेच सकते हैं,
0: तो मंडी में बेचने और हाट के बेचने में आपको दुगने से ज्यादा अंतर फर्क पड़ जाता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो यदि वो बेचना शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी माली हालत में सुधार हो सकता है, यदि वो 7 दिन में से 4-5 यदि 3-4 हाट भी बेच चुके
1: हैं
0: सब्जी को मौसम के अनुसार, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। तो मिट्टी नहीं, यदि वो खेती करना चाहेंगे तो किसी भी मिट्टी में या कोई भी खेती हो सकती है।
1: बिल्कुल।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक यहाँ पर विराम लेते हैं, सुनते हैं इस गीत को, इसके बाद डॉक्टर साहब से बहुत सारे हमारे सवाल हैं, उनसे भी हमें जानना है, उन सवालों के जवाब भी हमें जानना है, तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बातें।

0: सर आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा बस आखिरी सवाल है कि यहाँ पर हमारे किसान साथी चूंकि उबड़ खाबड़ जमीन है, पानी का संसाधन बहुत ही कम है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें वो कौन सी हैं जिसको वो कर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? सर
1: देखिए क्या है कि पानी तो ऐसी चीज है कि उसके बिना कोई खेती हो नहीं सकती
0: जी।
1: अब चूंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है जमीन की वो ढालू है,
0: बिल्कुल सर,
1: मतलब ऊंची नीची है, और इसमें किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं
0: जी।
1: यदि हम जाके कई बार खेतों में देखते हैं तो पता लगता है कि नीचे हमारे यहाँ देखिए धान भी बोया जाता है,
0: बिल्कुल सर,
1: मक्का भी बोई जाती है
0: जी,
1: और उड़द भी बोया जाता है,
0: बिल्कुल सर।
1: तो जैसे ये उड़द है, मूंग है
0: जी,
1: है ना, ये दोनों जो फसलें हैं ये करीब 65-70 दिन में पक के तैयार हो जाती है
0: जी,
1: और इनमें पानी की आवश्यकता
0: बहुत कम होती है, बिल्कुल सर।
1: तो यदि किसी के पास पानी की कमी है
0: जी,
1: तो उड़द मूंग लगा सकता है,
0: बिल्कुल सर।
1: दूसरा ये है कि पानी के लिए हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि दो तरह का पानी होता है, एक तो भूमिगत जल,
0: बिल्कुल सर,
1: और एक सतही जल,
0: बिल्कुल सर।
1: तो जो भूमिगत जल है उसको यदि बढ़ाना है तो हमको पानी जगह जगह रोकना पड़ेगा, तो नीचे का जल बढ़ेगा
0: जी सर।
1: तो बार बार हम कई जगह देखते हैं, सब जगह कहा जाता है कि जितना वर्षा जल आ रहा है
0: जी सर,
1: उसमें से अधिक जल को कैसे भूमि के नीचे उतारा जाए,
0: बिल्कुल सर।
1: तो वो यदि आपके तालाब है, नदी नाले हैं, उन सबको जिसमें कि पूर्व पानी को तो नहीं रोका जा सकता,
0: बिल्कुल सर,
1: परंतु हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आने वाले जो समय रहेगा बरसात के बाद उस साल भर हमारे पास पानी मिलता रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो वो एक तो काम करना है अपने को, जितने पुराने कुएं हैं उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज का मतलब ये होता है कि आप उसमें पानी को डाइवर्ट करके ले जाएं
0: जी सर,
1: और उस पानी उसमें भरे,
0: बिल्कुल,
1: तो वो जो कभी पानी निकालने के लिए काम में आ रहा था वो जमीन में जल स्तर बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं
0: जी सर
1: ये हो सकते हैं। दूसरा जो फसलों की आपने बात की थी उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इस तरह की स्थिति है
0: जी,
1: उसमें एक चीज होती है कि यदि पानी कभी कम ज्यादा होता है तो हम दो तरह की फसलों को लगाते हैं
0: जी,
1: जैसे मक्का के साथ सोयाबीन है
0: जी जी जी,
1: कब मक्का के साथ कपास है
0: जी,
1: ये जो इसको कहते हैं हम लोग इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब होता अंतर्वर्ती फसल
0: जी,
1: ये इसलिए चुनाव किया जाता है कि जिसमें से एक फसल की पानी की मांग अधिक होती है एक की कम होती है
0: जी सर,
1: एक की जड़ों की गहराई ज्यादा होती है एक की जड़ों की गहराई कम होती है
0: जी,
1: ये इसलिए चुनाव किया जाता है कि मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में पानी बहुत कम बरसता है
0: जी,
1: तो एक फसल पक जाए,
0: पक जाए,
1: और यदि पानी ठीक बरसता है या ज्यादा बरसता है तो दोनों फसल पक जाए,
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो इंटरक्रॉपिंग होती है ना वो करना चाहिए, और झाबुआ जिले में चूंकि अभी बेलों से खेती हो रही है
0: जी,
1: बहुत सारे किसान अभी करते हैं
0: जी,
1: तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप जितनी अंतर्वर्ती फसलों की खेती करेंगे उतनी आपकी मतलब पानी की जो परेशानी
0: जी,
1: कम पानी ज्यादा पानी की जो स्थिति बनती है
0: जी सर,
1: उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: तो ये कर सकते हैं
0: जी।
1: साथ ही साथ अब एक ये देखिए कि आजकल तो बड़ी कई किसान क्या करते हैं कि पूरे खेत में ड्रिप लगा देते हैं,
0: ड्रिप सिंचाई,
1: और आवश्यकता पड़ने पर वो ड्रिप पर चालू कर देते हैं,
0: बिल्कुल सर।
1: यदि मान लीजिए बहुत परिस्थिति खराब हुई, अब जैसे कपास की फसल है
0: जी सर,
1: आपने उसको यदि 4-5 बीघा में लगा रखा है
0: जी सर,
1: और यदि पानी की स्थिति खराब हुई
0: जी,
1: तो फसल खराब हुई, तो आप एक बार ड्रिप ले लें और उस ड्रिप को खेत में जब आवश्यकता पड़े चला दें
0: जी सर,
1: तो आपकी फसल बच सकती है,
0: बहुत बढ़िया।
1: और झाबुआ के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सबके लिए तो सब्सिडी पर उपलब्ध है,
0: उपलब्ध है, बहुत
1: बढ़िया। वो ये रहा है कि लोगों में अभी तक ये जागरूकता ये कम है
0: जी सर,
1: कि जब हम किसी किसान कभी कार्यक्रम में जाते हैं और पूछते हैं
0: जी
1: कि आपके पास ड्रिप है या नहीं, तो कई सारे लोग कहते नहीं
0: जी जी,
1: और जब उनसे पूछते हैं कि तुमको पता है कैसे मिलती है, तो वो 99% लोगों को पता नहीं कैसे,
0: बिल्कुल सर,
1: उनको भी बताया जाए कि ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन का मतलब वो समझते नहीं,
0: बिल्कुल।
1: तो उनको हम लोग कई बार यहाँ पर जो आते हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं कि आप संबंधित विभाग है, जैसे कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है
0: जी,
1: यहाँ पर जाके अपना कागज सब ले जाएं और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, वो जिस स्कीम में आप चाहते हैं उस स्कीम आपका नाम लिख जाएगा,
0: बिल्कुल।
1: और यदि पहले आए पहले पाए में आपका नंबर आ गया इस साल तो आपको वो मिल जाएगी, नहीं तो आप घर पे बैठे रहोगे तो सॉरी कोई भी आके आपको कुछ देगा नहीं,
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये

0: जानकारी उनको पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो कि उनके लिए हितकर रहेगी और पानी का सुचारू तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
0: जी जी जी बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और जब भी आपको ऐसा लगता है कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ सकते हैं
2: जी।
0: साथ ही किसानों को भी प्रेरित करें कि वो यहाँ पर आए
2: जी, जी, जी,
0: और हम लोगों का काम उनको यहाँ ज्ञान देना है।
2: बिल्कुल सर।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पता ही नहीं चला ये समय कितने जल्दी निकल गया है। हमने विषय विशेषज्ञ को भी सुना, साथ में हमारे झाबुआ जिले के डॉक्टर तोमर साहब जो कृषि विभाग यानी KVK में पदस्थ हैं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। हम अपने बार बार किसान साथियों को ये जानकारी सुना रहे हैं कि ये जानकारी सुनकर, क्योंकि अभी तैयारी का समय है, किसान साथी थे खेतों की तैयारी करें। कंपोस्ट इसलिए बता रहे हैं कि इससे लागत कम हो और की आमदनी बढ़े। तो हमें आशा है कि इस कार्यक्रमों को सुनकर आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प लिया होगा। हम आशा करते हैं कि ये आप बातचीत आपको हम सुनाते हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और तैयारी अब करने लगे होंगे कि आगामी फसल की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब हमारे कार्यक्रम को सुनकर हमारे किसान साथी हमसे बात करते हैं और हमें फोन लगाते हैं। हम इसी कार्यक्रम को लेकर हम समय समय पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो सके, कैसे हो सकते, और इस पर हम विस्तृत चर्चा भी करते हैं। हमने वैज्ञानिकों से भी आपकी बात कराई है कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आमदनी में वृद्धि हो सके। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, लागत इतनी लगती चली जा रही है और हमारे किसान आज वहीं के वहीं हैं। हमें अब जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि अपने आय में वृद्धि करना है, आपको समृद्ध रहना है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमने डॉक्टर जो तोमर साहब हैं उनसे जब बात की है तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ के किसान सिर्फ समस्या ये आती है कि किसान बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन समस्या ये है कि वो जागरूक यहाँ के किसान नहीं है। अब हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको लगता है कि हमें खेती किसानी में समस्या आ रही है या फिर समस्या आपको अपनी जब आप बोनी करते हैं या फिर फसल लगाते हैं या फिर आपको नई किस्मों का चयन करना है तो भी समस्या आती है। बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं लेकिन वो किससे पूछें, ये समस्या आती है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये बताते हैं कि आपके शहर में झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खुल गया है। आप इसके माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। हमने बहुत सारे गांव में भ्रमण किया है, किसानों का यही कहना है कि हम झाबुआ में जो बीज लेने जाते हैं वो महंगा पड़ता है, अन्य जगह नहीं पड़ता है। तो इसकी भी हम आपको प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। जब हमने डॉक्टर तोमर साहब से बात की तो उनका ये कहना है कि किसान जागरूक नहीं है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रमाणित बीज का अगर चयन करना है तो आप कृषि विस्तार जो अधिकारी रहते हैं या कृषि विश्वविद्यालय रहते हैं या फिर केवीके है, रिसर्च सेंटर है या फिर कृषि विभाग है, वहाँ पर संबंधित अधिकारियों के पास जाकर हम अपनी बात को रख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें बीजों का चयन करना है, हम किस तरीके से अपने बीजों का चयन कर सकते हैं। खासतौर पर अब अगर बात की जाए तो हम सोचते थे, समझते थे कि यहाँ पर सिर्फ तीन ये बीज लगाए जाते हैं, तीन प्रकार के, वो भी क्या होता है कि मूंगफली तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं, हमारे किसान साथी सोयाबीन लगाते हैं, मक्का उगाते हैं और साथ साथ में कपास की खेती करते हैं। लेकिन जब हमने डॉक्टर तोमर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर खेती बहुत सारे किसान करते हैं, चाहे वो धान की हो चाहे मूंगफली की हो, लगाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में उसको बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? क्योंकि उनको पता नहीं रहता है, उनको ये समझ नहीं आती हम किस तरीके से लगाए जाएं। नई चीज़ हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं और आपको हर समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध भी कराते हैं कि हमारे किसान साथी आगामी समय में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने किसान साथियों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, परिश्रम यदि करते हैं तो उसका लाभ भी हमारे किसान साथियों को मिलना चाहिए। तो हम रेडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिन किसान साथियों के पास पानी के संसाधन कम हैं, वो कम पानी वाली फसलों का चयन कर सकता है। साथ साथ में आप बोइएगा, मिश्रित खेती करिएगा, जो उन्होंने बताया है कि आप मिश्रित खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पानी का मौसम आने वाला है, लगभग हमारे किसान साथी बीजों का चयन करके रख लें कि हमें बीज कौन सा अपने खेतों में लगाना है। जिन किसान साथियों ने बीज ले लिया है वो खाद बीज की सब व्यवस्था करके रख दें, अपने खेतों की जो गहरी जुताई है वो भी हमारे लगभग सभी किसानों ने कर ली है। जो किसान रह गए हैं वो अपने खेत की गहरी जुताई कर लें, साथ साथ में गोबर की खाद उसमें डाल दें। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि हमारे खेत समतली नहीं है तो उसको समतली भी कर सकते हैं, और ये उपयुक्त समय है जब हमारे किसान साथी तैयारी करके रखें। हम आपके साथ हैं, हम समय समय पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, वो छोटी छोटी बात आपको बताएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती हैं। आज के हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हमने सोचा कि नए खेती के बारे में, नई प्रजाति के बारे में हमारे किसान साथियों को जानकारी होनी चाहिए, और जिन किसान साथी जो इस तरीके की धान की खेती करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से बीज हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए, कौन किस बीजों की पैदावार अच्छी है, कितनी किस्में अपने धान की होती हैं, कैसे लगाई जाती है, इस पर भी हमें बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमारे किसान साथी भी सोचते हैं कि ऐसे में हमारे किसान साथी नई पद्धति और आधुनिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकें। हम डॉक्टर जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और आज हम बेहद खास कार्यक्रम में आज आपको मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ये जानकारी आपको झाबुआ जिले की होगी और इस जानकारी को उपलब्ध कराने में हमारा सहयोग कर रहे हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र झाबुआ, और ये जानकारी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 5 दिनों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान 39.2 से 40.8 व 26.2 से 28.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में मध्यम से मध्यम घने बादल रहने व पिछले 5 दिनों में वर्षा दर्ज नहीं हुई है एवं 1 जून से अब तक कुल वर्षा अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आने वाले 5 दिनों के दौरान आसमान में मध्यम घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान साथी क्या करें कि जो किसान साथी ग्रीष्मकालीन मूंग की पककर तैयार फसल की कटाई कर लें, खलिहान में वर्षा के बचाव के उपाय सहित धूप से सुखाकर गहाई कर लें, यानी उगाई कर लें उसकी, आगामी दिनों वर्षा की संभावना को देखते हुए गोबर की खाद व बर्मी कंपोस्ट की खेत में अपने डाल दें। खेत में बचे फसल अवशेष यानी नरवाई को जलाए नहीं, गहरी जुताई व खेत में कर लें, साथ साथ में मिट्टी भी मिलाएं। पककर तैयार ग्रीष्मकालीन फसलों की शीघ्रता से कटाई कर लेनी चाहिए और उसकी खेतों की साफ सफाई हमें कर लेनी चाहिए। खरीफ फसलों के तैयारी के लिए खेत तैयार करें, स्वयं के तैयार बीज की सफाई कर लें, उसके अंकुरण प्रतिशत की जांच भी कर लें और अंकुरण प्रतिशत 27% से कम होने पर नए बीज की व्यवस्था भी कर लें हमारे किसान साथी। खरीफ फसलों की खेती हेतु आवश्यक बीजों की व्यवस्था भी अभी से करके रखें और साथ साथ में खाद की भी व्यवस्था करके रखें। अब कुछ जानकारी जो कृषि विभाग से दी जा रही है वो परामर्श है, जो पककर अपनी ग्रीष्मकालीन मूंग तैयार है उसको कटाई कर लें। खलियान में वर्षा से बचाव हेतु हमें धूप में सुखाकर घाई इसकी करनी चाहिए। साथ साथ में जो फल वृक्ष हैं खास तौर पर आम में फलत बाग की सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल में कर लेनी चाहिए। पूर्व में कलकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ से निकाली गई शाखाएं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग कर दें। नया बगीचा लगाने हेतु आप उचित दूरी किए गए गड्ढे शीघ्रता से खोद लें, उसमें बालू मिट्टी और गोबर या बर्मी कंपोस्ट की खाद उसमें भर दें। अब अगर सब्जियों की बात आती है तो सब्जी में जो कीट व्याधियां लगती हैं खासतौर पर भिंडी आदि सब्जियों में रस चूसक कीट व वायरस का प्रकोप देखा जाता है, उसके रोग के नियंत्रण के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए यानी परामर्श लेनी चाहिए, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी रहते हैं उनसे परामर्श लेनी चाहिए, उनसे परामर्श लेकर हमें दवा छिड़कनी चाहिए। खासतौर पर मिर्च टमाटर बैंगन आदि में जो प्रकोप देखा जा रहा है, फल छेदक प्रकोप इल्ली को प्रकोप देखा जा रहा है, उसमें एमाडेटेक्टिन और बेंजोएट दवा 10 मिलीलीटर पंप का छिड़काव करें। कद्दू पर की शब्दों में रेड पंपकिन बीटल के रोकथाम हेतु प्रोफेनोफस दवा 3.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ साथ में ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैंगन भिंडी ग्वारफली पालक आदि की 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। सब्जियों में अनुशंसित उर्वरक की मात्रा उसमें देते रहें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जैसे मिर्च टमाटर बैंगन पालक गोभी वर्गीय कद्दू वर्गीय खरबूज तरबूज आदि की समय पर तुड़ाई कर उसमें बाजार में बेचते, साथ साथ में प्याज की खुदाई कर लें, धूप में सुखाकर भंडारित इसको कर लें। अदरक व हल्दी की खेती हेतु प्रभंग की बुवाई कर लें और बुवाई पूर्व प्रभंग डाइथेन M45 या कार्बोडाइजिन की घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबोकर उसको रख दें। बरसात की सब्जियों का रोपने के लिए इसकी तैयारी कर लें। पशुओं की अगर बात करें तो पशुओं एवं पक्षियों को तेज धूप व गर्म हवा से बचाव करें, साथ साथ में पशुओं को दिन में 3 बार ठंडा व स्वच्छ पानी पिलाएं एवं लू के लक्षण दिखने पर नमक व शक्कर का मिश्रित घोल भी पिलाएं। ग्रीष्मकालीन हरे चारे हेतु ज्वार की जरी का समय पर कटाई करें, पशुओं को खिलाएं। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन व संतुलित आहार एवं मिनरल की आपूर्ति हेतु 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर की खुराक आवश्यक है। ये जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें जो जानकारी आप भेजते रहते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जैसे बताया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं धान की उन्नत किस्मों के बारे में, बीजों का चयन किस तरीके से करना चाहिए, बीज हमें किस तरीके से लगाने चाहिए, सारी बातें होंगी। लेकिन साथियों हम लेते हैं यहाँ पर संगीतमय विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टंटा व्हील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो अपनी बात है।

0: રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપની વાતે.
1: किसान भाइयों बहनों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है. अगर इसकी खेती आप अपनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि इसकी नर्सरी आप बेहतर तरीके से तैयार करें, तभी आपको इसका अच्छा उत्पादन हासिल हो पाएगा. और इसकी नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाईएस शिवे. डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में. आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान धान की खेती से जुड़ना चाहते हैं और वो उन्हें धान की नर्सरी तैयार करनी है, तो सबसे पहले ये बता दें कि नर्सरी तैयार करने के लिए उचित समय क्या है, साथ ही साथ जगह का या फिर कहें कि मिट्टी का चुनाव वो किस प्रकार करें, बताएं इसके बारे में.
2: किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, धान जो है हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और खरीफ के मौसम में सभी प्रदेशों में उगाई जाती है. इसका जो है क्षेत्रफल लगभग, जैसा आप जानते हैं, 80-85% धान की पैदावार जो है खरीफ के मौसम में की जाती है. और इस समय आपने जो है रबी की सारी फसलें काट ली हैं, उनकी थ्रेसिंग कर ली है और उनको अपने घर में भंडारित कर लिया है या बाजार में बेच दिया है. अब इसके बाद में बात आती है कि धान की नर्सरी किस तरीके से तैयार करें और कहाँ करनी चाहिए. तो सबसे पहले जो है धान की नर्सरी उगाने के लिए उसका खेत का चुनाव करना बहुत जरूरी है. खेत का चुनाव ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत हो. तो सबसे पहले इस चीज का सुनिश्चित करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धान की नर्सरी उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. जहाँ पानी का स्रोत पास हो वहीं नर्सरी उगानी चाहिए. अब इसके बाद बात आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए. मिट्टी के लिए ये जरूरी है कि मिट्टी जहाँ उपजाऊ उर्वरता, अच्छी उर्वरता वाली मिट्टी होनी चाहिए और उसमें जो है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा होना चाहिए. यदि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसमें जो है हम गोबर की गली सड़ी खाद जरूर डालें, जिससे कि उसमें जो है पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो है हमारी जो हमारे पोषक तत्व जो हैं वो भी अच्छे ढंग से नर्सरी को मिलते हैं, धान की नर्सरी को मिलते हैं. तो सबसे पहला जरूरी जो काम है वो स्थान का चुनाव करना है. और स्थान का चुनाव करने के बाद में अब बात आती है कि नर्सरी कब लगा सकते हैं, सही समय क्या है. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी भारत में हमारे लगभग सभी प्रदेशों में धान को उगाया जाता है और देश के सभी भागों में लगभग खरीफ में उगाया जाता है. तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय है नर्सरी उगाने का. लेकिन ये बात ध्यान रखने की होती है कि नर्सरी की उम्र जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित करते हैं, तो उसकी जो है 20 से 25 दिन की नर्सरी होनी चाहिए. इससे ज्यादा उम्र की नर्सरी नहीं होनी चाहिए ताकि हमको उससे अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त हो. जैसे कि कुछ किस्में कम अवधि वाली हैं तो उनके लिए उगाने का समय जो है थोड़ा लेट भी उगा सकते हैं, और मध्यम अवधि की किस्में हैं उनको थोड़ा लेट उगा सकते हैं. लेकिन जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनको जो है मई के लास्ट में आप नर्सरी उगाने के लिए, मई के आखिरी सप्ताह से लेकर 10-15 जून तक जो है आप नर्सरी लगा सकते हैं, ताकि आपकी नर्सरी की उम्र जो है 20 से 25 दिन के बाद में मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित की जा सके. तो इस तरीके से जो है नर्सरी का लगाने का समय विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दशाओं में अलग अलग होता है और किस्मों की अवधि के ऊपर भी निर्भर करता है.
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, आपने बताया कि किस्मों का काफी महत्व होता है जब हम समय की बात करते हैं, तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर उन्हें नर्सरी तैयार करनी है तो.
2: किसान बहनों और भाइयों, किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए ये जरूरी होता है कि किस्मों का सही चुनाव किया जाए अपने क्षेत्र विशेष के लिए. तो धान के लिए भी ये जरूरी है कि आप अच्छी किस्मों का, जो अनुमोदित किस्में हैं आपके क्षेत्र के लिए, उन्हीं का चुनाव करें. और यदि आप धान की खेती जो है विभिन्न परिस्थितियों में करना चाहते हैं, कोई जल्दी लगाना चाहता है, कोई लेट से लगाना चाहता है, और कोई लंबी अवधि की किस्मों की कास्ट करना चाहता है, कोई जो है हाइब्रिड किस्म हाइब्रिड धान की खेती करना चाहता है, और बहुत से किसान भाई बहन जो हैं हमारे यहाँ जो बासमती की किस्में हैं उनको उगाना चाहते हैं, तो उन्हीं को जो है चुनें जिनके लिए आप विशेषकर उसकी खेती करना चाहते हैं और किस उद्देश्य के लिए खेती कर रहे हैं. मुख्य रूप से जो है धान की किस्मों को तीन भागों में बांटा गया है, लंबी अवधि की किस्में और मध्यम अवधि की किस्में और कम अवधि की किस्में. कम अवधि की किस्में जो हैं वो लगभग हमारी 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, जो मध्यम अवधि की किस्में हैं वो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो लगभग 130 से 150 और 160 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है, और इसके साथ साथ यदि आप कम अवधि की किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार से चुनें, उनमें से प्रमुख किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे कि आगेती किस्में 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, पीएनआर 381, पीएनआर 162, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, सहभागी धान संपदा, ये कुछ किस्में हैं जो कम अवधि की हैं, लगभग 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। लेकिन फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं को चुनें। इसके बाद आती है कि जो मध्यम अवधि की किस्में हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, उनमें कुछ प्रमुख किस्मों जो हैं वो इस प्रकार से हैं, सरजू 52, पनधान 10, पनधान 12, पनधान 16, पनधान 18, पनधान 19, आईआर 64, कोंट डोरा, सनालू, गोंत्रा, विधान वन, खांडागिरी, महामाया एवं नवीन, ये आदि किस्में ऐसी हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हैं जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो इस प्रकार से हैं, उनमें से आप अपने अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं, जो लगभग 130 से 140 दिन में पक के तैयार होती हैं, पूसा 44 जो है लगभग पंजाब में काफी बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है और बहुत ही अच्छी किस्म है, इसकी पैदावार जो है लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर है, पीआर 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359, मैसूरी लहलाट, नरेंद्र 8002, पूजा, प्रतीक्षा, रानी धान, रंजीत, सामा, मसूरी एवं स्वर्णा सबवन। स्वर्णा सबवन ऐसी किस्में हैं कि ये लंबी अवधि की है और जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, बाढ़ वगैरह आती है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ जो है कुछ किसान भाई जो है संकर किस्मों की खेती करना चाहते हैं, तो जो संकर किस्में हैं उनकी विशेषता ये है कि आपको उनका बीज हमेशा साफ ही लेना पड़ेगा, हर साल बीज खरीदना पड़ेगा और किसी प्रमाणित संस्था से आपको बीज को लेना है, अपने घर का बीज उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी प्रमाणित संस्था से बीज को लेकर चुनाव कर सकते हैं। जो संकर किस्में हैं धान की वो इस प्रकार से हैं, पंच संकर धान 1, पंच संकर धान 3, KRH2, PSD3, GK5003, प्रो एग्रो 64 44, प्रो एग्रो 62 01, प्रो एग्रो 62 19, DRH3, इंदिरा सोना, रुचि, नरेंद्र शंकर धान 2, PHB 71, PRH 10। PRH 10 जो है ये हमारी पूसा संस्थान से निकाली गई है और ये पहली ऐसी हाइब्रिड है जो सुगंधित भी है और अधिक पैदावार देती है। तो इन जो भी मैंने ये संकर किस्में बताई हैं, अपने आप अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आती है बहुत से किसान जो हैं बासमती धान की खेती करना चाहते हैं, तो बासमती की बहुत सारी किस्में हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। और ये किस्में इस प्रकार से हैं, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती नंबर 1, पूसा बासमती 6 जिसको हम पूसा 1401 के नाम से भी जानते हैं, पूसा और पूसा बासमती 1121। इसका दाना जो है बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छी किस्म है और इसका जो है बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ जो है उन्नत पूसा बासमती 1 जिसको हम पूसा बासमती 1460 के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ साथ जो है पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1609, ये ऐसी किस्में हैं जो पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी जैसे हरियाणा बासमती नंबर 1 है और इसके साथ साथ से करनाल से भी निकाली गई है जो बासमती टाइप की हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं
1: जी।
2: अब इसके बाद अब बात आती है कुछ ऐसी किस्में हैं जो सुगंधित हैं, अधिक पैदावार देती हैं, लेकिन वो बासमती की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो उनमें से भी चुनाव कर सकते हैं। वे किस्में इस प्रकार से हैं, पूसा 1612, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, और इसके साथ साथ जो है पूसा 1592 और पूसा राइस हाइब्रिड 10, इसको भी सुगंध के उसमें चुन सकते हैं। अब बहुत से किसान भाई बहन जो हैं ऊसर भूमि में खेती करना चाहते हैं धान की, तो उसके लिए जो है सामान्य किस्मों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो ऊसर भूमि के लिए अनुमोदित की गई है उनमें से ही चुनना चाहिए। जैसे कि ऊसर धान 1, इसके बाद आता है नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, IR8 झोना, ऊसर धान 1, CSR 10 और CSR 30। ये दोनों किस्में जो हैं हमारे CSSR करनाल से निकाली गई हैं और बड़ी अच्छी किस्में हैं जो लवणता के ऊपर ही काम करते हैं, तो इनमें से कोई भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा किसान भाई और बहनों, अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छी अनुमोदित किस्में हैं उसकी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, कृषि विभाग से ले सकते हैं, और इसके साथ जो कृषि विश्वविद्यालय ICR का कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है आप अपने अच्छे ढंग से करें, और उसके साथ साथ जो है बीज जो है किसी प्रमाणित संस्था से लें, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, या हमारा स्टेट सीड फार्म कॉरपोरेशन है, या हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ से भी हमारा बीज मिलता है, तो या कृषि विश्वविद्यालय जो भी आपके क्षेत्र में या आपके प्रदेश में है वहां से चुने और बीज जो है प्रमाणित संस्था से ही प्राप्त करें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, ये थी कुछ धान की प्रमुख उन्नत किस्में जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमारे कृषि विशेषज्ञ ये भी सलाह दे रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करें, और उनके बीज आप कहां से ले सकते हैं इसके बारे में भी अभी आपको जानकारी मिल गई है। अब बारी आती है कि बीजोपचार किस प्रकार किया जाए, खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे।
3: लेकिन इस छोटे से विराम के बाद आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडा भील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बातें।

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की तैयारी के बारे में और साथ ही साथ कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं धान की खेती के लिए। तो आइए आज के हमारे कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिवे, अब बारी आती है बीजोपचार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है खेती किसानी में। तो कैसे करें बीजोपचार धान के बीजों का, इसके बारे में बताएं।
2: बीज का उपचार जो है बहुत जरूरी होता है धान के नर्सरी लगाने के लिए। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, यदि आप अपने घर का धान यूज कर रहे हैं नर्सरी उगाने के लिए, उसका जो है आप नमक के घोल में 10% नमक के घोल में अर्थात 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डालकर उससे उपचारित करें। उससे उपचारित करना यूँ जरूरी हो जाता है, यदि आपके कुछ दाने खाली होते हैं तो जो खाली दाने होंगे नमक के घोल में ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे, जो भरे हुए दाने हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है नमक के घोल से उपचारित करें, जो खाली दाने हैं उनको निकाल दें और जो साफ दाने हैं उनको जो है आप फिर 2-3 बार स्वच्छ पानी से धोएं नमक के घोल के उपचारण के बाद में। फिर उसके बाद जो है आप बीज को उपचारित करने के लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए धान का 2 ग्राम जो है हम किसी कवकनाशी दवा का इस्तेमाल करें, जैसे कि कार्बेंडाजिम है या बावस्टीन है, तो इनमें से कोई सी भी मिल जाए। और इसके साथ साथ जो है 0.25 ग्राम हमारी जीवाणुनाशी, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या एग्रोमाइसिन है, ऐसी दवा लें। तो प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इन दोनों दवाइयों को मिलाएं और मिलाने के बाद में पानी में घोल दें और जितना बीज की ज़रूरत होती है उस हिसाब से दवा को पानी के अंदर मिला दें और इसको जो है पूरी रात भिगो कर रखेंगे और सुबह फिर निकाल के इसको फर्श पे फैला देंगे और फर्श में फैलाने के बाद में तब थोड़ा सूख जाएगा, फिर इसको जो है किसी बोरे के अंदर भर के रख देंगे और हल्का हल्का पानी डालेंगे। तो इस तरीके से बीज का उपचार करना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है हमको ये भी ध्यान रखना है, यदि हम किसी प्रमाणित संस्था से बीज ले रहे हैं तो वो भी जो है बीज के साथ साथ कभी कभी दवा अंदर डाल देते हैं, यदि वो दवा नहीं डाल रहे हैं तो अपने बाजार से दवा को खरीदना है और बीज को किसी भी कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी से इस्तेमाल करके उसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी है रोपाई से पहले।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर श्रीवे, बीजोपचार तो आपने बता दिया कि किस प्रकार कर सकते हैं हमारे किसान। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और अगर खेत में वो बीज डाल रहे हैं तो उसका तरीका क्या है।
2: हमारे उत्तरी भारत में जो है और दक्षिण भारत में भी 2-3 तरीके से नर्सरी उगाई जाती है, लेकिन उन सब में प्रमुख रूप से जो हमारी गीली क्यारी विधि है, इससे जो अच्छी पैदावार लेने के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो अच्छी नर्सरी होती है, अच्छी नर्सरी हमको मिलती है। सूखी क्यारी विधि से भी उगा सकते हैं, डेपोक मेथड से भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से चर्चा यहाँ भीगी क्यारी विधि जो है उसकी करना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है खेत को, जो भी आपने खेत चुना है पानी का जो स्रोत है उसके पास में 2-3 बार जुताई कर लें, समतल कर लें। उसके अंदर जो है हम ऐसा बताते हैं कि नर्सरी 1 हेक्टेयर की जो नर्सरी में हमें रोपित करने के लिए नर्सरी उगाते हैं उसके लिए लगभग 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 टन गली सड़ी गोबर की खाद डालें और इसके साथ साथ जो है हम 10 से 12 किलोग्राम यूरिया और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल फॉस्फेट और 4 से 5 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 से 2.5 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट, इन सबको जो है हम खेत के अंदर डालें जहां पर नर्सरी उगा रहे हैं। अब इन सबको डालने के बाद में पानी भर के 2-3 बार जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में हम पानी भर के जुताई करते हैं, पानी भर के जुताई करने के 2 फायदे हैं। एक तो क्योंकि हमारी लेव बन जाती है, लेव का मतलब पडल हो जाती है, तो हमारे जो हैं पानी जो नीचे बहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो कणों में भर जाते हैं सैंड सिल्ट में और पानी का निक्षालन कम होता है। तो इस तरीके से हम पानी भरने के बाद में फिर जब पानी थोड़ा सूख जाता है तो आवश्यकता अनुसार जो है हम 1.25 मीटर से 1.5 मीटर क्यारियाँ चौड़ी बनाते हैं, लंबाई जो है हम लगभग 10 मीटर रखते हैं, लेकिन इसको आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं लंबाई को। चौड़ाई जो है 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए। अब जब आपने क्यारियां बना ली हैं, पानी कम हो गया है, तो जो हमारा जमा हुआ बीज है, जो आपने बीज उपचारित किया था, उसको जो है बीज को डालें, और बीज को इस तरीके से डालें, बीज की मात्रा जो लगभग हम हमारी डालने की जरूरत पड़ती है मोटे अनाज वाली किस्मों के लिए 25 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, जो हम 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उगाते हैं। और इसके साथ साथ जो महीन किस्में हैं, जैसे कि हमारी बासमती टाइप की हैं, उनकी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जो हाइब्रिड है उसकी लगभग जो है हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज को डालते हैं। तो बीज को डालने के सही समय जो है शाम के वक्त, जब हमारा हवा वगैरह ना चल रही हो, तो उस समय डालना चाहिए खेत के अंदर जो उपचारित बीज है। और बीज को डालने के बाद में, अच्छे ढंग से डालने के बाद में, ऊपर से जो है आप किसी पुआल वगैरह, जैसे कि हमारा गेहूं का बचा हुआ पुआल है, या हमारा किसी और दूसरी फसल का बचा हुआ गन्ने की पत्तियां हैं, उनको डाल दें, ताकि हमारे जो चिड़ियां दानों को चुगती हैं उनको न चुगें, और उसके साथ साथ जो है हमारा ऊपर से जो है नमी का संरक्षण भी हो जाए। जब इस तरीके से हम बीज को डालते हैं तो हमारा बीज का जमाव अच्छा होता है और हमको अच्छी नर्सरी मिलती है।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि विधि क्या है हमारे जो बीज लगाने की। अब आपसे जानना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि जो पौध है वो स्वस्थ हासिल हो पाए।
2: जी, पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ पौधावार हमको तभी मिलेगी जब हम अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे। धान की नर्सरी उगाने के लिए वैसे तो हम बताते हैं मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। यदि आपने किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं कराया है, तो जो हम खेत का चुनाव करते हैं 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, उसमें जो है लगभग हमको 1000 किलोग्राम जो हमारी गोबर की गली सड़ी खाद है उसको डालते हैं, और इसके साथ साथ जो है 10 से 12 किलोग्राम जो है हम यूरिया डालते हैं, और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 5 से 6 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास, 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालनी चाहिए। इनको जो है जब हम आखिरी पडलिंग करते हैं, आखिरी जुताई करते हैं पानी भरने के खेत में, पानी भरे हुए खेत में, उस समय डालना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर अच्छे ढंग से मिल जाए, और उसके बाद में ही जो है हमको नर्सरी का बीज डालना चाहिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करना है। और कभी कभी जो है नर्सरी के अंदर लगाने के बाद में हरिमाहीनता की समस्या आ जाती है। हरिमाहीनता जो है नर्सरी के अंदर जो है वो लौह तत्व की कमी की वजह से आती है। तो यदि ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी नर्सरी जो है 10 से 12 दिन की हो गई है, तो फेरस सल्फेट का 1% घोल जो है उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और घोल की मात्रा जो है वो लगभग 60 लीटर की जरूरत पड़ती है, 60 से 65 लीटर प्रति हमको 700 से 800 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी में कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही जरूरी कदम होता है अगर आपको अपनी जो पौध है उसको स्वस्थ बनाए रखना है उसके लिए। डॉक्टर शिव, आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अगर नर्सरी में खरपतवार हो जाती है तो उससे हमारी जो पौध है उसकी गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है, तो कैसे इनकी रोकथाम की जाए?
2: जहाँ पे हम धान की नर्सरी लगाते हैं वहाँ पे खरपतवार नियंत्रण का करना बहुत जरूरी होता है खेत के अंदर। तो जब हमारी 10 से 12 दिन की नर्सरी हो जाती है तो खरपतवार हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, खुरपी से भी निकाल सकते हैं। तो यदि किसी कारणवश जो है धान की नर्सरी के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं, तो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्यूटा क्लोरा, जिसे को हम मिचेची के नाम से जानते हैं, उसकी जो है 120 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल बना के जब हम धान की बिजाई करते हैं, बीज डालने के 2 से 3 दिन बाद कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से धान की नर्सरी के अंदर हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर शिवे कि हमारे जो किसान हैं वो अपनी नर्सरी में, जो धान की नर्सरी है उसमें पानी का प्रबंधन किस प्रकार करें?
2: किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में जब हम धान की नर्सरी उगाते हैं उस समय पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है धान की नर्सरी के अंदर, क्योंकि हमारा तापक्रम बहुत होता है और तापक्रम ज़्यादा होने से वाष्पोत्सर्जन भी हमारा ज़्यादा होता है। तो धान की नर्सरी हम जब लगाते हैं, जब हल्का हल्का पानी होना चाहिए खेत के अंदर, और फिर बाद में जो है हमको उसमें खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए, बल्कि नमी मेंटेन करनी है हमको जब तक उसका अच्छे ढंग से जमाव नहीं होता है। जब उसका जमाव हो जाता है तब हमको हल्का हल्का पानी रखना चाहिए और पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, यदि पानी की कम उपलब्धता है तो फव्वारे से भी हम पानी दे सकते हैं नर्सरी के जहाँ जिस क्षेत्र में हम नर्सरी उगा रहे हैं। लेकिन यदि आप पानी जो है किसी पानी के स्रोत से दे रहे हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रेंट है या हमारा जो ट्यूबवेल है या हमारा पंप सेट है या हमारा कैनाल का वाटर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी लगाते समय नर्सरी पानी के अंदर डूबनी नहीं चाहिए, बल्कि जो है हल्का हल्का पानी हो, तो इस तरीके से प्रबंधन रखना है। और पानी की कमी भी नहीं आनी चाहिए, इतना कम भी पानी लेने लगाना है तो पानी का प्रबंधन जो है गर्मी के दिनों में नर्सरी उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अच्छी नर्सरी प्राप्त करने के लिए। विशेषकर यदि हमारी हरिमाहीनता की समस्या आती है, लौह तत्व की कमी आती है, तो वो आयरन तत्व की कमी से की वजह एक ये भी होता है कि खेत के अंदर पानी न रहना, तो इस चीज का प्रबंधन आपको जरूरी करना है। पानी हल्का हल्का रखना है, समय समय पर पानी देते रहना है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर श्रेय, आपने धान की नर्सरी तैयार करने के लिए और साथ ही साथ किस्मों के चुनाव के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये जानकारी पाकर हमारे किसान साथियों की बात में बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना है, कौन सा कदम अपनाना है। खासतौर पर हम कार्यक्रम के माध्यम से मित्रों बताते चले आ रहे हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो यही कारण है जो अपने किसान साथी अपने जीवन में अपनी खेती में अपना कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हमें एक फसल पर आश्रित नहीं रहना है, हमें मिश्रित फसल की ओर देखना होगा कि कौन से फसल हम अपने खेतों में लगा सकते हैं जिसमें लागत कम लगती है मुनाफा अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी फसल उगाते हैं या लगाते हैं, नई बीजों का चयन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें घाटा खाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमें अब नई प्रजाति के नई किस्में अपने खेतों में लगाना है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आप झाबुआ के जो केवीके है रिसर्च सेंटर है वहां पर जाकर संपर्क डॉक्टर तोमर साहब से भी कर सकते हैं और साथ साथ में हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। त्रिपाठी जी भी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग की अगर बात करें तो कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी के पास आप बात कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। यदि आपको उन तक पहुंचने में दिक्कत होती है तो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो हमें आशा है कि हमने आज इस कार्यक्रम में जाना कि धान की खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें बीजों का चयन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें लगाने की विधि क्या क्या होती है, कैसे हम इसको लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा समय है जिसको हम लगाने के उपयुक्त होता है, साथ साथ में कि हम किस तरीके से पौध को लगा सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं अभी से, चूंकि बहुत उपयुक्त समय है। अभी हमारे किसान साथी अपनी जो पौध रहती है नर्सरी है उसको तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर पानी की समस्या ना हो वहाँ पर हमारे किसान साथी धान की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत उपयुक्त समय है। दूसरी बात ये आती है कि एक बार फिर से पुनः हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं जिन किसान साथियों के खेत उबड़ खाबड़ हैं या ऊंची नीची जमीन है, वहाँ पर किसान साथी समतलीकरण करा सकते हैं, मेड़बान धान कर सकते हैं, पानी को रोकने की उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि तालाब हुआ करते थे, बावरी हुआ करती थी, कुआं हुआ करते थे, आज वो समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें ध्यान देने की बातें हैं और मेड़बंधान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पानी को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे जो वाटर लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। अब हमें दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि झाबुआ जिले में इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग है, अन्य समस्या जो आती है, आपको लगता है कि हमें समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM यहाँ पर आप आइएगा, अपनी बात को रखिएगा। हमें खुशी होती है कि बहुत सारे किसान चलकर यहाँ पर आते हैं, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है वास्तव में, वाह। तो साथियों, हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे, ये आपका रेडियो स्टेशन है, आपके लिए ही खोला गया है और आपकी बात को रखने के लिए ये आपके लिए चलाया जा रहा है। तो हमें आशा है कि ये कार्यक्रम को सुनकर हमारे किसान साथी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ, किसान साथियों की बात बिल्कुल अच्छी लगती है। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और खूबसूरत एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो दरअसल एक पैशनेट सिंगर हैं और बहुत ही छोटी उम्र से गाते आ रहे हैं। खास करके वो किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं। बहुत सारे सिंगिंग ग्रुप्स जो बैंगलोर में हैं उनसे वो एसोसिएटेड है और लगातार इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं। वैसे संदीप पाल साहब जो आज हमारे टैलेंट हैं, जो आज हमारे मेहमान हैं, वो एक फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। बाकी बातचीत हम संदीप भाई से करेंगे। तो संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप हमारे सभी लिसनर्स को, जो आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपने बारे में अपने ही जबान से बताएं। बाकी छोटा सा जो मैं बता सका वो मैंने बताया, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। तो आप बैंगलोर में हैं और फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, और कुछ आप अपने अपने सुनने वालों को बताना चाहें तो बोलिए।
1: नमस्ते दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं बैंगलोर में आज 13-14 साल से हूँ। आई बेसिकली बिलोंग टू बिहार, पटना, एंड सिंगिंग एक मेरा पैशन रहा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होता है कि प्रोफेशन के चक्कर में बहुत समय हम लोग अपना जो पैशन है, जो हॉबी है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी हाल ही में 5-6 साल पहले से फिर से मैंने सोचा कि एक बार फिर से अपना जो पैशन है उसको परस्यू किया जाए। तो आई गॉट टू नो देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल हेयर इन बैंगलोर, स्पेशली जो कैरोके ग्रुप्स है, म्यूजिकल ग्रुप्स है। तो फिर से मैंने जब से मेरे को पता चला तो फिर मैं उन लोगों से एसोसिएट हुआ और उसके बाद फिर मैं गाना फिर से चालू किया। ऐसे तो गाना मेरा काफी पहले से रहा है, 13-14 साल से, साल का जब था तभी से मैं गाना चालू किया। लेकिन बीच में थोड़ा सा काफी लंबे अरसे तक मैं गा नहीं पाया बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, तभी फिर से मैं चालू किया हूँ। एंड अक्सर वीकेंड्स में जाना होता है, इवेंट्स जब रहते हैं तो फिर गाने का मौका मिलता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: इसके अलावा
0: जी,
1: हाँ नहीं, इसके अलावा मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर पूछे तो मतलब आई एम मैरिड विथ वन सन हु इज वर्किंग एट दिस मोमेंट, एंड वी आर अ वेरी स्मॉल फैमिली विथ माय वाइफ, सन एंड माय मदर।
0: ओके, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को संदीप पाल जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत सुंदर गायकी। संदीप भाई, किसने मोटिवेट किया आपको संगीत में आने की? प्रेरणा कहाँ मिली, किससे मिली, किसने कहा?
1: देखिए, एक्चुअली गाने का जो मोटिवेशन है, एक तो मेरे को शुरू से किशोर कुमार साहब का गाना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनका उनका गाना अक्सर दोस्तों के साथ जब बैठता था तो उन लोगों के बीच भी गाता गाते रहता था। तो चूंकि मेरे को उनका गाना अच्छा लगता था, तो आई यूज टू सिंग हिज सॉन्ग, किशोर कुमार सॉन्ग। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड कि यार, तेरा तू जब किशोर कुमार के गाने गाते हैं तो तू अच्छा गाता है एंड इट साउंड्स गुड, सो व्हाई डोंट यू कंटिन्यू सिंगिंग एंड कंटिन्यू एंड परस्यू दिस सिंगिंग। तो इसी तरह से उन लोगों के, दोस्तों के एनकरेजमेंट पे ही मैं एक्चुअली गाना शुरू किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल माई फ्रेंड्स हु यूज टू लिसन टू मी, दे ओनली मोटिवेटेड मी टू सिंग।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हम अगला गाना संदीप जी का गाया हुआ पेश करते हैं, उनके सारे दोस्तों को डेडिकेट करते हुए जिन्होंने उनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और हमें आज उनके गाने सुनने को मिल रहे हैं। तो लीजिए, पेश करता हूं अगला गीत।

0: बहुत सुंदर। संदीप भाई, बात म्यूजिक की है तो किस किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? आई मीन टू आस्क, फोक म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफी, यू नो, इंग्लिश, कुछ किसी और तरीके का म्यूजिक, गजल्स, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक?
1: देखिए समीर जी, ऐसा है कि म्यूजिक तो मतलब हर तरह का म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी खास करके मेरे को ज्यादा झुकाव बॉलीवुड म्यूजिक की तरफ रहा है। एंड इसके अलावा बॉलीवुड म्यूजिक मतलब फिल्मी गाने के अलावा मेरे को गजल्स बहुत पसंद है, खास करके हरिहरन साहब का गजल मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। उनका जितना भी एल्बम है, जितने भी गाने हैं, मैं सुनते रहता हूँ। हालांकि कभी गजल गाने का मतलब मैं गाया नहीं या फिर गाने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गजल उस तरीके से नहीं गा पाऊंगा, तो मैं सुनते रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है गजल गाना। एंड इसके अलावा कुछ अपने जो लेजेंड्स हैं, जैसे लता जी, आशा जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार और फिर मोहम्मद रफी साहब, इन लोगों का कुछ कुछ गाना मतलब जो पुराने गीत गाने हैं वो मेरे को काफी अच्छा लगता है, ओल्ड सॉन्ग्स।
0: ओके, वेरी नाइस, बहुत खूब। और उसी तरह के गीतों का लुत्फ भी संदीप भाई उठाते हैं, तो चलिए ना हम लोग भी एक प्यारा सा गीत सुनते हैं संदीप जी की ही आवाज में।

0: तो संदीप जी, यूजुअली क्या आप गाने का अभ्यास प्रैक्टिस रोज करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या रूटीन होता है आपका? व्हाट प्रैक्टिसेस डू यू परफॉर्म?
1: समय जी, ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग गाने का तो प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा समय मिलता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं फील करता हूँ, इनिशियल डेज में मैं जब गाना सीखता था, काफी कम समय के लिए सीखा, बट जब मैं उस समय गाना सीखता था तो एक चीज मेरे को बोला गया था कि आप सवेरे जब उठते हैं तो आपका जिस तरह का वॉइस उस समय रहता है, तो उस समय नीचे के नोट्स जो है ना, तो उसको प्रैक्टिस करने से आपका गले में वो कंट्रोल और बाकी जो भी आपका गले में जो चीज होना चाहिए, गाने के लिए चीज होना चाहिए, तो वो अच्छा होता है। तो मॉर्निंग में अभी भी मेरे को कभी मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा नीचे का नोट्स जो है मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता हूँ, और खास करके काम से लौटने के बाद शाम के समय में मेरे को जब भी मौका मिलता है, तो मेरे को जैसे कोई भी वीकेंड्स में अगर इवेंट्स में जाना है तो फिर मैं जो जो गाने मेरे को गाना है तो वो सब गाना मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग लगभग ये प्रैक्टिस हर दिन ही होता है, कभी कभी कदार छूट जाता है तो वो अलग बात है, बट प्रैक्टिस मेरा इसी तरह से होता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स, लोअर नोट्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपना एक रूटीन बनाया है, जब भी आप उसको फॉलो कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए
1: बस
0: दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस गीत का आनंद उठाएं।

0: संदीप भाई, कभी स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला आपको? और अगर मिला तो वहां पर कुछ कैसा फील होता है? अगर कुछ एप्रिहेंशन होता है, कुछ हल्की सी घबराहट होती है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट?
1: देखिए, आज के समय में तो स्टेज पे गाने के लिए उतना जो भयभीत होना या फिर डर लगना या फिर नर्वस होना, उस तरह का चीज तो होता नहीं है बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा अप्रिहेंशन रहता था कि भाई ऑडियंस है तो ये इतने सारे ऑडियंस के बीच में कैसे गाऊं, क्या गाऊं, तो वो चीज रहता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर डूइंग सो मेनी इवेंट्स, इतने स्टेज शोज, स्टेज परफॉर्मेंस होते रहता है, करते रहता हूँ, तो अभी आज के दिन में वो चीज तो चला गया। एंड द बेस्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन इज टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, या फिर आप जब भी स्टेज पे चढ़ते हैं तो मेरा मेरा ये सजेशन है कि आप अगर जो गीत गाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि मैं ये गाना गाने वाला हूँ, इसके कंपोजर ये हैं, और इनको ये सॉन्ग को गाने वाले जो ओरिजिनल प्लेबैक सिंगर्स जो हैं ये लोग हैं, तो उससे भी आपको एक एक रिस्पांस मिलता है ऑडियंस से और थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलता है, तो वो भी आपका जो डर है ना उसको कम करने में काफी सहायता करता है। तो बस द बेस्ट वे टू एंजॉय योर सिंगिंग इज टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल दोस्तों, ये टिप्स काम की हैं, इनको अपनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से गीत का आनंद उठाएं।

0: बहुत खूब। क्या कभी संदीप भाई खुद के गाने लिखने का कुछ फील हुआ, कभी मन हुआ, कुछ लिखे आपने या कंपोज करने का मन हुआ? क्योंकि गीत संगीत में आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि इस गीत को इस तरीके से भी गाया जा सकता है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, ऐसा कभी कुछ हुआ?
1: नहीं नहीं मैं कभी भी कंपोज नहीं किया हूँ, कभी भी कोई गाना नहीं लिखा हूँ, तो अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है।
0: ओके, ऑलराइट, नॉट एन इश्यू एट ऑल। कई बार होता है कि ठीक है, किसी एक गीत को थोड़ा सा बदला जा सकता है, ट्यून को, बट नो प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली ओके। फिर क्या आपको कभी, ऑफ कोर्स इतने समय से आप परफॉर्म कर रहे हैं, बचपन से आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टेज परफॉर्मेंसेस भी आपने की हुई हैं, सो बहुत बहुत सारे अवार्ड्स और एकोलेट्स भी आपको मिले होंगे, कोई खास अवार्ड या एक्यूलेट जो आपको याद पड़ता हो, जिसको पाकर आपको सचमुच बहुत ज्यादा खुशी हुई हो?
1: समीर जी देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ना, वो आपका ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है, और ऑडियंस जो आपको आके जो तारीफ करते हैं या फिर आपका गाने को अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे लिए लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड वही है, या फिर मेरा गाना सुन के जिनको बहुत खुशी मिलती है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा अवार्ड है। वैसे जहां तक अवार्ड का सवाल है, मतलब वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स में हम लोग को जाना होता है, तो वहां पे अवार्ड्स का कुछ क्राइटेरिया रहता है, कभी वो फुलफिल हो जाता तो अवार्ड्स मिल जाते हैं एक दो। लेकिन जब मैं स्टेज से उतरता हूँ और 10 लोग आके मेरे को बोलते हैं कि संदीप तुमने अच्छा गाया ये गाना, तो मेरे लिए सबसे

0: सबसे बड़ा अवार्ड वही हो जाता है।
1: राइट
0: या फिर मैं और ये भी बताऊं कि कुछ कुछ गाने जो ऑलमोस्ट लॉस्ट गाने हैं या फॉरगॉटन गाने हैं, कुछ कुछ मेलोडीज हैं जो हम लोग आज के दिन में स्टेज पे नहीं सुनते हैं किसी को गाते हुए। तो मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं कोई इवेंट में जाऊं कुछ ऐसा गाना गाऊं कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ ये अच्छा गाना है, काफी सालों से सुना नहीं है। तो मैंने कुछ कुछ इवेंट्स में वैसे भी गाने गाए, तो वो गाने सुनने के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि संदीप ये किस फिल्म का गाना है, किसने ये गाना गाया है, ये गाना अभी मैं सुनना चाहता हूँ एक बार फिर से, तो थोड़ा सा मेरे को बता दो तो कहाँ पे अवेलेबल होगा, यूट्यूब में है कि कहाँ पे, कहाँ से मेरे को मिल सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं तुम्हारा ये गाना अभी मैं सुना हूँ, तो ये गाना मेरे को इतना अच्छा लगा कि अभी मैं जब घर वापस जाऊंगा तो ये गाने को सुनते हुए जाऊंगा। तो दीज आर द थिंग्स ना विच गिव्स यू लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि चलो ये गाना जो जिनको पता नहीं था, जो पहली बार वो गाना सुन रहा है, उनको भी अच्छा लगा ये गाना सुन के कि वो ओरिजिनल गाना फिर अपना सुनना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि चलो किसी को तो मैंने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया ये गाना गाने के गाने गाना सुनने के लिए अपने गाने के थ्रू।
1: राइट, ब्यूटीफुल। ये इससे बड़ा और सम्मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारे से गीत का आनंद उठाएं यहां पर, जो संदीप जी ने हमारे लिए तैयार किया।

0: बहुत खूब संदीप भाई। संदीप जी मुझे ये बताइए कि आज के टाइम में, ठीक है, उस वक्त किशोर कुमार जी और बाकी सिंगर्स उन्होंने जितनी भी मेहनत की और जिसकी वजह से वो लेजेंड साबित हुए, दैट वाज वन एरा, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन म्यूजिक। आज के जो टाइम है उसमें जो सिंगर्स हैं उनके लिए क्या चैलेंज है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज दे आर फेसिंग?
1: आपका मतलब है कि जो अभी जो कॉन्टेम्पोररी जो प्लेबैक सिंगर्स है या फिर जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आप पूछ रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, आज ही के, आज ही के सिंगर्स।
1: आज ही के सिंगर्स में समीर जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को क्या लगता है कि गुड म्यूजिक इन द सेंस, मतलब गुड कॉम्पोजिशन जो जो पहले हुआ करता था, आज के दिन में देखिए कि हमारे जेनरेशन या फिर अभी जो नए जो 20 साल 22 साल के जो जो लड़के लड़कियां होते हैं आज के दिन में, उनको भी मैं अक्सर इवेंट्स में आज से 50-60 साल पहले का, 70 साल पहले का गाना उनको देखता हूँ गाते हुए, 80s का गाना, 70s का गाना, 60s का गाना वो लोग गाते हैं, जबकि आज के दिन में भी मतलब म्यूजिक कंपोज हो रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, लेकिन जो आज से 60s 70s 80s में 90s में जो गाने बने हैं वो गाने मैं देखता हूँ अक्सर, मतलब मैक्सिमम गाना वही एरा का होता है और वही लोग इवन आज के जो नए जनरेशन के जो सिंगर्स है ना वो लोग गाते हैं। तो ये मैं अपना सिंगिंग सर्कल के बारे में बोल रहा हूँ, जो विच एक्चुअली ऑल्सो एम्प्लाइज टू द सिंगर्स, दोज हु आर प्लेबैक सिंगर्स एंड द अदर आर्टिस्ट्स, कि अच्छा कंपोजिशन आज के दिन में थोड़ा सा लैक कर रहा है, जिसके चलते वो अपना पहचान नहीं बना पा रहे हैं, जिसके चलते उनको उनका उनका जो गाने हैं उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। और एक चैलेंज जो फेस करते हैं सिंगर्स आज के दिन में वो है राइट प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है सिंगर्स को। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट दे आर वेरी गुड सिंगर्स, इफ दे वुड हैव गॉट गुड प्लेटफॉर्म एंड दे वुड हैव संग अंडर गुड गाइडेंस ऑफ गुड म्यूजिक डायरेक्टर, देन प्रोबब्ली दे वुड हैव अचीव्ड समथिंग। तो मेरे हिसाब से मेरे को वही लगता है।
0: अब देखो साहब, इस बात के लिए तो हमारी पॉपुलेशन जिम्मेदार है। अब 60s 70s में उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, मौके भी थे, कलाकार भी अच्छे थे, लिरिक्स भी अच्छी थी, म्यूजिक भी अच्छा था। अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो रोटी पानी का सवाल ज्यादा बड़ा हो गया, तो लिरिसिस्ट्स गायब हो गए, कंपोजर्स गायब हो गए, तो बेचारे गायक भी क्या करें। ओके,
1: बात सही है।
0: चलिए आगे बढ़ते हुए, तब तक हमारे पास 60s 70s के गोल्डन एरा के सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, सिंगर्स अवेलेबल हैं, उन्हीं का आनंद उठाते हैं। लीजिए, पेश करता हूं एक और प्यारा सा गीत।

0: संदीप जी, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपको और पर्सनली समझने के लिए अपने किसी बहुत ही प्यारे दोस्त के बारे में हमें बताइए। कौन है वो, क्यों आपको उनकी दोस्ती पसंद है, उनको आपकी दोस्ती क्यों पसंद है, कब से दोस्त हैं आप, थोड़ा सा बताइए ना उनके बारे में।
1: नहीं, मैं ऐसे तो मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं एंड हाँ, कुछ कुछ दोस्त तो खास होते ही हैं। तो एक मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उनसे मेरी दोस्ती आज लगभग 1993 से वो उनसे मेरी दोस्ती है। तो वो बहुत ही खास है, खास इसलिए क्योंकि मेरा और उनका सोच जो है, जो विचार जो है वो मिलता है। एंड कभी भी मैं अगर उनको कॉल नहीं कर पाया, 5-6 दिन 7 दिन हो जाता है तो उनका कॉल आ जाता है, फिर घंटों बातें होते रहती है। एंड कभी भी खबर लेना कि मतलब इतना दिन से कहाँ गायब हो, तुम्हारा फोन नहीं आया, कैसे हो, क्या हो, मतलब हाल चाल पूछना, अपना जानकारी हर तरह का जानकारी लेना, तो ये सब चीज तो चलते रहता है। लेकिन उनसे उनसे चूंकि मेरा विचार बहुत मिलता है एंड हम लोग का वेवलेंथ एकदम दोनों का सही बैठता है, तो ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। सो मीन्स यही है।
0: ओके, ठीक है बॉस, आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट नॉट टेकिंग हिज नेम। चलिए दोस्तों, अगला गीत उन्हीं को हम डेडिकेट करते हैं जो संदीप जी के अच्छे मित्र हैं। लीजिए, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत खूब संदीप जी। हमारे सुनने वालों के लिए, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स, सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या बात करना चाहेंगे उनसे आप चलते चलते?
1: मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग, सभी लोग, आपके मैंने हम लोगों का ये रेडियोसन फैमिली प्लस और जो गाने वाले जो जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, तो ये काफी बड़ा है। एंड सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गाना गाइए, गाना एंजॉय कीजिए एंड हरदम पॉजिटिव सोचिए। एंड कौन अच्छा गा रहा है, कैसे गा रहा है, क्या मतलब अच्छा गाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या वो कर रहे हैं, तो ये टिप्स उन लोगों से लेते रहिए कि ताकि हम लोग भी अच्छा गा सके। एंड मेरा सबसे बड़ा मैसेज लोगों को ये है कि मतलब सबके बारे में अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि सबको खुशी मिले, अपने भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। एंड म्यूजिक इज वन ऑफ द फॉर्म बाय विच यू कैन कीप एवरीबॉडी हैप्पी एंड एक दूसरे से हम लोग जुड़े रहते हैं। तो कंटिन्यू विथ योर म्यूजिक एंड थिंक गुड अबाउट पीपल।
0: ग्रेट, अमेजिंग मैसेज, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच संदीप भाई। बाकी हमारे सभी आज के कलाकार के परिवार वालों ने, मेहमानों ने, फैंस ने, टैलेंट्स ने आपके इस प्रोग्राम को सुना है और बहुत लुत्फ उठाया है। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।